आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र एफएम 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में यानी ठीक 6 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। हम आपके लिए अनुप्रसारित करने जा रहे हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। सुनिए ठीक 6 बजे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस

0: में देश में 52 चीते हैं जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन बार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद को जानना ही इस जीवन का सबसे बड़ा अध्यात्म है और यही ज्ञान सारी चिंताओं का एकमात्र समाधान है। और अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं झरोखा के अंतर्गत आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस। इसका भाग 227 आज प्रसारित किया जाएगा। छह बजकर 45 मिनट पर संगीत सरिता, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। इसका भाग 5 आज प्रसारित होगा, जिसे आप पुनः शाम 6:45 पर सुन सकते हैं प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर और पुनः दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे त्रिवेणी। कार्यक्रम चित्रलोक सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा अभिनेता अमरीश पुरी पर। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

पिटारा के अंतर्गत आज सुबह 10 बजे सुनिएगा उजाले उनकी यादों के, रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का भाग एक आज प्रसारित होगा। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। रंग तरंगे कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11 बजे। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और 1 बजे आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। सखी सहेली दोपहर 3 बजे, 4 बजे आज शाम को पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा, जिसमें डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का भाग एक आज आप सुनेंगे। संपादन सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। छाया गीत ये आप सुनेंगे शाम 5 बजे, 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम। संध्या रंजन का समय होता है शाम 6:35 पर। शाम 7 बजे सुनिएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। सात 7:45 पर आप सुनेंगे इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे फिल्म खिलौना के गीत। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा नाटिका वो आए घर में हमारे, लेखन राजकुमार डाक का है, निर्देशन सत्येंद्र शरद का। कार्यक्रम आपके लिए 9 बजे। रात्रि 10 बजे छाया गीत, आलेख एवं स्वर जयंत पात्रीकर का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आप सुन रहे थे झरोखा। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान का भाग 227।

मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया।

पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का स्वागत है। पंडित जी, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से फिल्म संसार से जुड़ते जुड़ते आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में और संगीतकार जयदेव जी के कहने पर शास्त्रीय संगीत की ओर फिर मुड़े
2: जी।
1: तो शास्त्रीय संगीत की बात हमें करनी है तो जितने भी समकालीन कलाकार हैं
2: जी,
1: उनमें से कौन से मुख्य कलाकार हैं जिनका नाम आप लेना चाहेंगे और उनके बारे में बताना चाहेंगे कि जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को महत्वपूर्ण योगदान दिया है?
2: शास्त्रीय संगीत के एरिना में जब आते हैं हम लोग तो मुझे ये देखने में आता है कि नॉर्थ इंडिया में कम आर्टिस्ट हुए और कम आर्टिस्टों में गिने चुने, जैसे जोग साहब का जिक्र कर चुके हैं, जगजन राव जोशी जी का कर चुके हैं, डी के दातार और एन राजम जी और शिशिर कणादर चौधरी, ये भी लेडी आर्टिस्ट थी और अली अकबर खान साहब की बहुत अच्छी शागिर्द थी, इन्होंने भी अच्छा बजाया। तो समकालीन लोगों में एन राजम जी का वायलिन योगदान बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि उन्होंने हर जगह बजाया। अच्छा, टेक्निकली बात करें तो राजम जी के वायलिन में साउथ की टेक्निक है, क्योंकि साउथ में ये बाजा बहुत पहले पहुंचा हुआ था और उनकी टेक्निक

0: कर्नाटक म्यूजिक की जितनी खूबियां हैं वो आती हैं। और जब वो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी की शिष्या हुई तो वो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक उन्होंने सीखा, और बाद में और एक महापुरुष की शिष्या हुई वो, जिनका नाम था पंडित महादेव प्रसाद मिश्रा बनारस वाले, जो बहुत अच्छी ठुमरी दादरा गाते थे, उनके साथ मैंने भी बजाया महादेव मिश्रा साहब के पास। मैंने दो तीन लोगों की संगत की जिसमें महादेव प्रसाद मिश्रा जी, गजानन राव जोशी जी के साथ भी मैंने बजाया इंदौर में, एक रिकॉर्डिंग में उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, और पंडित रामाश्रय झा जी के साथ। तो मेरा ये कहना है कि कम बैक टू बनारस, तो बनारस के संगीत को एन राजम जी ने बहुत अच्छे से ग्रहण किया, और ग्रहण करके ठुमरी दादरा भी उन्होंने बहुत अच्छा बजाया।
1: एन राजम जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग की प्रमुख थी और उन दिनों आप भी इलाहाबाद में पहुंचे थे
0: जी।
1: तो कैसे थे वो दिन, वो रिकॉर्डिंग के लिए जब आकाशवाणी आया करती थी?
0: बड़ा मेमोरेबल टाइम था वो
1: जी जी।
0: एन राजम जी, किशन महाराज, गुदई महाराज, महादेव प्रसाद मिश्रा जी
1: जी,
0: कई सारे एम आर गौतम, मतलब बहुत सारे म्यूजिशियन थे जो इलाहाबाद से ब्रॉडकास्ट करते थे। अच्छा, राजम जी उन दिनों में, मुझे वायलिन तो उनका पसंद था, इसमें कोई शक की बात नहीं।
1: हाँ।
0: तो वो आती थी और मैं हर एक आर्टिस्ट के प्रोग्राम में मौजूद रहता था व्यक्तिगत रूप से। आजकल ये परंपरा खत्म हो गई, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जो होता है वो कहीं होता है और आर्टिस्ट बेचारा कहीं रिकॉर्ड कर रहा है। तो एनीवे, ये समय की बात, समय परिवर्तनशील है। तो राजन जी की एक खूबी ये रही कि उन्होंने साउथ इंडियन टेक्निक को नॉर्थ इंडियन म्यूजिक बजाने में बहुत ही दक्षता हासिल की, बहुत अच्छा बजाया। अब उनके घर में तो उनके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब,
1: हाँ,
0: वो भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, इनके पिताजी भी बहुत अच्छे वायलिनिस्ट, और अभी इनकी बेटियां और नातिन वगैरह सब वायलिनिस्ट
1: बजाते
0: हैं। मैं चाहता हूं कि आप इनकी कोई रिकॉर्डिंग बजाएं राजम जी की, और इनका वायलिन वादन श्रोताओं को सुनवा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही मौका है पंडित जी। हम विदुषी एन राजम जी का बजाया राग यमन की झलक सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को।
0: अच्छी बात है।

0: विदुषी एन राजम का बजाया राग यमन की ये झलक आपने सुनी श्रोताओं। पंडित जी लगे हाथों राग यमन की चर्चा कर लेते हैं, इसके आरोह अवरोह के बारे में हमें बताइए।
1: देखिए, राग यमन पहला राग है जो स्टूडेंट्स भी सीखते हैं
0: जी,
1: और मास्टर्स भी बजाते हैं। जो बड़े लोग हैं उन्होंने भी राग यमन को बजाया और इसका कोई था नहीं पाई उन्होंने, और स्टूडेंट्स को भी हम लोग शुरुआत
0: राग से सिखाते हैं
1: जी। तो इसमें वादी संवाद मतलब शुद्ध स्वर के अलावा एक तीव्र मध्यम लगता है, सारे गा मा तीव्र लगता है, और पाधा निसा ये सब शुद्ध स्वर हैं, और वादी संवादी इसके जो हैं गंधार और निषाद हैं, ये दो सुर इसके वादी और संवादी हैं। अब मैं आपको मतलब थोड़ा सा बजा के इसके आरोह अवरोह या इसका एक स्वरूप कोशिश करता हूँ, ठीक है।

0: हम लोग केवल आरोह अवरोह से राग का बहुत स्केलेटन मालूम पड़ता है
1: जी।
0: स्केलेटन में और एक शक्ल में पूरे व्यक्ति में बहुत फर्क होता है। आप और मैं बैठे हैं, हड्डियों का ढांचा अंदर है हमारे, लेकिन हम हड्डियों के ढांचे से नहीं पहचाने जाते हैं
1: जी।
0: हम अपनी अपनी शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो राग एमन की शक्ल है।

0: ये इस राग की शक्ल बनती है।
1: वाह।
0: तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को ज्यादा आप इंतजार मत कराइए।
1: जी जी।
0: और
1: इस शक्ल को और थोड़ा साफ दिखाई दे इसके लिए।
0: देखिए, थोड़ा सा बजा के बताता हूँ।
1: जी हाँ।

0: वाह पंडित जी, इस राग पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत याद आ रहा है।
1: कौन सा?
0: ले गयो जी मोरा सावरिया।
1: अरे बहुत अच्छा गीत है
0: जी, लता जी की आवाज है
1: बिल्कुल।
0: और ये राजा मेहदी अली खां का लिखा गाना है, संगीतकार इसके हैं मदन मोहन साहब।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आइए सुनते हैं।

0: राग यमन पर आधारित अनपढ़ फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, लता जी की आवाज में, संगीतकार मदन मोहन।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पांचवी कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिस्तरी गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

0: कार्यक्रम की शुरुआत हमने की है शंकर जयकिशन के संगीत से। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने, गाया लता मंगेशकर और आशा भोसले ने। फिल्म का नाम हलाकू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अभी ये गीत आपने सुना लाला रुख इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। कैफी आजमी का लिखा गीत था और खयाम का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अदल ए जहांगीर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में। कमर जलालाबादी का लिखा गीत था, हुस्न लाल भगत का संगीत। श्रोताओं, अब कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में एक बार फिर से स्वागत है। इस अंतराल के पहले आपने गीत सुना अदले जहांगीर फिल्म से, हुस्नलाल भगतराम के संगीत से सजा ये गीत था। आइए सुनवाते हैं आपको अगला गीत।

0: रानी रूपमती इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे थे भरत व्यास ने और एसएन त्रिपाठी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

जन्म जन्म के फेरे इस फिल्म का गीत शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आपने सुना। भरत व्यास ने इस गीत की रचना की थी एस एन त्रिपाठी की बनाई धुन पर।

ये आवाज थी गीता दत्त की फिल्म फैशन से। ये गीत था भरत व्यास रचनाकार और गीतकार, गीतकार भरत व्यास और संगीतकार हेमंत कुमार थे।

भाभी फिल्म से ये गीत था। आशा भोसले ने आवाज इस गीत को दी। तन्वी नकवी की रचना थी और तर्ज बनाई थी चित्रगुप्त ने। और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: लीजिए श्रोताओं, लेकर हाजिर है हम कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। आइए आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम की ये पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। मस्ताना फिल्म का गीत है, रचनाकार आनंद बख्शी हैं, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: जब जब हम

ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, ऐसा काहे को होवत हैरी लैला, मन मोर।

0: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: अब आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा ये गीत। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम है गीत। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजें।
7: जिसके सब

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सच्चाई फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले, मोहम्मद रफीक की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: संस्कृत भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।
2: घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
3: तो ऐसा बोलो ना,
2: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
4: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध की बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।
5: नागपूर महानगर पालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाइन भरा आणि मिळवा 15% सूट। तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा।
6: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित
0: कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के में स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं सावन भादो फिल्म के इस गीत को, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने और सोनिक ओमी का संगीत है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने इस गीत को गाया है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन
3: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हम जोली इस फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में धरती फिल्म का गीत, राजेंद्र कृष्ण की रचना, शंकर जयकिशन की बनाई धुन पर।

धरती फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के अब यहीं संपन्न होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने एफआईएच प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां

0: नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कुनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कुनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के

0: वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
1: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग में आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला। वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुल नोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत वंदे मातरम के 150 वर्ष भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिफ 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। एक रिपोर्ट।
2: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमरीका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
3: हम लिख के गया। ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
4: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
3: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और

0: दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2 लाख कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
1: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडैम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ थोड़ी में।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

0: जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरे तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।
1: चक्कर की दवा,
2: शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
1: होमवार बना रहा ना,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: होमवार बना रहा ना,
2: मिट जाए झगड़ा,
1: धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक धनक ध
3: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: टिफंडा लेके दवा का डंडा है, बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
1: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंडा, और आसमान पर उड़े हमारे मगर ध्वज का झंडा
0: है धरती माता।
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, धरती माता।

0: ये वो बात नहीं है जिसकी जगह तुड़ावे हांसी और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे होके ये सन्यासी।
1: अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैजा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी।
0: हो बोलो

अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम चचो लोक में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं देव नेगी और पायल देव की आवाजों में वायु का लिखा गीत, विशाल शेखर का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कहो ना प्यार है इस फिल्म का गीत। लकी अली रम्या की आवाजों में, इब्राहिम अश्क की रचना है, राजेश रोशन का संगीत।

ये गीत था जानम समझा करो। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में मजरू के बोल थे। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक अंतराल का।

0: नागपुर महानगर पालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट। 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट। वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं। घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगर पालिका की वेबसाइट पर विजिट करें। जनहित में जारी।
2: भारत सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र में किए गए दूरदर्शी सुधार आज भारत की मजबूत नींव बन रहे हैं।
3: इन्हीं प्रयासों को नई गति दे रहा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सामरिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक क्रिटिकल एवं रणनीतिक खनिजों की खोज को मिल रही है नई दिशा।
2: MECL देश की खनिज आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने हेतु खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के MECL रहा है राष्ट्र निर्माण।
5: लोक में एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब आपको सुनवाते हैं साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में क्यों हो गया ना। इस फिल्म का गीत जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे।

0: सिर्फ विविध भारती पर।
1: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहाँ से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

जिसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

विनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपरा को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

0: डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक बच्चन, ऋषिता भट्ट, ओम पुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती है मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। जान जाओगे मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

0: अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी।
1: मस्ताना पल देना, सिर्फ एक तू है लाखों में अकेला।
2: आकाशवाणी नागपुर केंद्र आणि विविध भारती नागपुर वरून प्रसारित करीत आहोत लाइव फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर। श्रोते हो नमस्कार। कॅन केअर फाउंडेशन आणि मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपूर

0: प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या लाईफ उरिन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज या लाईफ उरिन कार्यक्रमात आपण बातचीत करणार आहोत मुख कर्करोग ओरल कॅन्सर यासंबंधी. आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आपले प्रश्न आपल्या शंका आपण डॉक्टर सुशील मानधनिया यांना विचारू शकता आणि या कार्यक्रमात सहभाग घेऊ शकता. आमचे फोन नंबर्स लक्षात घ्या. फोन नंबर्स आहेत 6940067 256 0101 आणि 2529266. आपण जर नागपूरच्या बाहेरून कॉल करणार असाल किंवा आपल्या मोबाईलवरनं कॉल करणार असाल तर या फोन नंबर्सच्या आधी 0712 0712 हा नागपूरचा एसटीडी कोड नक्की डायल करा. श्रोताओं आप सुन रहे हैं कैन केयर फाउंडेशन और मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपुर प्रस्तुत हेलो डॉक्टर. ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. आज इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में हम बातचीत करने जा रहे हैं ओरल कैंसर यानी मुख के कर्करोग के बारे में. हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आप अपने सवाल अपनी शंकाएं डॉक्टर सुशील मानधनिया से पूछ सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम में सहभागी हो सकते हैं. हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए. फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266. 0712 ये नागपुर का एसटीडी कोड डायल कीजिए अगर आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं या आप नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं. डॉक्टर सुशील मानधनिया नमस्कार.
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग.
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइफ फॉर इन प्रोग्राम में. आज हम बातचीत करेंगे ओरल कैंसर.
1: ओरल कैंसर यस.
0: मुंह के जो कैंसर्स होते हैं कर्क रोग होते हैं. क्या परसेंटेज है जो अगर हम कैंसर के पेशेंट्स देखें तो ओरल कैंसर और बाकी कैंसर इसमें किस तरह के परसेंटेज पाए जाते हैं?
1: एक्चुअली ये ना बहुत वेग क्वेश्चन है. अगर हम ओरल कैंसर मुख का कर्क रोग, मुख्य कर्क रोग में आता है लिप, जिंजीवा, मुख के अंदर का भाग जैसे बकल म्यूकोसा, टंग और हार्ट पैलेट, ऐसा. अच्छा। इतना मुझे ग्रॉसली. हाँ। पीछे का भाग जनरली ओरल कैंसर में नाता, पर दैट इज हेडनेक मैलिग्नेंसी, ओरोफेरेंजियल में सब आ जाते हैं. अगर वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो ये थर्ड फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, पर अगर हमारे देश की स्थिति देखते हैं तो नियरली इट इज ए फर्स्ट नंबर.
0: अच्छा।
1: अगर देखते हैं अगर नंबर ऑफ केसेस में जो ओरोफेरेंजियल पकड़ ले तो फर्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, और विदर्भ की स्थिति देखते हैं तो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड यही है.
0: अच्छा।
1: मेल में तो डेफिनेटली, फीमेल में एटलीस्ट दे आर थर्ड नंबर. तो हमारे पास जो नंबर है दे आर ह्यूज. ह्यूज का मतलब है बहुत ही बड़ा नंबर है ये ओरल कैंसर का. और ये जो ओरल कैंसर्स क्यों ज्यादा है, मुझे मुख कर्क रोग क्यों ज्यादा है, क्योंकि डेमोग्राफिक पैटर्न है. अगर आप विदेशों में देखते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में देखते हैं, नॉर्थ दैट इज नॉट साउथ एशियन. साउथ एशियन का मतलब है इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पे ओरल च्यूएबल टबैको है ना, खर्रा, पान, मावा, गुटका, ऐसे डिफरेंट फॉर्म्स में लिया जाता है, दैट इज च्यूएबल टोबैको. पर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे आपको खर्रे वर्रे खाते नहीं दिखे हुए, है ना, वो दिखा तो पक्के से वो हमारा इधर आसपास के बंदा है, तो उधर है जनरली स्मोकिंग टोबैको. तो दैट इज द रीजन वहां पे लंग कैंसर ये सबसे ज्यादा या देखने को मिलता है इसमें. तो हमारे रीजन का मुख्य जो कैंसर है दैट इज ओरल कैंसर, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ अवर डायट्री टोबैको पैटर्न. टोबैको पैटर्न का डायट्री पैटर्न. अगर हम विदर्भ की बात देखते हैं और अगर मैं मेरे हॉस्पिटल का डेटा बताता हूँ तो इट इज नियरली 42-45% ऑफ माई ओपीडी पेशेंट्स. इतना ह्यूज नंबर है ये इसका. हो सकता है शायद रेफरल बायस भी होता है, कई बार ट्रीटमेंट बायस भी होता है, कई बार पेशेंट एक के पीछे एक आने के कारण. तो दैट हॉस्पिटल डेटा इज नॉट ए करेक्ट इंडिकेटर, बट पॉपुलेशन बेस कैंसर रजिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपको उस जगह के और कैंसर्स के जो कौन सा पैटर्न है, किस जगह पे ज्यादा हो रहे हैं, क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या डेमोग्राफिक वेरिएशन है, ये बताते. पर द अनफॉर्चुनेटेड पार्ट अबाउट द पॉपुलेशन बेस कैंसर रजिस्ट्री है ना कि अगर आप देखते हैं तो वी आर 140 करोड़
0: जी,
1: जो मोदी जी हम हरदम बोलते हैं ना, मेरे 140 करोड़ देशवासी. तो अगर इसमें देखें तो इसमें डिस्ट्रिक्ट आते हैं अप्रोक्सीमेटली 790 टू 800 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास इंडिया में है. वी आर ओनली 38 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री विच कवर्स 11 to 18%.
0: डाटा ही हमारे पास उतना नहीं आ रहा है, संभावना
1: बहुत कम है. और बहुत सारे मरीज है जो डायग्नोस हो रहे है या रजिस्टर नहीं हो पा रहे, या अनडायग्नोस हो रहे, या बीमारी से मर जा रहे, जो कि कहीं इसका डेटा रजिस्ट्रेशन में नहीं है. तो इसका मतलब है कि इसकी जो संभावना है, इसकी जो संख्या है डेफिनेटली ज्यादा है। और इसका मेरा पर्सनल

0: उदाहरण मैं देता हूँ कि जैसे मैं हर महीने गढ़चोली जाता हूँ चातगांव में, तो वहाँ पे अगर हम परसेंटेज ऑफ पेशेंट देखते हैं तो नियरली 90% जो मैं पेशेंट देखता हूँ ओरल कैंसर के. पर अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये जो डेटा में कहीं रजिस्ट्री में आ रहा है क्या, ऐसे कितने एक्चुअली मैं तो जा रहा हूँ इसलिए मुझे दिख जा रहे हैं, हम उसका डेटा भी मेंटेन करना शुरू रख रहे हैं, पर ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने रूरल एरिया से जहाँ पे ये डायग्नोस ही नहीं हो रहा, रजिस्टर नहीं हो रहा, तो इसके कारण इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी समस्या है और ये बढ़ रही है. तो कैसा होता ना, गांव में पहले खर्रे नहीं पहुंचे थे. अभी
1: इसके बारे में जरूर बात करेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं. हेलो
2: हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब.
0: नमस्कार वाक साहब, बोला
2: सर. मला विचारायचं जसं आता खूप लोक खूप वर्षापासून पुडी तंबाखू व मावा हे खातात, त्यांचं जसं तोंड पूर्ण उघडत नाही, एक बोट दोन बोट, तर हे जशी ही पहिली स्टेज आहे का, व ही स्टेज जसं आली तर यांनी सगळ्यात पहिले काय टेस्ट करायला पाहिजे, व जर मुख कर्करोग होतो तर तो पसरू शकतो का?
0: येस, कैसे होता ना की कैंसर के पहले तो कॉजिटिव फैक्टर्स म्हणजे किस कारण से हो रहा है, प्री प्रोडर्मल सिम्टम्स म्हणजे इनिशियल का, डायरेक्टली तुमची बकेट के पाणी डायरेक्टली तुम्ही गिरेगा ना, वो भरते हुए दिखेगा आपको ना, तर एक्झॅक्टली व्हॉट आर द प्री कॅन्सरस सिम्टम्स आणि त्याच्यानंतर मग कॅन्सरचं डायग्नोसिस आणि त्याच्यानंतर कॅन्सरचं स्प्रेड. तो कारण पहले देखना बहुत जरूरी कि हमारे यहाँ पे जो मेजर कारण है ना, दैट इज टोबैको रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो तंबाकू तो हजारों सालों से खाया जा रहा है ना मैडम, पर अभी जो पैटर्न में सडन चेंज क्यों देखने मिल रहा है, व्हाई वी आर सीइंग यंगर पेशेंट्स कमिंग, मुझे 22 साल 25 साल 28 साल के पहले कैसे आते थे, वो काका जी झाड़ के नीचे तंबाकू खैनी घोट रहे, 60 साल से खा ले, तू भी खा, बाजू वाले भी खा, बट दैट कैंसर वी यूज्ड टू सी बाय एज ऑफ 60 इयर्स 70 इयर्स 25 40 साल का उनका हिस्ट्री रहता था
1: जी.
0: तो ये जो है ना, दैट इज एज गुड एज एक बुलक कार्ड में चलना और अभी एक फास्ट बुलेट ट्रेन में आना, तो इतना फास्ट मुझे जो स्पीड है, नहीं नॉट स्प्रेड, द स्पीड ऑफ द डिसीज, मुझे फ्रॉम द कॉजिटिव में जहां से उसका जो कारण है उसका शुरुआत से और उसकी बीमारी का उद्गम में, तो ये बहुत कम हो गया है डिस्टेंस, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, मुझे एक और 11 जो बोलते हैं ना सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, तो तंबाकू सुपारी चूना पान फ्रिक्शन प्लास्टिक सम इम्प्यूरिट केमिकल मिक्सचर, वो डेफिनेटली कुछ सुपारियां जो देखने मिलती है वो केमिकली प्रोसेस्ड होती है ताकि वो एडिबल फॉर्म में आ जाए उसमें, बट दैट कैन बी अ वेरी वेरी कैंसरोजेनिक केमिकल, बहुत कैंसरस केमिकल डेफिनेटली. मैं काफी वीडियोस यूट्यूब में देखा जिसमें उसमें ये तो उकालती है ऐसे, इसमें साथ साथ में ना वो मांजा जो बनाते हैं पतंग में, तो उसमें कांच होता है बारीक करके, तो वो भी डालते ताकि उसमें फ्रिक्शन आ जाए, तो दैट इज द रीजन आप देखोगे इनके मुंह नहीं खुलते, इनके मुंह में छिलावा रहता अंदर से, थोड़ा सा भी तीखा नहीं खा पाते, टेस्ट ही नहीं होता इनके इसमें, और पानीपुरी का पानीपुरी दैट इज द रीजन वो भी नहीं जा पाते इनके, इतना छोटा सा मुंह हो जाता है, मुझे खुल ही नहीं पाता, दैट इज अ प्री कैंसरस का. इट इज कॉल्ड सब
1: म्यूकोसल फाइब्रोसिस. उनसे बात कर लेते हैं. हेलो
3: हेलो, नमस्कार डॉक्टर.
0: नमस्कार जी.
3: आत्माराम कोरडे 334 जिल्हा वाशिम इथून बोलतो.
0: बोला जी.
3: प्रश्न असा आहे की एखाद्या माणसाला तंबाखू घोटकायचं जर व्यसन असलं, पण त्यानं ते व्यसन सोडून दिलं तरी सुद्धा त्याला कॅन्सर किती दिवस पर्यंत त्याची शक्यता असते कॅन्सर होण्याची. आणि प्रश्न दुसरा असा आहे त्याला लागूनच की समजा पान खाल्ल्यामुळे सुद्धा कॅन्सर होऊ शकतो.
0: वा, बहुत अच्छा प्रश्न आहे. पहिली चीज आहे की जिस दिन भी आप उसको छोड़ते हैं तभी से आपकी रिस्क शक्य कमी होना शुरू हो जाते, चांगले पॉजिटिव साइंस होना शुरू हो जाता, अर्थ कि जितक उशीर कसी कभी भी आप छोड़ो उसका फायदा उसी दिन से शुरू होगा, तो आपको उस चीज के लिए ध्यान रखना है. और जनरली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी किस समय पे आपने छोड़ा था, ठीक है ना. मैंने जनरली देखा जो पेशेंट कैंसर के जो कैंसर बोलते ना, अरे तुमने गुटका सारा छोड़ दिया, बोले मैंने वो इसलिए छोड़ा उसने कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ तो भी हुआ है उसके अंदर मुंह में, आप देखोगे तो कैंसर के छाला दिखेगा आपको, कहीं ना कहीं अंदर से गांठ दिखने वाली है, तो वो ऐसी चीज रहती कि वो एकदम डर के छोड़ दे, पर दैट इज ऑलरेडी वेरी लेट. तो पर हाँ, तब भी छोड़े तो भी थोड़ा बहुत फायदा डेफिनेट रहेगा फॉर द स्प्रेड ऑफ द कार्सिनोजेंस, मुझे उसके जो उसका खत पानी है वो, तो अगर वो बंद करते उस समय भी तो भी फायदा होगा. और अगर हम बंद कर देते हैं तो भी एक चीज ध्यान रखना कि बंद करने से भी आपका रिस्क जीरो नहीं हुआ है, आपका रिस्क रिडक्शन होना शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप रेगुलर डॉक्टर को 6 महीने में एटलीस्ट एक डेंटल इवैल्यूएशन होना चाहिए ताकि मुख में जैसे ल्यूकोप्लेकिया एरिथ्रोप्लेकिया जैसे सफेद चट्टा लाल चट्टा छोटा सा कोई अल्सरेशन दिख रहा है या कोई घाव दिख रहा है अंदर में जीभ में या हो सकता है कि आवाज में चेंज है गले में गांठ है ऐसी छोटी मोटी भी चीज रहेगी तो तुरंत वो पकड़ में आती है ताकि उसका सही निदान हो सके बिकॉज

0: डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिस कई बार हो जाता है बिकॉज कि मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो कोई दर्द ही नहीं है, इसका कोई सिम्टम्स ही नहीं है, तो दैट इज द रीजन वो कई बार लेट होने के कारण डायग्नोसिस बहुत लेट होता है, क्योंकि इम्पैक्ट ऑफ डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्योर. अगर आप स्टेज वन में हो तो क्योर इट्स नियरली 98-95%, पर अगर ये स्टेज फोर है तो हम क्योर की शब्द यूज नहीं करते.
1: बिल्कुल डॉक्टर, एक और फोन लेते हैं. हेलो.
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग सर, मैं अमरजीत सिंह बोल रहा हूँ, लश्करी बाग नागपुर से.
0: हाँ अमरजीत जी, बोलिए.
2: ओरल कैंसर में सर, मतलब एक बार अगर पेशेंट रिकवर कर जाए, स्पेशली जो यंगस्टर्स है, तो उनमें सर ये रिकरेंस का कितना चांस है, क्योंकि ये सर आजकल अपने यहाँ मतलब हुक्का बार जो इतने खुल गए है, तो ये कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, मतलब यहाँ पे जैसे आजकल सब लोग जाते हैं, मतलब विजिट करते, मतलब ये जानना चाहूंगा. थैंक यू सर.
0: बहुत अच्छा अमरजीत जी, मुझे लगता है मिस्टर बाग और अमरजीत जी दिस आर द वेरी वेरी
1: विजिलेंट,
0: और मुझे हर बार मैं इनके प्रश्न सुनता भी हूँ और बहुत ही अच्छे प्रश्न होते हैं इनके. तो पहला चीज है कि रिकरेंस, देखिए कैसा होता है ना कि देर आर टू टाइप्स. रिकरेंस का मतलब होता है कि वही जगह पे. एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ओरल कैंसर में होती है, दैट इज कॉल्ड न्यू प्राइमरी.
1: अच्छा,
0: ये दोनों में जब दो शब्दों का फर्क है. रिकरेंस का मतलब जैसे जीभ का कैंसर था, ऑपरेट कर दिया वही जगह पे दोबारा आया. पर कई बार ऐसा होता है कि जीभ का कैंसर था, ऑपरेट कर दिया आपने, पर उसको फिर बकल में कुछ आ गया.
1: अच्छा.
0: तो ये क्यों हुआ? तो दैट इज कॉल्ड फील्ड कैंसरोजेनेसिस. ठीक है ना, ये रूम है हमारा ना, ये रूम में बहुत बड़ी आग लग जाती है, तो एक दीवार के पास आग लगी तो दीवार तो पूरी जल गई, गड्ढा भी हो गया उसमें, पर इसका मतलब नहीं कि बाकी दीवारें बच गई. वहां पे भी जबरदस्त डैमेज हुआ है, वो भी वीक हुई है, वो उसको भी डैमेज के कार्ड का ट्रीटमेंट लगेगा. तो एग्जैक्टली ओरल कैंसर में जब अपन तंबाकू गुटखा जो भी खाते हैं उसका जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे बकल म्यूकोसा पे, लिप्स पे, जिंजिवा पे, निगलते वक्त सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, पीछे के फैडिंग सब जगह हो रहा है ना. आप उसको निगल के पिक अंदर लेते हैं तो ईसोफेगस, स्टमक, कोलोन में भी आता है, वहां से एस्क्रिट होता है. तो इसका मतलब है कि ये फील्ड कैंसरोजेनेसिस होता है, तो न्यू प्राइमरी की भी रिस्क बहुत ज्यादा रहती है. इसमें डिपेंड करता है कि वो अंदर जब ट्रीटमेंट लिया था उस समय उसका ओरल का म्यूकोसा कैसा था, उसका अंदर का इंपैक्ट कितना था. इससे हमको आइडिया आ जाती है कि इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, इसमें फॉलोअप बहुत स्ट्रिक्ट रखना पड़ सकता है. और ये बात हुक्का बार
1: जी,
0: तो ये तो ऐसा चीज है कि अभी ये एक अनयूजुअल ट्रेंड बन गया है बच्चों में, लोगों में, नए लोगों में. और कई बार इसको इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि नॉन स्मोकिंग या नॉन टोबैको हुक्का. पर मुझे लगता है कि इसमें दो चीज हो सकती है. एक तो एनी हाउ यू आर स्मोकिंग सम इम्प्योरिटीज, जो उसमें चारकोल तो रहता ही
1: कुछ ना कुछ
0: तो चारकोल रहता, तो ऑटोमेटिकली इट इज डीप इंस्पिरेशन, तो आपके लंग्स में डेफिनेटली इसका इफेक्ट होता है. उसके उसमें तो फिल्टर्स नहीं हो पाते, तो उसके कारण डैमेजेस होने की संभावना ज्यादा रहती है. और आप कितने इंटरवल तक लेते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. तो जो चीज नेचुरल नहीं हो डेफिनेटली गलत ही हो.
1: बिल्कुल बिल्कुल. हम श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दें, हम सुन रहे हैं कैन केयर फाउंडेशन और धनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइफ उड़ीन प्रोग्राम, और आज हम बात कर रहे हैं ओरल कैंसर यानी मुख के कर्क रोग के बारे में. हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया. आप अपने सवाल पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए. फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 2560101 और 2529266 0712. ये नागपुर का एसटीडी कोड डायल कीजिए अगर आप मोबाइल से कॉल करना चाहते हैं या नागपुर के बाहर से कॉल करना चाहते हैं. डॉक्टर मानधनिया, आप कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंसर के फील्ड में, तो ये जो बदलते हुए ट्रेंड्स हैं ये आपने करीब से देखे हुए हैं, तो इसके बारे में जैसे ओरल कैंसर के हम बात कर रहे थे कि पहले लेट बड़े लोगों में देखा जाता था, कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है, तो
0: पैटर्न,
1: तो इसके साथ ही साथ क्या ट्रीटमेंट और बाकी सब चीजें भी बदली है, बदलती है?
0: इट्स अ डायनामिक प्रोसेस
1: जी.
0: तो ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग डायनामिक है. और कैसा होता है ना कि कैंसर की ट्रीटमेंट का मैं बार बार बोलता हूँ, ये बाम्बू का झाड़ है, तो बाम्बू के झाड़ में कैसा होता है ना कि सालों लग जाते हैं उसके जड़ों को, और ग्रोथ ऊपर दिखती ही नहीं है, और फिर एक किसान में आपको 30 फीट दिख जाएगा वो.
1: अच्छा.
0: तो दैट इज ऑन्कोलॉजी नाउ. ऑन्कोलॉजी ने सालों से इसकी जड़ें पकड़ी थी. अब जो हम जो इवेंट देख रहे हैं, जो जिस तरह से ड्रग्स आ रहे हैं, दे आर फिनोमिनल, मुझे माइंड बॉगलिंग है. रोज एक नया दो ड्रग आ जाती है इसमें, और उसके जो इम्पैक्ट थे वो ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर को चेंज कर देते. तो अब जो ऑन्कोलॉजी इज ए वेरी वेरी एक्साइटिंग फील्ड, बिकॉज कि हम जो ट्रीट कर रहे हैं ना वो बेसिक ट्रीटमेंट से बहुत परे हो गया अभी कि जैसे पहले था कि काटपीट डालो, पूरा जबड़ा निकाल डालो, या फिर बहुत हैवी कीमोथेरेपी दे दो, ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल थे जो बहुत टफ थे. अभी तो वी आर गोइंग इन टू ए टारगेट थेरेपी, प्रिसीजन बेस्ड मेडिसिन और वेरी वेरी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन, नॉट स्पेसिफिक डिसीज. बीमारी को स्पेसिफिक नहीं बोल रहा हूँ, आदमी स्पेसिफिक.

0: हाँ हाँ, दिस इज बिकॉज ऑफ द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्यूमर बायोलॉजी. हम वो बीमारी को बहुत अच्छी से समझ पा रहे कि ये बीमारी जैसे जैसे लंग कैंसर है, समझे, एक एग्जांपल देता हूँ आपको. तो ये लंग कैंसर सबके लिए एक ही था पहले, अब ऐसा नहीं रहा. अब लंग कैंसर में इतने सारे EGFR क्रॉस P10 BRAF पॉजिटिविटी PD-L1 पॉजिटिव, इतने सारे पैटर्न आ गए, इतने सारे नए नए इम्पैक्ट आ गए कि इनके लिए एक एक जो म्यूटेशन के लिए कम से कम 8-8 दवाइयां हैं, जो कि बहुत ही सिंपल ओरल और देर ट्रेमेंडस. मैं जब जैसे एग्जांपल देता हूँ, लंग कैंसर ALK पॉजिटिव, जनरली पहले ये लंग कैंसर ब्रेन वाले 3-4 महीने में खत्म हो जाते थे, दे बचते नहीं थे, बट जब ALK पॉजिटिव 6-7 साल से अच्छे, अनइमेजिनेबल है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भी विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडिएशन, विदाउट एनीथिंग, जस्ट सिंगल टैबलेट ए डे. तो दिस इज लॉलाटेलिप. तो ऐसे जो दवाइयां है तो ये तभी दे पाते ना जब हम बीमारी को सही तरीके से समझ पा रहे.
1: जी, एक श्रोता है फोन पे. हेलो,
2: नमस्ते मॅडम. नमस्ते सर.
0: नमस्कार.
2: मला सर हा प्रश्न विचारायचा होता की पूर्वीच्या काळी पान खायचे, त्यामध्ये तंबाखू नाही, चुना, काच आणि बाकीचे सुपारी ते टाकून खायचे, तेव्हा तरी कॅन्सरचं प्रमाण, मुख कॅन्सरचं प्रमाण कमी होतं. तर त्याचं कारण काय? आणि दुसरा प्रश्न आहे सर की आपण जेव्हा रूट कॅनल करतो किंवा सिमेंटिंग करतो आणि ते निघाल्यानंतर जे आपल्या दातामध्ये अन्नाचे कण फसतात, तर त्यामुळे पण मुख कॅन्सर होऊ शकतो का?
0: वेरी गुड, दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं. पहला तो है पान. तो अगर आप ओरिजिनल तरीके से अगर पान देखते हो तो इट हैज गॉट अ वेरी गुड डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज, बहुत अच्छे. तो इसलिए आप देखेंगे कि डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज के कारण ही इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है. ठीक है, पहले कैसा होता था कि देर वेर, अब अगर मैं मेरी नानी से उदाहरण लेता हूँ, तो बच्चे 8 बच्चे, ठीक है ना, तो देर वॉज नो कॉन्ट्रासेप्शन, इतने सारे बच्चे, बार बार डिलीवरीज, तो इस पान में वो चूना लगाते थे. तो दैट वॉज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर देम. मुझे साइंटिफिकली अगर सोचा जाए तो ऐसा था, बिकॉज उस समय ना तो कोई तंबाकू था, ना जनरली तंबाकू नहीं यूज करते थे, पर उनके छोटे छोटे छोटे बीड़े होते थे, पड़े रहते थे, दिन में 10-15 तो खाती थी, तो मुंह में रहते थे उनके. पर आई हैड नेवर सीन एनी मैलिग्नेंसी इन दोज पेशेंट्स, मैंने नहीं देखी इसमें कभी भी. तो देर हैज टू बी समथिंग और, तो इसमें और कुछ तो भी पाप जरूरी है, तभी जाके कैंसर होने वाला है इसमें. तो ये जो पाप है वो दिस इज तंबाकू और दिस इज प्रोसेस्ड सुपारी, ये भी बहुत ही डेंजरस है. तो मुझे लगता है कि हमारा जो मेजर प्रॉब्लम है दिस इज खर्रा, नॉट तंबाकू. मैं बार बार बोलता हूँ तंबाकू तो सेकंड नंबर पे रखूंगा मैं, खर्रा इज ए मेजर प्रॉब्लम. तो खर्रे में तंबाकू आ ही गया, पर इसका जो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है वो बहुत ही लिथल है. तो इसमें जिसको कैंसर होना तो बहुत दूर की बात है, पर नहीं होने के बाद भी इनके मुंह नहीं खुलते, पूरा मुंह छिला हुआ रहता है, खा नहीं पाते, टेस्ट नहीं रहता, तो ये भी तो एक एज गुड एज कैंसर ही है. आप जिंदा हो पर
1: क्वालिटी ऑफ
0: लाइफ इज सो बैड विद यू. और ये इरिवर्सिबल है, मैं आपको बता दूं, रिवर्सिबल नहीं होता. लोग बोलते हैं ना इसमें ये इंजेक्शन दे दो, वो इंजेक्शन दे, कुछ नहीं काम करता इसमें, नो गोली भोली कुछ काम नहीं करती, सब फालतू का प्लासिबो है. तो जनरली ये हो गया तो तुम्हारा तुम गए काम से. रूट कैनल ट्रीटमेंट के बाद में जनरली फूड का जो कैसा होता है कि ओरल हाइजीन हैज गॉट ए रोल विद द मैलिग्नेंसी, ठीक है, बट वेरी फेंट रोल है, बट यस डेफिनेटली ओरल हाइजीन हैज गॉट रोल. तो पर रूट कैनल पर से जहां पे गड्ढा हो जाता है वहां पे फूड पार्टिकल रखे, वी डोंट हैव एनी स्टडीज टू वैलिडेट दिस थ्योरी. तो इसका मतलब है कि आज की स्थिति में मेरे पास इसका आंसर नहीं है.
1: जी, तो डॉक्टर मांदनिया, क्या हम ये मान चले कि खर्रा खाना या किसी भी तरह का तंबाकू खाना ये ओरल कैंसर का मुख्य कारण हो सकता है?
0: देखिए,
1: यही एक कारण होता है.
0: नहीं, नहीं, अगर आप कोई भी चीज को अगर देखते हो तो मेरे पास 100 रुपए है, तो नियरली 90 के आसपास मैं इसी को देने वाला हूँ, ठीक है. पर इसका मतलब नहीं कि कई लोग तो ऐसे बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो खाता ठीक है, ये तो वो तो कुछ भी नहीं करता, उसको तो कोई शौक, ये तो सोप सुधा नहीं खाते, नहीं झाला, तो इसका मतलब दैट जस्टिफाइज देयर बैड थिंग. तो ऐसा नहीं है, इसमें ये होता है कि भाई देर आर अदर कॉसेज ऑल्सो. जो नॉन टोबैको प्रॉब्लम पेशेंट्स है उनमें भी बहुत सारे कारण है. मेजर कारण ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन, जैसे जो बोलते हैं ना जो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन जो यूज करते हैं, जिसको सर्विस के नाम से लेबल किया गया, बट दैट इज नॉट सर्वाइकल, दैट इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन. पर वो ओरल कैंसर से भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन देते हैं. तो दैट इज वन थिंग, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से भी ओरल कैंसर होते हैं. फिर सेकंडली जनरली हम देखते हैं कि जो रिपीटेड ट्रॉमा, जिनके शार्प टूथ होते हैं ना, दांत वात बहुत शार्प होते हैं, कई बार जीभ को बार बार लगते हैं, या बकल में अंदर गाल के अंदर भाग को, तो रिपीटेड ट्रॉमा कैन इटसेल्फ कैन कॉज मैलिग्नेंसी. तो ये दो चीजें बहुत है. बाकी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन लाइकन प्लैनस हो गए, छोटे बहुत रेयर है, पर जनरली वो थियोरेटिकल है चीजें. पर ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना होगा नॉन मैलिग्नेंट नॉन टोबैको पेशेंट में भी संभावना हो सकती है.
1: और जिस तरह से बातें चलती है कि कैंसर, मतलब मुंह का अगर कैंसर है तो देखने में ही पता चल जाता होगा, लेकिन उसमें भी क्या बायोप्सी करने की जरूरत पड़ती है, क्या बायोप्सी जरूरी होती है, क्योंकि

0: बायोप्सी से कई लोग डरते भी हैं, कहा जाता है कि बायोप्सी करने से वो बढ़ जाएगा कैंसर, तो ये कहां तक सच
1: है? पहले चीज ना कि पेशेंट का वजह, इसमें पेशेंट की सोच को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट जो मुख्य कैंसर का डॉक्टर के पास आता है ना, तो उसको पता होता है कि मेरे पास कैंसर की चांसेस है, तभी तो एक्चुअली जैसे अभी 9:30 से 10 के बीच में ना अमरीशपुरी के बारे में चल रहा था आज के फन का, तो हम अमरीशपुरी मेडिसिन के कैंसर की फाइल भी कोई देखी तो बोलते अरे मानदेन है क्यों गया था तू, अरे भैया ऐसे आया था तो जरूरी थोड़ी कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट लेना है, तो वी आर अमरीशपुरी ऑफ द मेडिसिन, कैंसर शब्द सुनते सब डर जाते हैं उसमें, तो इसमें बायोप्सी के लिए जो आता है पेशेंट मेरे पास में उसको पता होता है कि संभावना ये है, पर उसके दिमाग में क्या चलता है मैं बताता हूँ, डॉक्टर साहब बिना बायोप्सी के कर दो, बिना छेड़छाड़ के कर दो, औजार नहीं मत लगाओ, मेरा चेहरा बदल जाएगा, मैं खाना नहीं खा पाऊंगा, मैं चेहरे में दिखेगा कैसे मेरे को, तो वो चीजें उसके दिमाग में रहती है, तो ही वॉन्ट्स टू हियर दिस फ्रॉम यू, पर ऐसे लीगली तो हम संभव ही नहीं सब चीजें बोलना, हमारा काम ही कि लीगली चीज बनता, तो ऐसे वक्त में उनको जहां फिर गलत ऐसी होप मिलती है वहां वो जनरली जाते फिर, और वो बायोप्सी नहीं, बिना बायोप्सी का गारंटेड ठीक हो जाएगा, पर जनरली जब वो स्टेज 1 के पेशेंट हमारे आते स्टेज 4 में आ जाते फिर, तब इतने बड़े बड़े ट्यूमर, मुंह फटा हुआ है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, बड़े बड़े नेक में नोट्स है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि भाई हमने ट्रीटमेंट लिया और इसलिए मर गए हम, अरे भैया तुम स्टेज 1 पे थे तब तो कुछ भी नहीं किया, तुम स्टेज 4 में आया फिर ट्रीटमेंट लिया, तो फिर तो ऑब्वियसली दैट इज ए रिटर्न टिकट फॉर यू, तो ये चीज आपको बहुत समझना जरूरी है कि फर्स्ट स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिखता है ना आपके जीभ में एक छोटा सा छाला हो जाता है मैडम, आपको तकलीफ होंगी दिन खाने में इसमें उसमें, तो इतने बड़े बड़े छाले लेके कैसे का पेशेंट जिंदा रह सके, मुझे रह सकता है विदाउट ट्रीटमेंट, बिकॉज इट इज ए फियर, फियर ऑफ बायोप्सी, फियर ऑफ स्प्रेड बिकॉज ऑफ बायोप्सी, डिनायल, ये मुझे नहीं है कैंसर, मुझे नहीं हो सकता, तो ये एक डिनायल है, चौथा क्या बोलता है पेशेंट, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं, कोई दर्द ही नहीं मुझे इससे, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि अगला स्टेप क्या होने वाला है, तो ये चीजें पेशेंट का जो डर होता है वो ही उसको बहुत लास्ट स्टेज में लाता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें करता है बाहर की जो कि नॉन साइंटिफिक होती है, अल्टीमेटली आते हैं हमारे पास में, तो पर उसका अल्टीमेट जो स्टेज 1 का जो क्योर है नियरली 90% प्लस है, वो स्टेज 4 में तो क्योर के शब्द यूज ही नहीं करते हम, इसमें सिर्फ कंट्रोल के शब्द को यूज करते हैं, बिकॉज जो फैक्ट है वो आप हमको बताना बहुत जरूरी होता है इसमें, तो हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई ऐसा कुछ सिम्टम दिखते हैं जैसे जीभ पे छाला है और होंठ पे कहीं छाला दिख रहा है, जो टच करने से ब्लीडिंग हो रही है उसमें, दिस इज वेरी डेंजरस, अगर ब्लीड हो रहा है तो बहुत ही वैस्कुलरिटी, वैस्कुलरिटी इज मोस्टली सीन इन मैलिग्नेंसी, एफ्टस अल्सर्स में क्या बोलूंगा, रेड रह सकता है, येलोइश रह सकता है, पेनफुल रह सकता है एफ्टस, जनरली एफ्टस अल्सर्स की खासियत बताता हूँ कि वो नींद नहीं होने से या संडा साफ नहीं होने से या स्ट्रेस से बढ़ जाते मैलिग्नेंसी में, ऐसा नहीं होता है इसमें, तो ये चीजें ध्यान रखना है, और देयर मैलिग्नेंसी मैलिग्नेंट जो अल्सर रहते हैं ना वो पीरियोडिक वेरिएशन नहीं होगा, 3 दिन में कम हो गया, 3 दिन बाद बढ़ गया, एफ्टस अल्सर ऐसे हो सकता है, तो
0: बिल्कुल इसके बारे में और बातें करेंगे, पहले एक फोन ले लेते हैं, हेलो हेलो, हाँ नमस्कार
2: डॉक्टर साहब, मेरे दो सवाल है,
1: हाँ जी,
2: पहला सवाल ये कि जैसे अभी आपने कहा कि अपने अपने जो टंग या जो गाल है, गाल चीक चीक इनसाइड ऑफ द चीक, वो टीथ से अंदर आ जाने से वो वहाँ पे वो थोड़ी इंजरी होती है, ब्रुइजेस होते हैं, और वो दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर कैंसर, तो उसको प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, ये मेरा पहला सवाल है, और दूसरा सवाल ये है कि वो जो 3-finger टेस्ट है वो क्या इज इट ए श्योर शॉट प्री कंडीशन फॉर कैंसर?
1: नहीं, फर्स्ट थिंग इज ट्रॉमा, तो ट्रॉमा का मतलब है कि आप आज रात को खाना खा रहे थे एकदम से एक बाइट हो गया तो आपको कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, दैट इज ए रिपीटेड सस्टेन ट्रॉमा, आपको सस्टेन सालों से चल रहा है ना वो कंटिन्यूअसली ट्रॉमा हो रहा है, तो दैट कॉज ए लॉट ऑफ ट्यूमर सेलुलर मेटाप्लेसिया एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलिग्नेंसी, तो वो एक चीज है, तो इससे बच्चे कैसे, अब अंगार में आपने हाथ डाला है तो आपको अंगार से कैसे बचनी है ना, हाथ थोड़ी पूछा हाथ निकालो ना बाहर आप, तो एग्जैक्टली वही है कि आपको अगर दांत बार बार गड़ रहा है तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट कि भाई ये दांत का तो फाइलिंग करे या तो जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है या तो निकाल दे ताकि भाई दैट ट्रॉमा शुड नॉट बी परसिस्टेंट। सेकंड चीज होते कि आई थिंक 3-finger test आपको मैलिग्नेंसी नहीं बताती है, 3-finger test आपको ये बताती है कि भाई दिस इज दी साइड इफेक्ट ऑफ दी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, मतलब आप क्या खा रहे हो उसका साइड इफेक्ट देखने मिल जाता है आपको 3-finger test, तो उसमें कैसा होता है कि दैट इज कॉल्ड सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस, वो फाइब्रोसिस होने के कारण ओरल खुलता नहीं, मुख कम हो जाता है खुलना उसमें, तो दिस इज ए प्री कैंसरस कंडीशन, क्योंकि अगला जो स्टेप है वो आगे में संभावना मैलिग्नेंसी की रह सकती है अगर आपके जो कार्यक्रम शुरू है, तो वो उसको बंद करना बहुत जरूरी है, और ऐसे मरीज ने ये हाई रिस्क होने के कारण इन्होंने 6-6 महीने में रेगुलर ओरल एवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज द अर्ली

0: यस डायग्नोसिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू फॉर क्यूर एंड लेस म्यूटिलेशन. अगर छोटा सा अल्सर है तो आपका छोटे से वाइड लोकल एक्सीजन और छोटे से लिम्फ नोड डिसेक्शन में हो जाएगा. पर अगर समझो जीप का 50% ही जीप इन्वॉल्व होगी तो आपका नियरली 75% जीप तो सर्जरी में निकल जाएगी. तो इसका मतलब क्या कि 50% एक ही दिन में थोड़ी हुआ ना, उसको तो साल भर लगा आपने, तो आप साल भर उसमें क्यूस हुए थे. तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. और मुझे लगता है कि ये जो इसका कारण जो आप पूछ रहे थे ना, बायोप्सी औजार लगाने से कैंसर फैलता है, दिस इज द बिगेस्ट मिथ. सेकंड बिगेस्ट मिथ इज कि मैं खा नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा, चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं रहा. पर एक चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है, मैं सभी को आपके इस चैनल के मार्फत बोलता हूँ कि सर्जरी इज द ओनली क्योर. ये बात ध्यान रखना है. लोग ना फालतू चीजों में जाते हैं, डॉक्टर साहब क्यूमो दे दो ना, इम्यूनोथेरापी से ठीक कर दो ना, ये सब फालतू बात है. बेस्ट चांस इज सर्जरी. अगर आप वो सर्जरी से छूट गए आगे सर्जरी के लिए, तो अगर आपके नसीब खराब है तो ही आप मेरे पास आने वाले हो. इसका मतलब है कि भाई सर्जरी उसी लोगों में नहीं हो सकती है जिसका बीमारी एडवांस स्टेज हो गया है, जहां पे सर्जिकल संभावना नहीं है. तो देन रोल कम की कीमो से या इम्यूनोथेरापी से उसको श्रिंक करें, या सर्जरी का रोल तब खत्म हो जाता है जब ऑलरेडी स्टेज फोर है, लंग्स में चले गया, हड्डी में चले गया. उस सर्जन क्या कर लेगा उसको निकाल के, तो ये एक दिन में तो गया नहीं ना. तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब शुरुआत सिम्टम्स है अगर आप उस समय निकाल लेते हैं तो आपका क्योर है. अगर वो नहीं कर पाते हैं तो देन द डेथ इज श्योर फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट, बिकॉज इसमें क्योर नहीं हो सकता. आज कितने सारे एग्जांपल्स है, अभी अभी के बहुत अच्छे पॉलिटिशियन आप देखोगे 5 सर्जरी हो चुकी है उनकी, बट स्टिल ही इज क्योर्ड बिकॉज ही वेंट विद दैट सर्जरी. अगर वो ही ऐसी चीज सोचते थे तो आई थिंक ही वुड नॉट हैव बीन हियर राइट नाउ.
1: बिल्कुल. हमने जो डेंजर्स हैं उसके बारे में तो बात कर ली, लेकिन ट्रीटमेंट अगर सही समय पर सही से हो जाए तो क्या एक्सपेक्टेंसी लाइफ की रहती है, किस तरह से पेशेंट ठीक होता है?
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिकॉज कैसा होता ना कि क्योर के शब्द हम तभी यूज करते हैं जब हम सर्जिकली उसको रिसेट कर पाते. पर प्रॉब्लम यहाँ कब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपने नहीं पूछा. मैं बताता हूँ कि कई बार क्या होता है कि सर्जरी होती है तो उसका ना हिस्टोपैथोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार मार्जिन के बारे में कमेंट नहीं होता, बेस के बारे में कमेंट नहीं होता, सब ऑप्टिमल सर्जरी होती. साल में ऐसे कम से कम 20 मरीज तो मैं देखता हूँ जिनका जीभ में ट्यूमर था या बकल में गजा में गांठ, बस उसको गांठ निकाल के छोड़ दी जाती है. और उसके बाद में पेशेंट हमारे पास 1 से 1.5 साल बाद आते हैं गले में बड़े बड़े गांठे लेके. हम समझ ही नहीं पाते इसको इतना सारा क्या है. देन वेन ऑन इवैल्यूएशन हिस्ट्री में समझ में आता कि जीभ में छाला था वो निकाला डॉक्टर ने, तो दैट मीन्स इट इज अ सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट. तो ये चीज से भी बचना बहुत जरूरी हमको कि अगर सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट होता है, आप आपके झाड़ को ऊपर से काट दो और उसके रट्स रूट्स और जड़े नहीं निकालो तो आपको फिर से 1 साल में उसका निकलने वाली है सब. तो एग्जैक्टली सेम इज विद द मैलिग्नेंसी ऑफ ओरल कैंसर. तो ये सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट इज अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग. सेकंड थिंग इसकी करेक्ट हिस्टोपैथोलॉजी बाय अ वेरी गुड पर्सन, मतलब उसका मार्जिन बेस लिम्फ नोड डिसेक्शन. कई बार क्या होता है कि लिम्फ नोड सर्जन पूरे निकाल के भेजता है, पर अगर पैथोलॉजी तो एक्सपर्ट नहीं तो लिम्फ नोड नॉट सीन लिख देते, और ये तो कितना बड़ा प्रॉब्लम है मेरे लिए. अगर वो मेरा ट्रीटमेंट लिम्फ नोड डिसेक्शन के इस पे रहने वाला, लिम्फ नोड पॉजिटिव है तो मुझे रेडिएशन देना है, एक्स्ट्रा लिम्फेटिक स्प्रेड है तो मुझे कीमोथेरेपी भी ऐड करनी है. तो ये चीजें, ये मेरे लिए, मैं तो पट्टी बांधा हुआ हूँ ना कानूनों में, तो मुझे तो एविडेंस लगेगा तभी मैं ट्रीटमेंट दे पाऊंगा.
1: तो मतलब अच्छे ट्रीटमेंट के लिए अच्छा डायग्नोसिस बहुत जरूरी है.
0: गुड सर्जरी, गुड डायग्नोसिस, गुड हिस्टोपैथोलॉजी. हमारे सबसे बड़े भगवान हिस्टोपैथोलॉजी सर्जन ही है. अगर ये सर्जन बहुत अच्छा काम कर लेता है पर उसका सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज अ पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट. तो वी आर ब्लेस्ड, हम नागपुर तो ब्लेस्ड है कि वी हैव गुड ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारी ट्रीटमेंट को दिशा देने में.
1: बिल्कुल. और हम बात कर रहे थे कि पोस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसे होता है,
0: हड्डी निकालनी पड़ेगा, दैट इज वाइड मैंडिबल का पार्ट निकालना पड़ रहा है क्या, पीएमएमसी फ्लैप लगा क्या, ये सब उस पर डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ. सेकंड थिंग इसकी एडजोइंट ट्रीटमेंट आपको क्या लेने की जरूरत पड़ रही है. जिसके नसीब बहुत अच्छे स्टेज 1 डिजीज हाई रिस्क फैक्टर, उसको कोई रेडिएशन की जरूरत नहीं, पर जिसको रेडिएशन मिला है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर फर्स्ट 6 मंथ इज हॉरिबल. मुझे मुंह में इसके इतने छाले, तीखा नहीं खा पाते मुझे, फिर इसके बाद में 3 महीने बाद उनको थूका नहीं बनता. इट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग. मुझे आई कैन इमेजिन कि ये क्या हो सकता है. तो ये क्यों उनको भी क्यों देना पड़ा, बिकॉज कि ये बीमारी ऐसे लेवल पे आई थी, ये स्टेज पे
1: मतलब देना मस्त यही है.
0: दो लोगों की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए, ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सिर्फ सर्जन लेवल पे नहीं पड़ना चाहिए.
1: आप सुन रहे थे कैन केयर फाउंडेशन और मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल हॉस्पिटल नागपुर. हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. आज के इस प्रोग्राम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला नंद किशोर पोकरे और

0: सतीश कोडमलवार से, प्रस्तुति सहयोग मिला सतीश रेवे से, प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता आरएसपुरे, डॉक्टर सुशील मानधनिया के साथ मैं कल्याणी अब आपसे इजाजत चाहती हूँ, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हॅलो डॉक्टर, हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी नागपूर आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागपुर का विविध भारती केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी हिंदी गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत।

भूपिंदर सिंह और मिताली का गाया ये नगमा था, नसीम अजमेरी का लिखा। इसे संगीत में ढाला था खुद भूपेंद्र सिंह ने। चलिए अगला गीत सुनते हैं, अभिजीत सावंत का गाया। इसे लिखा और संगीत में ढाला है अमित त्रिवेदी ने।

गैर फिल्मी हिंदी गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। लीजिए सुनिए साधना सरगम का गाया, प्रवीण शेखर का लिखा ये गीत, संगीत अली घानी का।

उदित नारायण का गाया ये गीत अभी आपने सुना लीजिए। प्रोग्राम की आखिरी पेशकश सुनिए वीवा का गाया ये गीत, जिसे लिखा जावेद अख्तर ने है और संगीत संदीप का।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, आप सभी को सुनवाने प्यारे प्यारे गीत, कुछ किस्से, कोई कहानी। आज की मधुमालती लेकर आई हूँ मैं कल्याणी। हिंदी फिल्मी गीतों के इस प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र से FM 100.6 MHz पर। दोस्तों, सजना सवरना, अच्छा लगना किसे पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति चाहती है कि वो सज धज के जब निकले तो हर कोई उसी की ओर देखता रह जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही सजना संवरना सुंदर लगना चाहती हैं, पुरुष भी उसी तरह से सजना धजना और अच्छा लगना चाहते हैं। ये सजना धजना किसके लिए होता है? क्या किसी को दिखाने के लिए होता है या अपने आप के लिए होता है? किस तरह से सजा जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं सजने में, संवरने में? जेवर यानी जो अलंकार होते हैं, ज्वेलरी होती है, उसका कितना महत्व होता है? चलिए, इन्हीं सभी चीजों के बारे में आज हम मधुमालती में बातचीत करेंगे और सुनेंगे ऐसे कुछ गीत जिसमें सजने धजने की या इन छोटे छोटे अलंकारों की बातें की गई हैं।

अभिमान फिल्म का ये गीत हमने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था और संगीत एस डी बर्मन का था। ये गीत सुना आपने ठीक से, इसमें कितने सारे जेवरों का जिक्र हुआ है और इतने सारे जेवर अगर आप पहन कर निकले तो एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, और ये कॉन्फिडेंस आपके व्यक्तित्व को और गहरा और बेहतर बनाने में मदद करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही ये कॉन्फिडेंस चाहती हैं, पुरुष भी ये कॉन्फिडेंस चाहते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि महिलाओं के लिए कई तरह के संसाधन उपलब्ध है, कई तरह के कपड़े उपलब्ध है, अलग अलग किस्म के जेवर उपलब्ध है, और इसीलिए महिलाओं को ज़्यादा रुचि होती है सजने में, संवरने में, अच्छा दिखने में। और अच्छा दिखना भला किसे बुरा लगेगा, है ना? लेकिन ये अच्छा दिखना किसके लिए होता है? क्या ये महिलाएं किसी को दिखाने के लिए करती हैं या फिर किसी को लुभाने के लिए करती है? जी नहीं, कई बार तो हम अपने आप के लिए सजना संवरना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अच्छा दिखे क्योंकि हम अच्छा फील करें, और इसीलिए कई बार ये सजना संवरना बस अपने आप के लिए ही होता है।

श्रेया घोषाल, सोनू निगम और साथियों का गाया ये गीत, लिखा था गुलजार ने, संगीत में ढाला था मणि रत्नम ने पहली फिल्म के लिए। श्रोताओं, ये सजने सवरने का जेवरात पहनने का चलन क्या आजकल में चला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भारत देश में तो कई पुराने सालों से, परंपरा से, पुरातन काल से जेवरात देखे गए हैं, पहने गए हैं। फूलों के जेवरों से लेकर चांदी, सोने, हीरे, मोतियों के जेवर तक परंपरा चली आ रही है। हाँ, ये और बात है कि आजकल सोना चांदी कुछ महंगा होने के कारण आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ हम ज्यादा झुकते हैं। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखती तो एकदम असली है, लेकिन उतनी महंगी नहीं होती, और इसीलिए इसे हम हर कुछ दिनों में नई नई ज्वेलरी लेकर के पहन सकते हैं, नए नए फैशन कर सकते हैं, नए नए ट्रेंड्स हम फॉलो कर सकते हैं।

लता मंगेशकर का गाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत संगीत में ढाला था आर डी बर्मन ने फिर वही रात फिल्म के लिए। श्रोतो, इन जेवरों के बारे में जब हम बातें करते हैं तो बालों के जूड़े से लेकर के पैरों के एड़ी तक, हर जगह के लिए, पैरों के नाखून तक के लिए कुछ ना कुछ जेवर जरूर बने हुए हैं। और ये आज नहीं है बने हुए, ये हमारे पुरातन शिल्पों में भी हमें दिखाई देते हैं। आजकल तो ये ट्रेंड है कि इन शिल्पों को देखकर उनका अभ्यास किया जाए और उनमें जो अलग अलग जेवर दिखाई देते हैं वही फिर से बनाए जाए। ऐसे कई जेवर बनते भी हैं और बहुत ठाट से पहने भी जाते हैं। इनमें सोना चांदी ये तो इस्तेमाल होता ही है, कभी तांबा इस्तेमाल होता है, कहीं पीतल इस्तेमाल होता है, कहीं कहीं लाख के जेवर बनते हैं, कभी कभी हीरे मानिक मोती जैसे प्रेशियस स्टोन्स, कहीं कहीं सेमी प्रेशियस स्टोन्स के भी जेवर बनते हैं। और ये सब सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, आजकल तो चलन है कि पुरुषों के लिए भी कई तरह के जेवर बनाए जाए, कई तरह की फैशन ज्वेलरी बनाई जाए जो पहनकर उन्हें भी खूबसूरत होने का एहसास हो।

0: अनुराधा पौडवाल कुमार सानू का गाया ये गीत था अब बस फिल्म का। इस गीत को लिखा समीर ने था, संगीत में ढाला था डब्बू मलिक ने। हम जब जेवरों की बात करते हैं तो कुछ खो ही जाते हैं, है ना? लेकिन घड़ी हमें बता रही है कि वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। तो चलिए मधुमालती प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए FM 100.6 यानी विविध भारती नागपुर पर आपकी मधुमालती कल्याणी के साथ।
1: ताई,
2: हाँ?
1: ये बुक।
2: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: देखो, हाँ, वाज अ फेवरेट कलर।
2: नेहमी शॉपिंग।
1: आई नो आई, पर

0: खर्च करण्याचं हेच वय आहे, राईट?
1: सेव्हिंगचंही हेच वय आहे.
2: आय नो बाबा, सेव्ह करा, योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करा, रकमेवर व्याज मिळेल, जे पुन्हा गुंतवल्यावर व्याज मिळत राहील.
3: आय नो ना.
2: RBI सांगते,
4: करा योग्य सुरुवात, बना फायनान्शियली स्मार्ट.
5: नागपुर महानगरपालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट. 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट. वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं. घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं.
4: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगरपालिका की वेबसाइट पर विजिट करें. जनहित में जारी.
6: सभी श्रोताओं का मधुमालती प्रोग्राम में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत. प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी नागपुर के विविध भारती केंद्र पर FM 100.6 MHz पर. और आज लेकर के गहनों की कहानी मधुमालती आपके लिए पेश कर रही हूँ मैं, कल्याणी. श्रोताओं, हम जब गहनों की बात करते हैं तो इन गहनों की खरीदारी भी बहुत प्यार से की जाती है, चाहे वो सोने चांदी के जेवर हो, हीरे मोती के जेवर हो. और ऐसे महंगे जेवर तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं, दादी से माँ को, माँ से बेटी को. इस तरह से इन जेवरों का जो सफ़र होता है वो होता है, कभी ये जेवर प्यार होते हैं, कभी ये आशीर्वाद होते हैं, कभी ये बंधन होते हैं, तो कभी ये सुख आनंद होते हैं. बस ये जेवर कुछ भी हो जाए, ये बेड़ियां ना बन पाए, ये बोझ ना बन पाए, यही हमें देखना है.

खेल मेरे संग किया, तूने बड़ा तंग किया। डोरी मेरे पास हो तो सैया तो ही खींच लूं, जाने ना दूं, जाने ना दूं, आंखों में बसा के आंखें मीट लूं।

जुगनू फिल्म का ये गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे और संगीत एस टी बर्मन का। श्रोताओं, गहने जेवर अलंकारों की जब बात होती है तो ये सिर्फ कोई वस्तु नहीं होती, इनके साथ जुड़े होते हैं कई सारे इमोशंस, कई सारी भावनाएं। तभी तो हर अलंकार के साथ कुछ न कुछ भावना हमने जोड़ रखी है, जैसे किसी को अंगूठी पहनाना या अंगूठी देना, किसी को मंगलसूत्र पहनाना, इसके मायने ही कुछ और होते हैं। चूड़ियाँ पहनना या चूड़ियाँ तोड़ना, इन दोनों के मायने कुछ अलग हो जाते हैं, है ना। और इसीलिए हम अगर देखें तो हमारी जिंदगी के हर एक महत्वपूर्ण अंश से जुड़ा होता है कोई ना कोई गहना, कोई ना कोई जेवर। तभी तो हमारी हिंदी फिल्में ऐसे कई सारे गीतों से भरी पड़ी है जिनमें इन जेवरों का जिक्र आता है।

कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम और साथियों का गाया गीत, लिखा समीर ने था और संगीत जतिन ललित का था। गहने या जेवर क्या हम हमेशा खुशियों के लिए ही पहनते हैं, दिखावे के लिए ही पहनते हैं? कभी कभी ये अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए भी पहने जाते हैं, तो कभी कभी सिर्फ किसी पर रौब जमाने के लिए भी पहने जाते हैं। हर एक व्यक्ति का गहने पहनने का तरीका अलग होता है, कारण अलग होता है, लेकिन गहने पहनना पसंद हर कोई

आनंद बख्शी का लिखा, शिव हरि का संगीत में ढाला, लता मंगेशकर का गाया यह गीत था लम्हे फिल्म से। श्रोताओ, हम आज बातचीत कर रहे हैं गहनों के बारे में, तो क्या हम ये मान के चले कि गहने सिर्फ आपके शरीर को सुंदर बनाने के लिए होते हैं और आपका मन, उसका क्या, क्या उसके लिए भी कोई गहने चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि आपका मन अगर सुंदर है तो आपका शरीर ऐसे ही सुंदर बन जाता है, आपका व्यक्तित्व यूं ही खिल उठता है जिसे गहनों की ज़रूरत ही नहीं होती। तो मन के लिए कैसे गहने होने चाहिए? संस्कृत में एक सुभाषित है जिसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हस्तस्य भूषणम दानम, यानी हाथों का असली जेवर, असली गहना अगर कुछ है तो वो दान करने में है, कानों का असली गहना अगर है तो वो है अच्छी अच्छी बातें सुनना। आपकी आंखें तभी सुंदर दिखेगी जब आप उससे अच्छी अच्छी बातें देखोगे। तो चलिए आज से हम कोशिश करते हैं इस तरह के गहने पाए, बनाएं और बढ़ाएं जिससे हमारा मन सुंदर हो जाए। और अगर आपका मन सुंदर है तो आपका जीवन भी सुंदर ही होगा, है ना? तो चलिए आज ही से कोशिश में लग जाते हैं ऐसे गहने हम पा सके जिससे हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व सुंदर हो जाए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित तीन पोतों दुनागिरी

0: शोधक और अग्रही को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता, हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा शामिल है। 25 घायल यात्रियों का उपचार जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया और घायलों के तेजी से स्वस्थ होने की कामना की। यूजीसी नेट जून की परीक्षा आज से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बिस्टेक से एक साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच बातचीत जारी है। कतर के प्रमुख प्राकृतिक गैस निर्यात ढांचे में हुए एक विस्फोट में 54 लोग घायल हो गए और 18 लोग लापता हैं। ये विस्फोट कल रात रास लाफान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जो दुनिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में शामिल है। खबरों के अनुसार क्षेत्रीय संघर्ष से जुड़े व्यवधानों के बाद संयंत्र में परिचालन कार्य दोबारा शुरू करने का काम चल रहा था। फीफा विश्व कप में मिस्र ने आज सुबह वैंकुवर में न्यूजीलैंड पर 3-1 से जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने इस टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में। आज हमने यादें सजाई हैं गीतकार शैलेंद्र की कलम से निकले हुए बोलों के साथ, यानी उनके द्वारा लिखे गए गीतों के साथ। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह पहला गीत, जिसे लिया है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। यादों की महफिल में शैलेंद्र की कलम से निकले सुंदर गीतों का संयोजन आज हमने किया है, तो आइए सुनते हैं अगला गीत जो कि फिल्म आवाज है मुकेश की, और इसे लिया गया है फिल्म आवारा से। शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का यह अगला नगमा, जिसे लिखा है गीतकार शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने, गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने, और फिल्म का नाम है श्री 420।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे अनाड़ी फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलते सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम यादों की महफिल से। यह गीत है चोरी चोरी फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार?
3: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल में। आइए सुनते हैं अगला नगमा मधुमती फिल्म से, मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और सलील चौधरी के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म शरारत से, मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ।

0: न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
0: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर. आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम है यादों की महफिल और आज यादों की महफिल हमने सजाई है गीतकार शैलेंद्र की गीतों के साथ में. आइए सुनते हैं परख फिल्म का यह गीत. लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र के बोल हैं और संगीतकार हैं सलिल चौधरी.
2: ओ, सजा

0: हम सुन रहे थे गाइड फिल्म से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में शैलेंद्र के पोल और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन।

हम सुन रहे थे बरसात फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। आइए सुनते हैं

हम सुन रहे थे ये गीत मेरा नाम जोकर फिल्म से मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोलों के साथ शंकर जी किशन का है संगीत। आप सुन रहे यादों की महफिल और यादों की महफिल का यह अंतिम गीत हमने आज याद किया गीतकार शैलेंद्र को आज यादों की महफिल के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम यादों की महफिल से मुझे। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर शुरू होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का सुरीला सफर में। सुरीला सफर एक कार्यक्रम जहां पर हम भेजते हैं आपके पास एक इबारत और उस इबारत से पूछते हैं बहुत सारे प्रश्न। हालांकि हमारे श्रोता इतने होशियार हैं कि प्रश्नों के उत्तर पूछे बिना ही कई सारे उत्तर खुद ही दे देते हैं, और उस समझदारी के लिए ये जो इबारत है वह हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इबारत कुछ ऐसी है कि कुछ शायरियाँ जो या शेर जो फिल्मों में उपयोग किए गए हैं या फिल्मों में बोले गए हैं, उन शेरों को आज हमने संकलित किया है और आप सबके बीच में लेकर आए हैं। बस आपको पहचानना है कि ये शेर किस फिल्म से है। हो सकता है कोई शेर 1, 2, 3, 4 कई फिल्मों में उपयोग किया गया हो, तो ये भी आंकते हैं कि आपकी पहचानी हुई फिल्म और हमारी पहचानी हुई फिल्म क्या एक ही है, ये प्रश्न भी आज बनता है। तो चलिए चलते हैं उन शेरों की तरफ, और हम ऐसा करेंगे कि आपके बीच में एक एक शेर अदायगी करते जाएंगे और उस शेर के बारे में बात करते जाएंगे। तो इबारत की इबारत पढ़ लेंगे और इसके साथ ही हम आपके बीच में वो शेर भी रख देंगे। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इबारत के साथ, और इबारत का पहला शेर है कि ना जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, न जाने किस लिए उम्मीदें वार रखते हैं, जफा करते हैं वो लेकिन हम उनसे प्यार करते हैं। और इस इबारत की, इस शेर की तरफ बढ़ूं उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बड़ी अच्छी बातें लिखी हैं। हमारे ये श्रोता लिखते हैं कि भावनाओं और विचारों को सुंदर, लयबद्ध और प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करने का माध्यम है शेर, और उर्दू और हिंदी साहित्य की एक बेहद लोकप्रिय विधा है। इसमें प्रेम, विरह, खुशी, दर्द और समाज की सच्चाई जैसे तमाम जज्बातों को बयां किया जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। इसके साथ ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं आज की इबारत में चुनिंदा शेरों का निचोड़ यह है कि जिंदगी मोहब्बत, उम्मीद और तन्हाई का एक हसीन सफर है, जहां दिल हकीकत से वाकिफ होने के बावजूद खुद को बहलाने के लिए हसीन ख्याल बुनता रहता है। अधूरी ख्वाहिशों और मौत के दरिया से भी परवाह यह शायराना रूह अपनी ही मोहब्बत से नफरत करने के बावजूद ईश्वर के फानूस तले हर मुश्किल को खूबसूरत मोड़ देकर जिंदगी के चिराग को रोशन रखती है। हमारे कौर श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के शेर और संवाद प्रेम, तन्हाई, उम्मीद, वफा और जीवन दर्शन के रंगों से सजे हुए हैं। कहीं मोहब्बत की कसक है, कहीं बिछड़ने का दर्द, तो कहीं जीवन को सहजता से स्वीकार करने का संदेश। कुछ गानों की लाइनें भी हैं जिनके बारे में आपने लिखा है। तो चलिए हम चलते हैं पहले गीत की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ भी। आप ये बता दीजिएगा कि इस गीत को गाया किसने है, यानी गायक कलाकार का नाम बता दीजिए, और इस शेर के साथ एक प्रश्न है जो पूरे समय आपके साथ में चलेगा। ये प्रश्न ये है कि ये बताइए कि कौन सी शायरी या कौन सा शेर या कौन सी कविता ऐसी है जो आपके दिल में आज भी है, जिसे आपने कहीं किसी रोज किसी फिल्म में सुना था। अपनी पसंदीदा शायरी, अपना पसंदीदा डायलॉग तो नहीं कहेंगे, उसे शेर कहेंगे या कविता कहेंगे, जिसे पद्यात्मक रूप से लिखा गया है, वो कौन सा है जो आपके दिल में आज भी सजा हुआ है। साझा कीजिए इस बात को और बताइए ये गायक कलाकार कौन है।

हम सुन रहे थे गीत फिर वही दिल लाया हूँ फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में मजरूह के बोल और ओपी नैयर के संगीत के साथ में। हमने आपसे बात करी और हमने पूछा कि ये किस फिल्म का गीत है, तो हमारे श्रोताओं ने बहुत सही उत्तर दिया। हमारे एक श्रोता ने उत्तर भी बड़े अच्छे तरीके से दिया कि फिल्म का टाइटल गीत है। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, संगीतकार ओपी नैयर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें आशा भोसले की जी की आवाज़ नहीं थी, तो हमने इस गीत को सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। चलिए अब हम चलते हैं आगे की जो बातें आपके साथ में चल रही थी उन बातों की तरफ। और हमारे श्रोता लिखते बहुत अच्छा है, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शायरियाँ तो मुझे याद नहीं, पर मैंने फिल्म देखी थी मीना कुमारी और दिलीप कुमार की यहूदी, उसमें काफ़ी बड़े चुनिंदा और अच्छे शायर थे, शेर थे, तो जो मुझे याद तो कम है पर बहुत अच्छे शेर थे। फिल्म देखने के बाद वो शेर मैंने अपनी डायरी में भी नोट किए हुए हैं। ये कितनी अच्छी आदत है ना कि जो कुछ अच्छा लगे उसे अपने पास लिख लें, तो आज नहीं कभी ना कभी तो काम आता ही है। बहुत अच्छा किया आपने उन्हें अपने पास लिख कर। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि कोई शायर या कोई शेर या कोई शायरी अगर आपको पसंद है तो वो आप हमारे साथ साझा करें, परंतु अगर वह फिल्मों में उपयोग की गई है तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारे श्रोता लिखते हैं, हालांकि उनका प्रसिद्ध गज़ल का एक हिस्सा, दुष्यंत कुमार की गज़ल का यह हिस्सा जो है वह उन्हें बड़ा पसंद है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। कितना बढ़िया कहा आपने। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, अन्य कई श्रोताओं ने भी बहुत बढ़िया लिखा। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारी आवाज़ आप तक, आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ मिल रही है, सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि उन्हें मिर्ज़ा गालिब का शेर याद है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे शेर और बहुत अच्छे दिल के जज्बात ये लोग लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि हमारे लिए ही लिख दिया गया है। ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने, कई सारे श्रोताओं ने कई सारे अन्य शेरों के बारे में भी लिखा है, शायरियों के बारे में भी लिखा है, परंतु अगली जो पंक्ति है इबारत से वह ये है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं,

होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती। अब फिल्म तो आप पहचान ही चुके हैं क्योंकि ये तो हम सबको याद है। इस पर हमारे श्रोताओं ने लिखा है, तन्हाई पर एक छोटी सी बात, तन्हाई में बिताए हुए कुछ पल कभी कभी पूरी महफिल से ज्यादा याद रह जाते हैं क्योंकि वहां हम दुनिया से नहीं अपने दिल से बात कर रहे होते हैं। बहुत गंभीर बात लिखी है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, तन्हाई का अपना एक अलग संगीत होता है, जब आसपास कोई नहीं होता तब यादें धीरे से आकर दिल में बैठ जाती हैं, कुछ मुस्कुराती हैं, कुछ आंखें नम कर जाती हैं, कुछ हमें खुद से मिलवा जाती हैं। तो तन्हाई वो आईना है जिसमें हम दुनिया को नहीं खुद को देखते हैं। भीड़ में जो बातें सुनाई नहीं देती वे अक्सर तन्हाई की खामोशी में साफ सुनाई दी जाती हैं। तन्हाई बुरी नहीं होती, बस उससे यादों का साथ हो तो वह खामोशी भी बहुत प्यारी लगने लगती है। क्या उम्दा बात लिखते हैं, क्या बढ़िया बात आप लिखते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है कि जाने किस लिए उम्मीदवार पर बैठा हूँ, एक ऐसी राह पे जो तेरी रह गुजर भी नहीं। वाह, बढ़िया शेर आपने पेश किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ और शेर हैं जो अर्ज कर रहे हैं, उनमें से मैं एक दो शेर पढ़ देती हूँ। उन्होंने लिखा कि बेवक्त बेवजह बेसबब सी बेरुखी तेरी, फिर भी बेइंतहा तुझे चाहने की बेबसी मेरी। वाह, बहुत बढ़िया। हमारे उन्हीं श्रोता ने एक और लिखा है कि कुछ एहसास मेरे हमारे जीवन में बारिश की तरह आता है, हथेलियाँ तो भीग जाती हैं मगर हाथ खाली रह जाते हैं। बढ़िया शेर लिख रहे हैं। हमारे एक और शेर, हमारे लिए एक बड़ा प्यारा सा शेर आया है कि बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते तमन्ना का खून हो गया। आते आते आपके शेरों के जवाब में एक और शेर उन्होंने हमें पहुंचाया है, और ऐसे ही कई सारे शेर हमारे बीच में आए हैं। तो ये जो बात है वो आप भेजते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। थैंक यू। तेरे प्यार की तमन्ना गुमाए जिंदगी के सया अबदी, तेज आंधियां ये चिराग बुझ न जाए। आप जब रोमन में लिखते हैं तो पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, प्रयास करें कि देवनागरी में लिखें तो अच्छा होगा, परंतु फिर भी बढ़िया है आप जो लिख रहे हैं, आप जो हमसे जुड़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे उस प्यारे से गीत की तरफ जिसे हमने आपके लिए सजाया है इस फिल्म से। अच्छा, आप बस इतना बता दीजिएगा कि इस गीत के संगीतकार कौन है, और ये जो शेर है, ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों का क्या अर्थ आपको समझ आता है।

सिलसिला फिल्म का यकीत हम सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में जावेद अख्तर की बोल, और हमारे श्रोता ने बिल्कुल सही पहचाना कि इसके संगीतकार हैं शिवहरी यानी शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। और इस प्यारे से गीत को हम सुन रहे थे, और इसके बाद जब अगली शायरी करने की बात आती है तो मैं आपको पहले ही एक प्रश्न दे दे रही हूँ। वो प्रश्न ये है कि कभी किसी अपने को, यानी हो सकता है वो आपके प्रेयस हो, प्रेयसी हो, पति हो या पत्नी हो, कोई इतना इतने दिल के करीब जो होता है उसको कभी कोई शायरी तो सुनाई होगी। कौन सी शायरी सुनाई है वह जरूर साझा कीजिएगा। हो सकता है वह आपके जीवन की पहली शायरी हो या फिर आपकी खुद की लिखी कोई शायरी हो, वो शायरी जरूर हमारे साथ साझा कीजिए, क्योंकि आपके दिल की बात कहना भी बनता है ना। तो अपनी पत्नी, पति, प्रेयसी, प्रेयस, किसी के लिए कोई शायरी या कोई कविता की कुछ चंद चार पंक्तियां कही हो तो हमारे साथ साझा कीजिएगा। और अब हम अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे, पर उसके पहले हमारे श्रोताओं ने कुछ लिख भेजा है, वो आपके साथ साझा करती हूँ कि मुझे गुलजार की वो शायरी पसंद है, समझने को कठिन है लेकिन अच्छी लगती है, कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत की रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए, जाड़ों की नरम धूप और आंगन में लेट आंखों पे खींच कर तेरे आंचल के साए, औंधे पड़े रहे कभी करवट लिए हुए। बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं ये। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। बहुत बढ़िया। हमारे एक और श्रोता ने शायरी लिखी, तन्हाई में खामोशी ही जवाब बन जाती है, वो ना रहकर भी हम सफर बन जाती है। मशहूर शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी के कई सारे शेर इन्हें पसंद है, उनमें से इन्होंने लिखा है, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। और उन्होंने कभी कभी

फिल्म के इस शेर को भी लिखा कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। अच्छा, इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि हर ख्वाहिश को जुनून ना बनाए, जिंदगी में बहुत कुछ हमारे लिए नहीं होता। जी बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया शेरों को हमारे साथ साझा किया और भी लोगों ने किया है जो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। पर हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ऐसा लग रहा है नीट की परीक्षा हो रही है, तो नीट की परीक्षा को सरल करने के लिए ही हमने आपको ये प्रश्न दिया है कि पहला शेर, पहली शायरी अपने प्रेयस प्रेयसी पति पत्नी महबूब के लिए कब पढ़ी थी, तो और कौन सी पढ़ी थी वो जरूर बताइएगा। तो चलते हैं हम अगली नगमे की तरफ, जिसे हमने आपके साथ जो शायरी साझा की है इबारत में वो ये है कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और इसके आपने पहचान लिया कि फिल्म कभी कभी से है, बहुत बढ़िया बात है। बस बताइएगा कि इसके संगीतकार कौन है, संगीतकार का नाम बताइए और सुनिए ये गीत।

0: एक बहुत सुंदर सा गीत हम अभी सुन रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर मुकेश की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल। और हमने आपसे पूछा कि संगीतकार कौन है, बिल्कुल सही बताया आपने, खयाम। और अब हम चल रहे हैं हमारे कुछ और शायरों की तरफ, जो हमारे बड़े प्यारे से श्रोता है और उन्होंने बहुत सारी शायरियां हम तक पहुंचाई हैं। एक एक लिखते हैं कि कुछ इस तरह से जिंदगी को हमने आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली तो किसी को माफ कर दिया। वाह, हमारे श्रोता ने याद किया है वो खूबसूरत से नगमे को कि फिर छिड़ी बात बात फूलों की बात है या बारात फूलों की। जी बिल्कुल, तलत अजीज की गजल बड़ी प्यारी सी है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, तन्हाई हमारे दिल में झांक कर बीते हुए पल को याद करने का जरिया है, यहाँ हम शांति से अपने आप से बात कर लेते हैं। बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बसीर बद्र का ये शेर वो लिख रहे हैं। इसके साथ, वो लेटे हुए हैं कल से बिस्तर पर जख्म लिए हुए, गिरा जो हाथ से फूल सीधा पांव पर जा लगा। हमारे श्रोता बता रहे हैं कि सूरत में, यानी ये बात हमारे कई सारे श्रोताओं ने भी बताई है कि सूरत गुजरात में बारिश शुरू हो गई है और वह कह रहे हैं कि गार्डन में टेबल पर रेडियो बज रहा है सुरीला सफर, हाथ में गरम चाय का कप और सामने बारिश है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी बहुत बढ़िया बात है। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बिल्कुल सही बात कही है आपने और मैं आपको सुनवा रही हूँ ये संदेश, लेकिन एक बात आपसे कहनी है। रोमांटिक तो शायरियाँ बहुत सारी हो गई, कोई ऐसी बात है जो आपके दिल को छू जाती हो, थोड़ा वीर रस की जो पंक्तियां हो, शेर हो, शायरी हो, कविता हो, पंक्तियां हो, कुछ भी जिसमें वीरता जगाती हो, ऐसा कोई एक जरूर बताइएगा। तब तक सुनिए संदेश।
1: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
2: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सुरीला सफर, और इस सुरीला सफर में हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं शेर और शायरी के बारे में, और आप बड़े अच्छा अच्छा लिखते जा रहे हैं हमारे बीच में। तो हमारे श्रोता ने बताया है कि उन्हें शेर और शायरी की बात हो रही है, तो जिस गाने से शुरू में शेर हो ऐसे गीत होने चाहिए थे। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे श्रोता ने एक जहां आरा का तलत का गाया हुआ ये गीत उन्होंने लिखा है कि तेरी आंख के आंसू पी जाऊं ऐसी मेरी तकदीर कहां। गाने के पहले भी शेर है और आगे उनको पंक्ति याद नहीं आ रही है। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत बढ़िया बात है, ऐसे शेर हमारे बीच में आते जा रहे हैं। हमारे साथ में एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी सगाई के बाद पारिवारिक फंक्शन में होने वाली धर्मपत्नी से मिलना हुआ अजमेर में, तो उन्होंने कहा कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा, और आशा करती हूँ ये प्यार आपका सदा बना रहे। और इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि बस हमको ऐसी महफिल मिल जाए तो हम लंच का भी दरकिनार कर सकते हैं। जी, हमारी श्रोता लिख रही है कि अगर देवनागरी में लिखेंगी तो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। रोमन में लिख रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वह लिखती है कि मेरे पति को शायरी समझ में नहीं आती तो उन्हें इंग्लिश में बोलती हूँ, यू आर माई फेवरेट वेस्ट ऑफ टाइम। और वो बहुत खुश होते हैं, क्या बात है। वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, सबसे अच्छा समय गुजारते हैं ना हम इन लोगों के साथ में। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि पत्नी को प्रेम निवेदन में कही थी कि तन की सुराही में यौवन का हाल, यौवन की हाला, चितवन में मदहोशी अंगों में ज्वाला, छल छल छल के यूं का प्याला, गोरी तू लागे है पूरी मधुशाला। धन्यवाद, बहुत बढ़िया पंक्तियाँ आपने कही हैं। इसके साथ हमारे श्रोता ने लिखे हैं कि कई सारे शायर जो हैं वो लिखते हैं बड़े प्यार से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उनकी फेवरेट है कि सपने चरे फूल से, मीत चुभे शूल से, और हम खड़े खड़े गुबार देखते रह गए, कारवां गुजर गया और हम गुबार, क्या बात है। जॉन एलिया की पंक्तियाँ ये लिखते हैं कि क्या तकल्लुफ़ करें या कहने में कि जो भी खुश हैं हम उनसे जलते हैं, यूँ जो तकता है आसमान को तू कोई रहता है आसमान में क्या, ऐसी बात है। हमारे श्रोता ने बहुत बढ़िया शायरी बनाई है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ऐ विविध भारती तुझे बनाया गया है मेरे लिए, हम सभी के लिए। जी बिल्कुल, ये विविध भारती हम सभी के लिए ही बनाई गई है। शेरो शायरी दिल बहलाने का जरिया है साहब, लफ्ज़ कागज़ पर उतारने से महबूब नहीं लौटा करते। बड़ी प्यारी सी बात कह दी आपने। और चलिए अब हम जल्दी से हमारे ना अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, और जो हम बात कर रहे थे आपसे कि हमारी जो अगली शायरी है, अभी हम बड़ा प्यारा सा ये गीत सुनकर निकले हैं कभी कभी फिल्म का, और अगली शायरी की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे एक और श्रोता ने श्रोता की बात को हम थोड़ी देर बाद करते हैं। हम ये शायरी आपको बता देते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा है। ये शायरी हमारे बीच में है, फिल्म से ली गई है, और आपसे हमने पूछा कि हो सकता है कि कोई बड़ी देशभक्ति की पंक्तियाँ या बड़ी शौर वीरता की पंक्तियाँ, कोई पंक्ति जो शेर में हो, कविता में हो या फिर शायरी में हो, तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन तब तक हम आपको ये बता दें, हमारे श्रोता ने उसका एक उत्तर भेजा है कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। गोपाल दास नीरज की ये पंक्तियाँ, बिल्कुल सही बात है। चलिए ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, और इस गीत की गायिका को पहचानिए, बहुत आसान है इस आवाज़ को पहचानना क्योंकि आप बराबर इन्हें सुनते रहते हैं। गायिका की आवाज़ को पहचानिए और पहुँचते हैं आपके अगली बात की तरफ कि आपको कुछ देशभक्ति से भरा या फिर कोई वीर रस से भरा हो, कोई शेर शायरी या कविता, कुछ पंक्तियां हम तक साझा करें।

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से यह गीत, सहरयार के बोल खयाम का संगीत। और आप सबसे पूछा था कि आवाज किसकी है, तो आप सबने सही पहचाना, सुमधुर आवाज आशा भोसले की है, बिल्कुल सही। और अब हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनको हम साझा करते हैं। कि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उन लोगों की कमी नहीं शाख पर, ये शेर थोड़ा सा कुछ अलग है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। कुछ शेर इस तरह का है जो आप कहना चाह रहे हैं। उसके साथ हमारे श्रोता ने लिखा है कि शबे फिराक उठे दिल में और भी कुछ दर्द, मैं कैसे कह दूं तेरी याद रात भर आई, क्या बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि उनके जीवन साथी का जन्मदिन 71वां जन्मदिन था और सीनियर सिटीजन उसी दिन पिकनिक पर गए थे दोस्तों के अनुरोध पर। तुम्हें और क्या दूं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाइए, हसरत जयपुरी की पंक्तियां बोल दी थी, बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि वह भी अपनी पत्नी से बहुत उनकी समझदारी से प्रेरित हैं और वह उनका सदा साथ देती हैं और उनके जीवन के मंगलमय की प्रार्थना वो कर रहे हैं। और हम भी आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं, ऐसे ही साथ बना रहे। हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आप बढ़िया कोई जबरदस्त सी बड़ी जोरदार

कोई बढ़िया सी शायरी दीजिए, जो देशभक्ति की बात हो या वीरस की बात हो। तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बिल्कुल, बहुत प्रोत्साहन देने वाला शेर है और आपने भी यही बात लिखी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनके शहर में आग बरस रही है, इस पर लिखते हैं, समय दिल शायरा न होने के बजाय दिल गर्मी से जल रहा है। अरे बारिश हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे हैं, मेरे प्रेम कहानी का रशाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। ये शेर हमारे एक, ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर

जी बस समय की बात है, अपने समय से सब कुछ आ जाता है। और हमारे श्रोता ने लिखा, इश्क का नमक की मोहब्बत की चाशनी में तेरी हम डूब रहे, मेरे प्रेम कहानी का रसाई मोहब्बत। अच्छा, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, उनकी मोहब्बत भी कमाल की होती है जिनका मिलना मुकद्दर में नहीं होता। जी बहुत बढ़िया होता है ये प्रेम भी। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारे शेर। हमारे एक ये पंक्ति हमारे एक बड़े प्यारे से श्रोता ने लिखी है, दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। देखिए हमारे देश में हाथी का नाम राम सिंह है, चेतक का नाम, घोड़े का नाम चेतक, और इनमें भी वही देशभक्ति है जो एक देशभक्त में, एक देशभक्त राजा में है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की खूब लड़ी मर्दानी वो तो, जी वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, ये पंक्तियां उन्हें पसंद है। राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर की, क्षमा दया त्याग तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कब कहाँ कब हारा, सच पूछो तो शेर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की है। बिल्कुल सही, बलिदान और पराक्रम जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं वह हृदय नहीं है पत्थर, जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। श्रोता लिख रही है कि कैसे लोग इतनी छोटी छोटी सी बातों को, गहरी बातों को लिख देते हैं। वो शेरो शायरी की बात के बारे में कह रही हैं कि मैं तो हैरान रह जाती हूँ, यही काम कवियत्रियों ने भी करा है कि कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, रहीम के दोहे, कितनी सुंदर बातें और जीवन का ज्ञान दे जाते हैं, मैं तो मुग्ध हो जाती हूँ उनको पढ़कर, क्या कला है इन सब में। बिल्कुल सही है। और अब हम जल्दी से अगले गीत की तरफ बढ़ें, और अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हुए अगला जो शेर है वो हम आपके साथ में साझा कर लेते हैं कि जो अगला गीत हम आपको पहुंचाने वाले हैं, देने वाले हैं, वो अगला गीत बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा प्यारा सा है। इस गीत के लिए आपको बताना है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये गाई किसने हैं, यानी गायक कलाकारों के नाम बता दीजिएगा। और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले, ये हमने अपनी इबारत में साझा किया है। आप अपनी शायरियां देशभक्ति से भरी अगर कुछ है तो भेजते जाइएगा और सुनिए ये।

मिर्जा गालिब की इन पंक्तियों को मिर्जा गालिब फिल्म से ही हम सुन रहे थे। गुलाम मोहम्मद ने इन्हें संगीत दिया और गाया है, जिनके बारे में हमने आपसे पूछा था कि गायक कलाकार कौन है, तो सुरैया और तलत महमूद, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। और चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ, और हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई भी शेर शायरी आपको पसंद आती है तो हम तक पहुंचाते जाइएगा। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इसकी यह लाइन पसंद है कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है, और जान पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता वफा क्या है। बहुत बढ़िया बात है, ऐसी बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोग लिख देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, मिट्टी की खुशबू से महके मेरा हर अरमान, भारत की शान में बसता है मेरा सम्मान, जब तक धड़कन चलती है सीने में यारो, तिरंगे पर नाज रहेगा यही मेरी पहचान। बिल्कुल सही बात है, वतन की धूल भी आँखों में सुरमा लगाती है, ये धरती की माँ की गोद की गर्माहट रखती है, हमारा सिर हमेशा झुका रहे इसके सम्मान में, यही दुआएं सच्चे हिंदुस्तानी के दिल में रहती हैं। बढ़िया बात लिखते हैं आप। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने जो बढ़िया सी लिखी है कि असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाडनी से जलो, प्रवीर हो जय जयी बनो, बढ़े चलो। जयशंकर प्रसाद की पंक्तियाँ ये लिख रहे हैं कि आदमी को खुदा मत कहो, आदमी खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदमी जुदा नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बात कहते हैं और लिखते हैं कि उन्हें एक कविता बचपन से पसंद है, और कविता का वो कहते हैं सिंहासन हिल उठे वाली, जो कविता उन्हें पसंद है उसके बारे में जिक्र किया है। एक बड़ी मज़ेदार सी कविता आई है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूँ, तेरी गली ना छोड़ूं, दुनिया में छोड़ दूं। और ये शायरी हम सब बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, शायद याद हो आपको। दिन बीत जाते हैं कहानी बनकर, यादें रह जाती हैं निशानी बनकर, पर रिश्ते हमेशा रहते हैं, कभी होंठ पर मुस्कान बनकर तो कभी आंखों में पानी बनकर। बहुत बढ़िया। हमारे श्रोता ने एक कविता खुद ने शायद ये स्वयं ने लिखी है या उन्होंने भेजी है, वो लिखती है, मानवता भट गई ये युद्ध के ऊपर ये कविता लिखती हैं, और अंतिम पंक्तियां मैं पढ़ देती हूँ, बस करो अब ये युद्ध, बन जाओ सारे बुद्ध, सारी सरहदों में शांति से रहो, ना किसी की आंखों में आंसू भरो। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जी बिल्कुल। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। बहुत बढ़िया बात आपने कही है। एक बार कहते हैं, हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार किसी को उन्होंने शायरी कही थी, वो किसी कौन है हम आप समझ सकते हैं, पर वो पलटकर उर्दू शब्दों का अर्थ ही पूछने लग गई। आप हिंदी में शायरी कह देते, हिंदी में भी कई सारी शायरियां बनाई गई हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वतन की आबरू पर आबरू का पास देखें कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तहा होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, कि जब बिस्मिल जमी अपनी और अपना आसमां होगा। जी बिल्कुल सही। ऐसे बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी जा रही हैं, और बहुत खूबसूरत लिखते हैं, जो गए हैं वही तो लौटते हैं, जो गए ही नहीं वो क्या खाक लौटेंगे। क्या बड़ी बड़ी बातें आज पढ़ने में आ रही हैं, हमारे शायर निकल रहे हैं सारे श्रोताओं के हृदय से। तो मैं आप सबके शायरों को प्रणाम करती हूँ, और अगला जो नगमा है, अगली जो शायरी है वो आपको भेंट करती हूँ, और वो भेंट है कि हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। अब ये शोर फिल्म का शेर है, हो सकता है किसी और फिल्म में भी इसे उपयोग किया गया हो, तो ज़रूर सुनिए और बताइए कि ये गीत आपको कैसा लगता है। और संतोष आनंद की अगर कोई पंक्ति आपको पसंद आती है इसके अलावा, तो ज़रूर हमारे साथ साझा कीजिएगा।

एक प्यार का नगमा है शोर फिल्म से हम सुन रहे थे लता मंगेशकर मुकेश और साथियों की आवाज में संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि बहुत सारी बातें उनसे पूछी और उसमें एक पूछा था कि जीवन दर्शन को छू लेने वाला ये बहुत प्यारा गीत है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी की छोड़ आए कहीं अपनी जवानी, कहीं एक संतोष होता था शायर, गजल बन गई है दर्द की राजधानी। ये वो लिखते हैं संतोष फिल्म का ये गीत उन्हें पसंद है। और हमारे कई सारे श्रोताओं ने इस गीत को बहुत पसंद किया है और हमारे श्रोताओं ने शायरियों को भी बड़े अच्छे से डिस्क्राइब किया है, यानी समझाया है, उनको बहुत खूबसूरती के साथ बताया है, उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे श्रोता लिखते हैं तुम साथ ना दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ जलना मुझे आता है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है। हाँ, इस बात को, इस इन शब्दों को रिकॉर्ड नहीं किया गया, परंतु ये उसके वर्जन में थे, उस गाने में थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि संतोष आनंद के साइड वर्जन वाला इस गीत का उन्हें पसंद है कि जो दिल को तसल्ली दे वह साज उठा लो, दम घुटने से पहले आवाज उठा लो। जी, बहुत बढ़िया बात और बहुत प्यारा सुरीला सफर आप सबके साथ रहा, उसके लिए आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप सबका जीवन मंगलमय, सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, बस यही प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए नमस्कार।

0: आजकल जंक फूड का चलन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। तमाम तरह के ऐसे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनके जरिए आप खाना ऑर्डर करें और फटाफट आपके पास भोजन पहुंच जाता है। इनमें से ज्यादातर भोजन जंक फूड होता है, ज्यादा तेल मसालों वाला नुकसानदेह खाना। इसकी वजह से हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग घर के खाने से मुंह चुराने लगे हैं, बल्कि ये भी हो रहा है कि घर पर खाना खाने की बजाय बाजार से ऑर्डर कर देने का चलन बढ़ता चला जा रहा है। विज्ञापन लोगों को इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, जबकि घर का खाना सही सेहत का खजाना है।
1: ये समझो और समझाओ।

पुराने जमाने में मौसम के हिसाब से फलों और सब्जियों का सेवन किया जाता था। सर्दियों के मौसम में कुछ खास पकवान बनते थे, गर्मियों के मौसम की डिश अलग हुआ करती थी और बारिश के मौसम में बहुत संयम के साथ अलग तरह की सब्जियां खाई जाती थी। लेकिन समय बदलने के साथ अब ये हो रहा है कि सारी सब्जियां साल भर उपलब्ध होती हैं, यानी मौसम बेमौसम आप जो मर्जी वो खा सकते हैं। युवा और किशोर पीढ़ी के साथ तो संकट ये है कि उन्हें पिज्जा बर्गर या दूसरे तरह के जंक फूड के सिवा घर का सादा खाना पसंद नहीं आता। जब आपको बहुत चटकदार और मसालेदार खाने की आदत लग जाए तो उसके आगे घर का खाना फीका लगने लगता है, जबकि घर के खाने में सेहत है, प्रेम है, लगाव है, अपनापन है।

जब बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना लेती हैं, जब पेट बिगड़ने लगता है, जब मोटापा बढ़ने लगता है, जब एसिडिटी या सिर दर्द या दूसरी तरह की तकलीफें आपको तंग करने लगती हैं, तब डॉक्टर कहते हैं कि सादा खाना अपनाइए, सही नींद लीजिए, और तब जाकर समझ में आता है कि जंक फूड ने आपके शरीर की हालत खस्ता कर दी है। जरूरत इस बात की है कि हम समय रहते चेत जाएं और हम इन एप्लीकेशंस या बाजार के चटकदार खाने के लालच से खुद को बाहर निकालें, संयमित और संतुलित भोजन लें और अपनी सेहत की हिफाजत करें, वरना ये हाल होगा।

0: चाहता था रम की दवा,
1: धड़कन की दवा, धड़कन की दवा, तड़पन की दवा और पेट में बंद पवन की दवा,
0: झटके की दवा, झटके की दवा, भटके की दवा, रास्ते के बीच झटके की दवा,
1: चक्कर की दवा, चक्कर की दवा, शक्कर की दवा, दिल से दिल की टक्कर की दवा,
0: ओम मार बना रगड़ा,
1: मिट जाए झगड़ा,
0: ओम मार बना रगड़ा,
1: मिट जाए झगड़ा,
0: धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन दबड़ा, ओम धनक धनक धन,
2: मेरा पेट बगड़ा,
1: अरे मेरा गुरु रखड़ा।

0: आयुर्वेद के पंडा,
1: आए आयुर्वेद के पंडा लेके दवा का डंडा। हे बोलो बोलो क्या है रोग तुम्हारा, कर दे उसको ठंडा।
0: अरे ब्रह्मा जी ने खुद बांधा है हाथ हमारे गंदा, और आसमान पर उड़े हमारे मतलब ध्वज का झंडा।
1: हे धरती माता,
0: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,

ये वो बैर नहीं है जिसकी जगह तुड़ावे हाँसी और बचपन ही में निकल पड़े थे देकर सबको फांसी। ओ माफ करो, बचपन ही में निकल पड़े थे।

ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे ऊंट पर चढ़ते चढ़ते हमको हो गए बरस बयासी। अरे क्या है तुम्हारा है जा बैजा, क्या है तुम्हारी खांसी। अरे हम चाहे तो पल में दे दे जम राजा को फांसी। हो बोलो

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में 2 प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स

0: स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। संदीपन दासगुप्ता के साथ काशफी नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
0: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल, बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ. जयशंकर वहां के विदेश

0: मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की चार दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में यह समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में दो और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में दो महिला और एक बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और दो मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। ये अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे

0: से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन, स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे ये गीत जबक फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में, प्रेम धवन के बोल और चित्रगुप्त के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आइए सुनते हैं ये संदेश।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन सदाबहार नगमे कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम में ये सुंदर सा गीत जिसे हमने चुना है ससुराल फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी के हैं बोल और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: हम सुन रहे थे स्त्री फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में भरत व्यास के बोलों से रामचंद्र के संगीत के साथ में। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था।

0: आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
2: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
3: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
2: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में ससुराल फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में, जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, यह गीत जो गाया है लता मंगेशकर ने और मोहम्मद रफी ने। हजरत जयपुरी के बोल हैं और संगीतकार शंकर जयकिशन।

हम सुन रहे थे कि जब प्यार किसी से होता है फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए चलिए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला नगमा। संजोग फिल्म से लता मंगेशकर मुकेश की आवाजें हैं, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत आइए सुनते हैं, जंगली फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और आज्ञा दीजिए मुझे यानी विधि जैन को आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार, आप सबका मंगल हो।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है दीपा महेश्वरी। तो दीपा, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे
2: मंजरी
1: है?
2: बिल्कुल अच्छे हैं, और तुम्हारे साथ हमारे सभी सखियों को, श्रोता भाइयों को मेरा दीपा महेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: क्या बात है,
2: हेल्दी इसलिए हमेशा ही बताते हैं कि कोई एक दिन, जैसे कि कल गया हमारा इंटरनेशनल योगा डे, एक दिन स्वास्थ्य को

0: ध्यान रखने के लिए नहीं है, वो इसलिए है ताकि हम साल भर हर दिन अपना ध्यान खूब अच्छे से रख सकें और अपने परिवार को भी उसी वजह से खुशहाल भी रख सकें।
1: बिल्कुल दीपा, और ये बहुत अच्छी चीज है कि हमारे पास देखो मोबाइल की सुविधा भी उपलब्ध है, तो हम हर दिन अपने दोस्तों को ग्रुप में डाल सकते हैं कि आज योग किया कि नहीं किया, तो इस तरह की हम उन्हें याद भी दिला सकते हैं। तो एक दूसरे को जब हम प्रेरणा देंगे ना रोज रोज, गुड मॉर्निंग की जगह साथ में ये भी उसमें लगा दें कि आज योगा किया कि नहीं किया,
0: सही बात,
1: तो सबकी सेहत अच्छी रहेगी।
0: भले ही 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, जितना भी आपके पास वक्त है और जो भी अच्छा लगता है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप एक कुछ वक्त अपने दिन का अपने स्वास्थ्य पर जरूर समर्पित कीजिए।
1: बिल्कुल, और दीपा आज हमारी जो सखी सहेली के विषय हैं, तो वो हम बता देते हैं कि आज प्रादेशिक व्यंजन में हम कानपुर उत्तर प्रदेश की रंग बिरंगी चाट और हरी धनिया के आलू की तो बात करेंगे ही करेंगे, और हमारे साथी जो कुछ लेकर भेजेंगे तो उनको भी इसमें शामिल करेंगे।
0: बिल्कुल, और देखो वर्षा ऋतु आने को है, इंतजार तो हो ही रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द बारिश शुरू हो, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सावधानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मच्छरों से बचाव, तो इस पे भी हम बात करेंगे। और संदेश आए हैं, हम चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा संदेश हमारे सभी श्रोता लिखकर भेजें।
1: बिल्कुल, और कथा सुधा में आज हम सुनवाने वाले हैं आभूषण कहानी का भाग 4। तो अभी तक लगातार सबने सुनी है आभूषण कहानी, तो आज उसका चौथा भाग अंतिम भाग सुना जाएगा। और नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत जैसे कि हो गई है, और हम देखते हैं दीपा की आज बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सब तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कैसा अनुभव होता है, या आपने बच्चों को स्कूल भेजने के पहले क्या क्या तैयारी करी, वो सब भी हमें छोटी छोटी बातें छोटे छोटे संदेशों में लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल, और एक ये गुंछा बना लिया है हमने कार्यक्रम का, तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं बातें, और आप सारे संदेश तो आएंगे, तब तक सुनते हैं ये सुंदर सा गीत।

0: मंजरी, अब तो बिना कुछ कहे हम चलेंगे सीधे कदासुदा की तरफ,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे हम सुनने वाले हैं आभूषण का भाग 4।
1: जी,
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण।
0: पिछले भाग में आपने सुना,
4: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानी और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला न मिला, असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही, अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई, फाके होने लगे। 4 प्राणियों का खर्च था। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
5: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी। मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
6: भैया, क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी।

0: कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, इसके लिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग।
1: कोयल आम की डालियों पर बैठकर मछली शीतल निर्मल जल में क्रीड़ा करके और मृग शावक विस्तृत हरियालियों में छलांगे भरकर भी इतने प्रसन्न नहीं होते जितना मंगला के आभूषणों को पहनकर शीतला प्रसन्न हो रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। वो दिन भर आईने के सामने खड़ी रहती है, कभी केशों को संवारती है, कभी सुरमा लगाती है। कोहरा फट गया है और निर्मल स्वच्छ चांदनी निकल आई है। वो घर का एक तिनका भी नहीं उठाती। उसके स्वभाव में एक विचित्र गर्व का संचार हो गया है। लेकिन श्रृंगार क्या है? सोई हुई काम वासना को जगाने का घोर नाद उद्दीपन का मंत्र। शीतला जब नक्षिक से सज कर बैठती है तो उसे प्रबल इच्छा होती है कि मुझे कोई देखे। वो द्वार पर आकर खड़ी हो जाती है। गांव की स्त्रियों की प्रशंसा से उसे संतोष नहीं होता। गांव के पुरुषों को वो श्रृंगार रस विहीन समझती है, इसलिए सुरेश सिंह को बुलाती है। पहले वो दिन में एक बार आते थे, अब शीतला के बहुत अनुनय विनय करने पर भी नहीं आते। पहर रात गई थी, घरों के दीपक बुझ चुके थे। शीतला के घर में दीपक जल रहा था। उसने कुंवर साहब के बगीचे से बेले के फूल मंगवाए थे और बैठी हार गूंथ रही थी, अपने लिए नहीं, सुरेश के लिए। प्रेम के सिवा एहसान का बदला देने के लिए उसके पास और था ही क्या। एकाएक कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी और दम भर में विमल सिंह ने मकान के अंदर कदम रखा। उनके एक हाथ में संदूक था, दूसरे हाथ में एक गठरी थी। शरीर दुर्बल, कपड़े मैले, दाढ़ी के बाल बढ़े हुए, मुख पीला, जैसे कोई कैदी जेल से निकल कर आया हो। दीपक का प्रकाश देखकर वो शीतला के कमरे की तरफ चले। मैना पिंजरे में तड़फड़ाने लगी। शीतला ने चौंक कर सिर उठाया, घबरा कर बोली, कौन? फिर पहचान गई। तुरंत फूलों को एक कपड़े में छिपा दिया। उठ खड़ी हुई और सिर झुकाकर पूछा,
2: इतनी जल्दी सुधली?
1: विमल ने कुछ जवाब न दिया। विस्मित हो कर कभी शीतला को देखता, कभी घर को, मानो किसी नए संसार में पहुंच गया है। ये वो अधखिला फूल न था जिसकी पंखुड़ियां अनुकूल जलवायु न पाकर सिमट गई थीं। ये पूर्ण विकसित कुसुम था, ओस के जल कणों से जगमगाता और वायु के झोंकों से लहराता हुआ। विमल उसकी सुंदरता पर पहले भी मुग्ध था, पर यह ज्योति वो अग्निज्वाला थी जिससे हृदय में ताप और आंखों में जलन होती थी। ये आभूषण, ये वस्त्र, ये सजावट। उसके सिर में एक चक्कर सा आ गया, जमीन पर बैठ गया। इस सूर्यमुखी के सामने बैठते हुए उसे लज्जा आती थी। शीतला अभी तक स्तंभित खड़ी थी। वो पानी लाने नहीं दौड़ी, उसने पति के चरण नहीं धोए, उसको पंखा तक नहीं झला। हत बुद्धि सी हो गई थी। उसने कल्पनाओं की कैसी सुरम्य वाटिका लगाई थी, उस पर तुषार पड़ गया। वास्तव में इस मलिन वदन अर्धनग्न पुरुष से उसे घृणा हो रही थी। ये घर का जमींदार विमल न था, वो मजदूर हो गया था। मोटा काम मुखाग्नि पर असर डाले बिना नहीं रहता। मजदूर सुंदर वस्त्रों में भी मजदूर ही रहता है। सहसा विमल की मां चौंकी, शीतला के कमरे में आई तो विमल को देखते ही मात्र स्नेह से विह्वल होकर उसे छाती से लगा लिया। विमल ने उसके चरणों पर सिर रखा। उसकी आंखों से आंसुओं की गरम गरम बूंदें निकल रही थीं। मां पुलकित हो रही थी, मुख से बात न निकलती थी। एक क्षण में विमल ने कहा,
3: अम्मा ये देखता क्या हूं?
4: अरे तुम तो जानते ही हो, स्वभाव ही ऐसा है तो कोई क्या करे।
3: सुरेश ने मेरा हुलिया क्यों लिखाया था?
4: वो तो तुम्हारी खोज लेने के लिए। अरे उन्होंने दया ना की होती ना तो आज घर में किसी को जीता ना पाते तुम।
3: बहुत अच्छा होता।
2: अपनी ओर से तो तुमने सबको मार ही डाला था। फूलों की सेज नहीं बिछा गए थे?
3: अब तो फूलों की सेज ही बिछी देखता हूँ।
2: तुम किसी के भाग्य के विधाता हो।
1: विमल सिंह उठकर क्रोध से कांपता हुआ

0: बोला।
1: अम्मा अम्मा मुझे यहां से ले चलो, मैं इस पिशाचिनी का मुंह तक नहीं देखना चाहता। मेरी आंखों में खून उतरता चला आता है। मैंने इस कुल कलंकनी के लिए 3 साल तक जो कठिन तपस्या की है उससे तो ईश्वर मिल जाता, पर इसे ना पा सका।
0: ये कहकर वो कमरे से निकल आया और मां के कमरे में लेट रहा। मां ने तुरंत उसका मुंह और हाथ पैर धुलाए। वो चूल्हा जलाकर पूरियां पकाने लगी, साथ साथ घर की विपत्ति कथा भी कहती जाती थी। विमल के हृदय में सुरेश के प्रति जो विरोधाग्नि प्रज्वलित हो रही थी वो शांत हो गई, लेकिन हृदय दाह ने रक्त दाह का रूप धारण कर लिया। जोर का बुखार चढ़ाया, लंबी यात्रा की थकान और कष्ट तो था ही, बरसों के कठिन श्रम और तप के बाद यह मानसिक संताप और भी दुसह हो गया। सारी रात वो अचेत पड़ा रहा, मां बैठी पंखा झलती और रोती रही। दूसरे दिन भी वो बेहोश पड़ा रहा, शीतला उसके पास एक क्षण के लिए भी ना आई।
2: इन्होंने मुझे कौन से सोने के कौर खिला दिए हैं जो इनकी धौंस सहूं? यहां तो जैसे कंता घर रहे वैसे रहे विदेश, किसी की फूटी कौड़ी नहीं जानती। बहुत ताव दिखाकर तो गए थे, क्या लाद लाए।

संध्या का समय था, सुरेश को खबर मिली, तुरंत दौड़ते हुए आए। आज 2 महीने के बाद उन्होंने उस घर में कदम रखा। विमल ने आंखें

0: खोली पहचान लिया, आंखों से आंसू बहने लगे। सुरेश के मुखारविंद पर दया की ज्योति झलक रही थी। विमल ने उसके बारे में जो अनुचित संदेह किया था उसके लिए वो अपने को धिक्कार रहा था। शीतला ने ज्यों ही सुना कि सुरेश सिंह आए हैं तुरंत शीशे के सामने गई, केश छिटका लिए और विपत की मूर्ति बनी हुई विमल के कमरे में आई। कहां तो विमल की आंखें बंद थी, मूर्छित सा पड़ा था, कहां शीतला के आते ही आंखें खुल गईं। अग्निमय नेत्रों से उसकी ओर देखकर बोला,
1: अभी आई है? आज के तीसरे दिन आना, कुंवर साहब से उस दिन फिर भेंट हो जाएगी।
0: ये सुनकर शीतला उल्टे पांव चली गई। सुरेश पर घड़ों पानी पड़ गया। मन में सोचा, कितना रूप लावण्य है पर कितना विषाक्त, हृदय की जगह केवल श्रृंगार लालसा। आतंक बढ़ता गया। सुरेश ने डॉक्टर बुलवाए पर मृत्युदेव ने किसी की न मानी। उनका हृदय पाषाण है, किसी भांति नहीं पसीजता। कोई अपना हृदय निकाल कर रख दे, आंसुओं की नदी बहा दे, पर उन्हें दया नहीं आती। बसे हुए घर को उजाड़ना, लहराती हुई खेती को सुखाना उनका काम है, और उनकी निर्दयता कितनी विनोदमय है। ये नित्य नए रूप बदलते रहते हैं, कभी दामिनी बन जाते हैं तो कभी पुण्यमाला, कभी सिंह बन जाते हैं तो कभी सियार, कभी अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं तो कभी जल के रूप में। तीसरे दिन पिछली रात को विमल की मानसिक पीड़ा और हृदय ताप का अंत हो गया। यम के दूत प्रायः रात ही को सबकी नजर बचाकर आते हैं और प्राण रत्न को चुरा ले जाते हैं। रात शोक का बाह्य रूप है। उसी समय विमल के घर से आर्तनाद सुनाई दिया, वो नाद जिसे सुनने के लिए मृत्युदेव विकल रहते हैं। शीतला चौंक पड़ी और घबराई हुई मरणशैया की ओर चली। उसने मृत देह पर निगाह डाली और भयभीत होकर एक पग पीछे हट गई। उसे जान पड़ा विमल सिंह उसकी ओर अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहे हैं। बुझे हुए दीपक में उसे भयंकर ज्योति दिखाई पड़ी। वो मारे भय के वहां ठहर न सकी। द्वार से निकल ही रही थी कि सुरेश सिंह से भेंट हो गई। कातर स्वर में बोली,
2: मुझे यहां डर लगता है।
0: उसने चाहा कि रोती हुई इनके पैरों पर गिर पड़ूं, पर वो अलग हट गए। जब किसी पथिक को चलते चलते ज्ञात होता है कि मैं रास्ता भूल गया हूं, तो वो सीधे रास्ते पर आने के लिए बड़े वेग से चलता है, झुंझलाता है कि मैं इतना असावधान क्यों हो गया। सुरेश भी अब शांति मार्ग पर आने के लिए विकल हो गए। मंगला की स्नेहमयी सेवाएं याद आने लगीं। हृदय में वास्तविक सौंदर्य उपासना का भाव उदय हुआ। उसमें कितना प्रेम, कितना त्याग, कितनी क्षमा थी। उसकी अतुल पति भक्ति को याद करके कभी कभी वो तड़प जाते।
3: मैंने घोर अत्याचार किया है, ऐसे उज्जवल रत्न का आदर न किया। मैं यूं ही जड़वत पड़ा रहा और मेरे सामने ही लक्ष्मी घर से निकल गई।
0: मंगला ने चलते चलते शीतला से जो बातें कही थीं, वे उन्हें मालूम थीं, पर उन बातों पर विश्वास न होता था। मंगला शांत प्रकृति की थी, वो इतनी उद्दंडता नहीं कर सकती। उसमें क्षमा थी, वो इतना विद्वेष नहीं कर सकती। उनका मन कहता था कि वो जीती है और कुशल से है। उसके मैके वालों को कई पत्र लिखे, पर वहां व्यंग और कटु वाक्यों के सिवा और क्या रखा था। अंत में उन्होंने लिखा,
3: उस रत्न की खोज में मैं स्वयं जाता हूं, या तो लेकर ही आऊंगा या कहीं मुंह में कालिक लगाकर डूब मरूंगा।
0: इस पत्र का उत्तर आया,
4: अच्छी बात है, जाइए, पर यहां से होते हुए जाइएगा। यहां से भी कोई आपके साथ चला जाएगा।
0: सुरेश सिंह को इन शब्दों में आशा की झलक दिखाई दी। उसे दिन प्रस्थान कर दिया और किसी को साथ नहीं लिया। ससुराल में किसी ने उनका प्रेममय स्वागत नहीं किया। सभी के मुंह

0: फूले हुए थे। ससुर जी ने तो उन्हें पति धर्म पर एक लंबा उपदेश दिया। रात को जब वो भोजन करके लेटे तो दोनों सालियां आकर बैठ गईं और मुस्कुराकर बातें करने लगीं। ये बातें कोई सामान्य बातें न थीं, उनमें व्यंग था। वो शब्द थे जो उसे मुंह चिढ़ा रहे थे और हकीकत बयां कर रहे थे और उसे आईना दिखा रहे थे। तभी एक क्षण में मंगला की माता आकर बैठ गईं और बोली,
1: बेटा, तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, देश विदेश घूम आए हो, कहीं सुंदर बनने की कोई दवा नहीं देखी?
2: माता जी, अब ईश्वर के लिए और लज्जित न कीजिए।
1: तुमने तो मेरी प्यारी बेटी के प्राण ले लिए, मैं क्या तुम्हें लज्जित करने से भी गई? जी में तो था कि ऐसी ऐसी सुनाऊंगी कि तुम भी याद करोगे, पर मेहमान हो, क्या जलाऊं? आराम करो।
0: सुरेश आशा और भय की दशा में पड़े करवटें बदल रहे थे। तभी अचानक द्वार पर किसी ने धीरे से कहा, कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। सुरेश ने आवाज पहचानी, मानो प्यासे को पानी मिल गया। एक क्षण में मंगला उसके सम्मुख आई और सिर झुकाकर खड़ी हो गई। सुरेश को उसके मुख पर एक अनूठी छवि दिखाई दी, जैसे कोई रोगी स्वास्थ्य लाभ कर चुका हो। रूप वही था, रंग वही था, पर आंखें आंखें और थीं।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का चौथा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार से है: सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, मंगला की माँ राजश्री त्रिवेदी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: आशा है आपको ये कहानी आभूषण बहुत पसंद आई होगी। और अब सुनते हैं ये गीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 22 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो दीपा, हम लोग ने बहुत सारी जानकारी और कहानी भी प्रस्तुत करी है।
4: बिल्कुल, और कहानी तो सुनकर वाकई में सभी को आनंद आया, हमें भी आनंद आया। और अब देखो
3: क्या देखो नवीन शिक्षा सत्र की जो शुरुआत हुई है तो उसमें देखते हैं कि शुरुआत, या यूं कह लें कि बच्चे अगली क्लास में जाने लगते हैं तो उनके अंदर बहुत उत्साह, खुशी होती है क्योंकि उनको स्कूल यूनिफॉर्म से लेकर किताबें, कॉपी, बैग, बॉटल, टिफिन, जूते, सब कुछ नए मिलते हैं दीपा। और कौन से दोस्त पुराने नए मिलेंगे, टीचर कौन सी होंगी, हर छोटी छोटी बातें उनके दिमाग में चलती हैं और तभी खुशी से स्कूल जाने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं।
4: कुछ तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चों को डर भी लगता है, फिर से पढ़ना पड़ेगा, मिस पता नहीं कैसी होंगी, गुस्सा तो नहीं करेंगी, दोस्त नए कैसे होंगे, फिर वही भारी बस्ते, किताबें, कितना सब कुछ कठिन होगा, है ना। लेकिन मिस, उन्हें ये भी लगता है मिस डांटेंगी तो नहीं, मम्मी पापा से दूर जाना होगा, कुछ ऐसे ही मानसिक शैक्षिक तनाव और स्कूल जाने का डर मन में कई बच्चों की ये भी कुछ इस तरह से भी बैठ जाता है।
3: बिल्कुल दीपा, बैठ जाती है। और बच्चों के सामने कुछ आने वाली समस्याएं भी होती है, जैसे वहां पर कैसे अपना एडजस्टमेंट बैठाएंगे, उनका नया माहौल होता है चूंकि बच्चों के लिए, और सख्त नियमों और अलग पढ़ाने के जो तरीके होते हैं, नए शिक्षक वहां पर आएंगे और वो अब किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी उनके ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। तो उनको कैसे तालमेल बिठाना है, बच्चों को ये सब सोच के ही थोड़ी सी दिक्कत सी लगने लगती है। और स्कूल जाने का डर और घबराहट से वे कई तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और अक्सर देखा होगा तुमने, बच्चे सुबह उठते ही रोना शुरू कर देते हैं कि मम्मी आज नहीं जाऊंगा, पेट दर्द कर रहा है, सर दर्द कर रहा है, इस तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं। और कई बच्चे तो बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं, कुछ कहेंगे भी नहीं, बस रोए जा रहे हैं।
4: हाँ, तो ऐसा भी होता है, भाई देखो ना क्या हो गया है, अब गर्मियों की छुट्टियां तो खत्म हो गई हैं, वो जो खेल कूद और मस्ती भरे दिन थे वो भी कहीं उड़नछू होते चले जा रहे हैं। एक लंबे समय के बाद अचानक पढ़ाई के रूटीन में जब बच्चे लौटते हैं ना, तो ऐसा व्यवहार हम देखते ही हैं अक्सर। और वहीं पढ़ाई का कहीं ना कहीं एक बोझ सा भी उनको लगने लगता है, नई शिक्षा के कठिन

0: जो ये सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, और फिर जो होमवर्क आ जाता है, उनको गृह कार्य आ जाता है, इसमें समय उनका पूरा निकल जाता है और उनको एक दबाव सा शुरुआत में लगता
1: बिल्कुल,
0: है, फिर
1: बिल्कुल.
0: वो धीरे धीरे उसकी आदत में आते हैं, लेकिन पहले उनको ऐसा लगता है अभी तो हम दिन दिन भर खेल रहे थे, अब
1: हाँ.
0: अचानक से एक नियम उनके ऊपर बन गया, एक रूटीन उनका बनना शुरू हो गया है.
1: बिल्कुल. और जो उनकी दोस्त मित्र मंडली है, सहकर्मियों का दबाव भी उनके ऊपर पड़ता है दीपा. और दोस्तों का साथ छूटना या नए साथियों के बीच खुद को स्थापित करना, साबित करना और सामाजिक स्वीकृति पाने का तनाव भी बच्चों में देखा जाता है. और इसके साथ ही सुबह जल्दी उठने, स्क्रीन टाइम कम करने और खेलने पढ़ने के बीच संतुलन बनाने में बच्चे अक्सर असमर्थ रहते हैं. उनको लगता है अरे हम खेल नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा. तो जल्दी उठना और खेल नहीं पाना, इसके बीच में बच्चे बड़े फंसे रहते, उलझे रहते हैं कि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा. उनको पढ़ाई से पीछे भागते, क्योंकि होता यही कि इतने दिन छुट्टियां होती लंबी, तो बच्चों की वो छुट्टियों में आराम से उठने की आदत होती है और घंटों घंटों खेलना रहता है, पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहता है, तो नए सत्र में ये चीजें रहती. तो वही माता पिता और शिक्षक
0: देखो
1: बच्चों की मदद करें.
0: बिल्कुल, इनका सपोर्ट और इनका मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है बच्चों को. छोटे बच्चे जहाँ अगर उनकी अगर हम बात करें तो प्यार से उनसे बात करना बहुत जरूरी है, उनके मन की बात जानना, उनसे उनके मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रहा है ये पूछना. फिर बच्चों को डराने के बजाय, हम लोग क्या डरा डरा करके कई बार ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं करोगे तो देखो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं करोगे तो देखो वैसा हो जाएगा, ये नहीं करके दोस्ताना व्यवहार रखना बहुत जरूरी है ताकि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो खुलकर बता सकें. फिर बच्चों के लिए एक नियमित दिनचर्या बनाना होता है, वो उसमें ऐसा नहीं कि आज बनाया तो वो कल ढल जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा समय जाएगा लेकिन वो उसमें ढल जाएंगे. फिर इस दिनचर्या में पढ़ाई, खेल और फिर अच्छे से सोना, इन सब का एक सही संतुलन होना बहुत जरूरी है. अब होमवर्क है, फिर बैग पैक करना, ये सारी तैयारियां करनी एक दिन पहले करना बहुत जरूरी हो गया है. जूते पे पॉलिश है या नहीं, यूनिफॉर्म पे बराबर इस्त्री है या नहीं, धुले हैं या नहीं, ये सब बहुत छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स देखेंगे, लेकिन जहां बड़े बच्चे हैं वहां उनको ये सब चीज देखना होती है. तो थोड़े से एक रूटीन, जो बिल्कुल स्वच्छंद भी रूटीन था, कुछ रूटीन ही नहीं था, और अब एक सिस्टम चला जा रहा है, एक दिनचर्या उनके ऊपर आ रही है कि नियमित तरीके से ये करना होगा आपको, तो थोड़े से परेशान होते हैं लेकिन हमें उनकी भी उलझन को समझना बहुत जरूरी है.
1: बिल्कुल, उनको छोटी छोटी चीजों उनकी उनसे करवाएं और उनकी तारीफ भी करें कि देखो भाई तुमने अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म रखी है और साथ में बैग भी तुमने अच्छे से लगा लिया है और शूज भी सही जगह से तुमने रखे पॉलिश करके, तो और देखो तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको लेके जाओगे स्कूल में तो बच्चे कितने खुश होंगे और साथी तुम्हारे कितने खुश होंगे, नई टीचर बहुत प्यार करेगी. इस तरह से बच्चों को थोड़ा सा कहना चाहिए कि हम बहला फुसला कर बच्चों को स्कूल भेजें तो बच्चों का मन भी लगेगा.
0: बिल्कुल,
1: है ना. तो हम
0: वहीं देखिए जी, संदेश भी आए हैं हमारे श्रोताओं के. एक संदेश कहता है कि नवीन शिक्षा सत्र की शुरुआत को नई ऊर्जा और योजना के साथ करना ही सफलता की कुंजी है. नवीन सत्र की शुरुआत केवल नई कक्षाओं में प्रवेश भर नहीं है बल्कि नए सपनों, नए संकल्पों और नई संभावना की और बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है. ये समय है पुराने अनुभव से सीख लेकर नई ऊर्जा और उत्साह के साथ ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ने का.
1: बिल्कुल. और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नई शिक्षा सत्र की शुरुआत, भाई हम लोग के समय में शिक्षा सत्र की शुरुआत जुलाई माह से शुरू हुआ करती थी और फरवरी मार्च तक परीक्षाएं शुरू हो जाया करती थी, लेकिन अब गतिशील समाज में शिक्षा को दान का विषय न मानते हुए स्वयं के लिए वित्तीय वर्ष के अनुसार मार्च से अप्रैल तक कर दिया गया है. फलस्वरूप दान का विषय पूरी तरह से व्यापार विषय का दृष्टिकोण चुका है. इस तरह से इन्होंने बातें लिखी हैं. लेकिन देखा जाए दीपा, तो हम लोग के समय में भी जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारी तैयारियां करते थे जाने के लिए. मम्मी लोग कितनी तैयारियां करती थी, फिर हम लोग भी पहले दिन तो बड़े खुशी खुशी जाते थे, फिर अगली बार जब एक हफ्ते बाद लगता था अरे फिर से जाना है, फिर से पढ़ना है, तो कहीं ना कहीं मन पीछे की ओर भागता था. लेकिन भाई माता पिता इतने प्यार से करते थे तो पढ़ना तो पड़ता ही था, और पढ़ना तो सब बच्चे के लिए बहुत अच्छी बात है, है ना.
0: बिल्कुल, क्योंकि ये आपके जीवन के जो नींव है वो बनाती है.
1: बिल्कुल. तो भाई अपने बच्चों को बहुत प्यार से भेजें स्कूल, उन्हें डराया नहीं, और बल्कि अब चलिए उनको एक गीत सुना देते हैं सबको.
0: चलिए

0: मंजरी, जैसे शिक्षा सत्र की शुरुआत हो रही है वैसे ही बस अब कुछ ही दिनों में
1: मच्छरों की आतंक की शुरुआत होने वाली
0: है। हम इतना मतलब ये तो बात है ही, लेकिन साथ में एक सुखद अनुभव ये भी होगा कि बरसात की, वर्षा ऋतु की भी शुरुआत हो जाएगी।
1: बिल्कुल, गर्मी
0: और हर एक अच्छी चीज के साथ एक चीज है जो कि कहीं वो उसमें एक खामियां भी लेकर आती है ना, साथ साथ में होती है।
1: क्योंकि देखो गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें जब बारिश की फुहारें आएंगी और जो कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हुई भी है तो कहीं नहीं हुई है तो वो लोग बारिश के लिए बेताब भी हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो इन सब कीट जो पतंगे होते हैं इन सब का घर में आना जाना, मच्छरों का आना जाना बहुत शुरू हो जाता है। तो मच्छरों से बचाव के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो उसके लिए कि पहला तो मच्छरों से बचाव के लिए घर में और आसपास पानी जमा मत होने दीजिए, हमारे साथी लिख रहे हैं। और साथ में आपके अंदर, घर के अंदर भी बहुत सारे हम ऐसे इंडोर प्लांट्स रखते हैं जिनमें पानी, हम भर के पानी में पौधे उगाते हैं, तो उन पानी को आप बदलते रहें हर दो दो दिन पे तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे उसमें लार्वा ना पनपने पाए। तो इन चीज का हमें ध्यान रखना है। और
0: बिल्कुल, और ये हमारा एक और संदेश है जो कहता है कि हमारे यहाँ यानी सूरत से है ये, और कह रही है कि सुबह सुबह हल्की सी बारिश हो गई थी, वो भी अब लगता है कि कहीं झपकी के मूड में आ गई है, यानी कि थोड़ी सी बारिश हुई होगी फिर रुक गई होगी। और बारिश हो और मच्छरों का उपद्रव ना हो ये तो संभव नहीं हो सकता। ये तभी कर सकते हैं कि आप अपने घर के आसपास या गमलों में पानी ना जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें, घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें, घर में कपूर जलाएं या

0: इन्हें जमा होने दें, अगर हो तो उसको निकाल लें, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। और सोते समय मच्छरदानी का उपयोग अवश्य करें। घर की खिड़कियां या दरवाजे पर भी जाली अवश्य लगवा लें। घर में कपूर जलाएं या नीम के तेल का दिया जलाएं, ये मच्छरों को भगाने में मदद करता है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि मच्छरों से बचाव गर्मी की एक सबसे बड़ी समस्या है होती है। गर्मी और बरसात की जारी है, मच्छरों से बचाव के लिए अपने आस पास जहाँ पानी जमा रहता है वहाँ पानी जमा न होने दें, और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि आपने जो आसपास जो कलर वगैरह कराया है वो हल्के रंगों का हो, और सफाई करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि वहीं पर सबसे ज़्यादा मच्छरों के जो लार्वा है वो पनपते हैं, और जब भी सोएं मच्छरदानी के को लगा करके आप सोएं, और मच्छर से बचाव करने वाले जो कुछ आप उपाय कर सकते हैं वो करें, तो इससे क्या होगा कि आप मच्छरों के काटने से बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल, और साफ सफाई का तो देखो विशेष ध्यान रखना होता ही है। कई हमारे सखियां होंगी जिनके घर में ऊपर छत है, तो वहां पर हम ऐसा होता है ना अक्सर कि जो काम की चीजें नहीं है वो हम रख देते हैं, जैसे कोई डब्बा रख दिया है, कोई ट्यूब टायर वगैरह रख दिया है, या कोई ऐसा सामान लकड़ी का कि साल भर उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, कभी कभी होता है,
1: उसी में
0: तो हम उसमें हाँ, और ऐसी जगह पर जहाँ पे धूल मिट्टी और फिर उसके बाद पानी अगर इकट्ठा होने लग जाता है तो बेशक वहाँ पे मच्छरों के लार्वा पनपने लग जाते हैं और वो बढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब चीजें ठीक है, हम मानते हैं कि गर्मी के दिन है, बहुत मुश्किल होती है एकदम गर्मी में छत पे जाना और सब साफ सफाई करना, लेकिन ये एक बार अगर आपने पहले से ही कर दिया तो बारिश आने के पहले ही अगर सफाई हो जाएगी तो वहां पे गंदा पानी होगा ही नहीं, और उसके बाद कुछ कुछ दिनों में वो सफाई हमें करते रहने पड़ेगी, क्योंकि हर मौसम का एक अपना अगर सुकून है तो ध्यान रखने की बात भी जरूरी
1: बिल्कुल
0: है।
1: और शाम हो, जैसे ही शाम होने लगे तो उस समय घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दीजिए।
0: बिल्कुल,
1: खिड़कियों में दरवाजों में जाली लगी हो तो आपके हर घर में हर उसमें लगी हो कमरों में, तो आपको बहुत आराम रहेगा, मच्छर आने नहीं पाएंगे। और मच्छरों से
0: और ये इसमें ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि 5 से 7 बजे के बीच में मच्छर आ जाते हैं, तब क्या उजाला रहता है, हमें लगता है नहीं अभी बंद कर देंगे तो थोड़ी गर्मी लगने लगेगी और हम खिड़कियां खुली रखते हैं, लेकिन ऐसा न करते हुए 5 बजे 6 बजे के बीच में ही आप सारी खिड़कियां बंद कर लें। बाद में थोड़ी देर के बाद अगर आप खोलते हैं तो चलता है, लेकिन मच्छर वाली अगर जो बारीक छेद वाली अगर खिड़कियां हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि विशेष तौर पर मच्छर से बचने के लिए दरवाजे भी बनाए गए हैं आजकल, तो छोटी छोटी खिड़कियां भी होती हैं, स्लाइडिंग विंडोज भी होते हैं, इस तरह की चीजों का आप इस्तेमाल करें। छोटे बच्चे घर में है तो उनको कपड़े पूरे
1: पहने
0: और पूरे पैरों को ढके, उनके शरीर उनका ढका हुआ रहे, भले ही वो पतला कॉटन का कपड़ा हो।
1: और देखो इसके साथ ही जो घर में हम चादर वगैरह बिछाते हैं वो भी हल्के कलर के होने चाहिए। अगर हम गहरे रंगों के भूरे हैं, काले नीले बिछाएंगे तो उसमें मच्छर बैठेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जितना हल्का कलर होगा उतनी जल्दी आप उनको देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। फिलहाल तो हम एक गीत सुन सकते हैं,
0: इससे हम बचना बिल्कुल नहीं चाहते।
2: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो

0: फिर से तो
1: अब तो भाई
2: सुरीले सा संगीत हो और फिर कुछ ही दिनों में झमाझम बारिश होगी, ऐसे में अगर चाट मिल जाए रंग बिरंगी उत्तर प्रदेश की तो फिर क्या ही बात है। तो फिर चलिए उसके लिए क्या क्या चाहिए ये भी हम देख लेते हैं। टिक्की बनानी होगी, उसके लिए उबले हुए मैश किए हुए आलू लेना है 4-5, अरारोट या फिर कॉर्नफ्लोर आप ले लीजिए 3-4 चम्मच, और छोले यानी कि सूखी सफेद मटर होती है वो लेना है 1 कप, रात भर भीगी हुई, रात को ही भिगा लीजिएगा अगर आपको अगले दिन बनाना है। हल्दी 1/2 चम्मच, नमक, गरम मसाला, ये सब आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और चटनी है स्वाद अनुसार, और गार्निश के लिए हरी चटनी आपको लेना है, उसमें पिसी हुई धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, अदरक और नींबू होते हैं। ये तो बन गई आपकी हरे धनिया की चटनी। मीठी चटनी भी बनानी होगी, उसके लिए आपको इमली या अमचूर और चीनी मिलाकर या गुड़ मिलाकर गाढ़ा सा एक आपको चटनी बनानी है, मीठी चटनी, ये भी ऊपर से डाला जाएगा, और फिर फेंटा हुआ मीठा दही चाहिए, भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए, काला नमक, चाट मसाला चाहिए, लाल मिर्च पाउडर और कटे हुए प्याज, और ऊपर से सर्व सजाने के लिए हरा धनिया। भाई हमारे ये सखियां कहेंगी बहुत सारी चीजें, लेकिन भाई मजा भी तो तभी है ना, उसका स्वाद भी उसी तरह से बढ़ेगा। अब मटर आप उबाल लीजिए भीगी हुई जो आपने रात भर रखी थी, इसमें हल्दी नमक डालकर पानी डालकर कुकर में 4-5 सीटी ले लीजिएगा। मटर गाढ़ी और थोड़ी लिपटी लिपटी सी हुई होनी चाहिए। टिक्की कैसे तैयार करना है, मैश किए हुए आलुओं में अरारोट और नमक मिला लेना है, इसे आटे की तरह गूंद लेना है। अब छोटी छोटी लोइयां बनाकर गोल और चपटी टिक्कियां तैयार कर लीजिए। फिर तवे पर आपको जैसे आपको पसंद हो घी से या तेल से आप इसको सेक लीजिए दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक। प्लेटिंग कैसे करनी है, एक प्लेट में 2 टिक्की या जैसे आपको घर में पसंद है उस तरह से रखिए, उसके ऊपर गरम जो माफ कीजिएगा उसके ऊपर जो तैयार की है अपने गरम मटर वो डालिए, मसाले और चटनी डालना है, और अब इसमें जो ऊपर से इसके ऊपर फेंटा हुआ दही, फिर हरी चटनी और बहुत सारी मीठी चटनी डालिए।

0: डालिएगा, या घर में अगर आपके किसी घर में तीखा पसंद है तो हरी चटनी ज्यादा डालिए। इसके बाद चाट मसाला, काला नमक, भुना जीरा, लाल मिर्च पाउडर, ये सब हल्का हल्का भुरकना है, और फिर आखिर में कटे हुए प्याज डाल के हरा धनिया से आप इसे सजाकर सर्व कीजिए।
1: और इसी तरह हरी धनिया के आलू भी बनते हैं। हरी धनिया एक पुदीने की बढ़िया चटनी बनाइए, उबले आलू लीजिए और उसके सबको मिक्स कर दीजिए, तो आपके हरी धनिया के आलू जो चाट है वो तैयार हो जाए।

0: तो दीपा देखो बात तो करते करते एकदम समय का पता ही नहीं चला, तो हमारे सभी साथियों ने बहुत सारे संदेश भेजे और बहुत अच्छी सी रेसिपी भी लिखकर भेजी।
1: बिल्कुल, तो और रेसिपी जो भेजी है उसको आप लंबी है लेकिन बनाइएगा जरूर, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बहुत स्वादिष्ट और मजेदार लगेगी। और अपना ध्यान रखिएगा मच्छरों से भी, और बच्चे नहीं अभी जब स्कूल जाने के लिए थोड़ा सा जिद करेंगे या मन उनका नहीं होगा तो उनका मन को बहलाइए खूब अच्छी ये इस तरह की रेसिपी बना के।
0: तो अब विदा लेते हैं प्रोग्राम से, सभी को मंजरी वर्मा और
1: दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, सेहतनामा कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे डॉक्टर को जो हेपेटोलॉजी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट है कोकिलाबेन हॉस्पिटल में। आप हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, आपका विविध भारती के स्टूडियो में हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपसे बात करने के लिए।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है?
2: नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफी दूर है हमारा हॉस्पिटल से, इतना बड़ा स्टूडियो, इतनी बड़ी जगह, इतनी खुली जगह देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफी बड़े स्टूडियोज हैं, फिर सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा
1: जी। आज सेहतनामा कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट की अन्य तमाम बीमारियों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर चौथा पांचवा मरीज ऐसा सुनने में आता है और सोशल मीडिया के माध्यम से तो हर कुछ पॉपुलर हो जाता है, मशहूर हो जाता है। तो बताइए कि फैटी लिवर है क्या और इससे कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं?
2: आपने बिल्कुल सही किया, फैटी लिवर अभी बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। आपने कहा हर चौथे पांचवे आदमी को फैटी लिवर है, पर मैं कहूंगा हर दूसरे तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। अगर आप देखें ओवरऑल फैटी लिवर को, तो कहने में आया है कि बड़े शहरों में जो हम अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं उनमें अबाउट 30-40% लोगों को ये बीमारी है फैटी लिवर। अगर आप गांवों में चले जाए, छोटे शहरों में चले जाए, तो ये बीमारी थोड़ी कम है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फैटी लिवर का मतलब होता है लिवर के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाना। हमारे लिवर के अंदर फैट होना जरूरी है फॉर बॉडी के कई फंक्शंस के लिए, बट जब ये फैट ज्यादा हो जाता है तब ये लिवर को नुकसान देता है, और अगर लिवर खराब हो जाए तो बॉडी के कई और ऑर्गन्स पे ये इफेक्ट करता है। अगर हमारे लिवर के अंदर फैट 5% मतलब 5% से ज्यादा हो जाए तो ये आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है, सबको नहीं, किसी किसी

0: लोगों को प्रॉब्लम देता है
1: जी। तो इसके कारण क्या है डॉक्टर साहब, क्यों फैटी लिवर होता है?
0: सो सबसे बड़ा कारण आई थिंक हमारे यहाँ है कि हमारी डाइट, अभी हमारी डाइट काफी सैचुरेटेड डाइट हो गई है। हम वेस्टर्नाइज डाइट हमने अडॉप्ट कर ली है, हम फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट की जब जो मात्रा होती है, अगर वो ज्यादा हो तो ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं वो लीवर में फैट करके स्टोर हो जाता है और लीवर को खराब करता है। डायबिटीज होना, प्री डायबिटीज होना, एक्सरसाइज नहीं करना, आजकल सब ऑटो में जाते हैं, टैक्सी में जाते हैं, वॉक करना तो ऑलमोस्ट सबने छोड़ ही दिया है, सबके वजन बढ़ रहे हैं, तो ये कई कारण है जिससे लीवर में फैट ज्यादा होता है और उससे लीवर को नुकसान पहुंच सकता है।
1: तो फैटी लीवर से और कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, और एक बात और दूसरी बात ये बताइए कि इसके लक्षण क्या है, कैसे मरीज को पता चले कि फैटी लीवर हो गया है उसको?
0: तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि ये प्रॉब्लम हो रही है। जब पेशेंट हमारे पास आता है ये प्रॉब्लम के साथ तब काफी लेट हो चुका होता है, ऑलरेडी लीवर पूरी हद तक खराब हो चुका होता है, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं। अगर हम इसको जल्दी पकड़े तो इसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का था कि ये क्यों होता है और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं। तो नॉर्मली इसके लक्षण बहुत कम होते हैं, कभी कभी हमको हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में थोड़ा दर्द हो सकता है, थकान आ सकती है। अगर हम अपने ब्लड टेस्ट चेक करें उसमें हमको डायबिटीज हो सकती है या प्री डायबिटीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है ब्लड के अंदर, तो ये दो तीन लक्षण है जिससे हमको सोचना चाहिए कि हमको शायद फैटी लिवर हो। क्लियरली अगर आपका वजन बढ़े जा रहा है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, खाना ठीक से नहीं खा रहे हो, तो आपको फैटी लिवर होने की संभावना है। बट अगेन मैं यही कहूंगा कि चेकअप करना जरूरी है क्योंकि इसके कोई सिम्टम्स होते नहीं है, सिम्टम्स बहुत आगे जाके आते हैं जब हम कुछ नहीं कर सकते।
1: जी, तो क्या है चेकअप का तरीका, क्या होता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का, किस तरह की जांच पद्धति है?
0: तो इस बेसिक चेकअप जो होता है, हमें सादे जो ब्लड टेस्ट होते हैं, जो हम रेगुलर ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हम देख लेते हैं कि हमको डायबिटीज है कि नहीं, हमारा HbA1c कितना है, हमारा ट्राइग्लिसराइड्स कितना है, LDL कोलेस्ट्रॉल कितना है, हमारा वजन कितना है। अगर वजन हमारा बढ़ रहा है या ज्यादा है, हम ओबीस कैटेगरी में आते हैं जिसमें एक हम नंबर कैलकुलेट करते हैं BMI, जो हाइट और वेट पे डिपेंड करता है, और अगर वो 23 से ज्यादा हो तो देयर इज अ रिस्क कि आपको शायद फैटी लिवर हो। फिर एक्चुअल डायग्नोसिस के लिए सोनोग्राफी लगती है, अगर आप पेट की सोनोग्राफी कराओ, कोई और कारण भी कराओ, उसमें अगर लिवर दिखे और उसमें आया कि लिवर फैटी है तो वो आपकी डायग्नोसिस हो गई फैटी लिवर है। पर ये खाली कह रहा है कि आपको फैटी लिवर है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको तकलीफ है। फैटी लिवर कई लोगों को होता है, पूरी जिंदगी लिवर में थोड़ा फैट ज्यादा होता है, पूरी जिंदगी कट जाती है, लिवर को कुछ नहीं होता है। बट ऐसे थोड़े पेशेंट्स हैं जिनको हमको ढूंढना पड़ता है, जिनको आगे जाके ये फैटी लिवर नुकसान देवा दे सकता है। टेस्ट करने के लिए कि कितना लिवर डैमेज है, दो तीन तरह के टेस्ट होते हैं। एक मशीन आती है हमारे ओपीडी में जिसमें मशीन से लिवर को हाथ लगाते हैं, वो 2 मिनट के अंदर बता देता है कि फैट कितना है पर नुकसान है कि नहीं, क्योंकि अगेन अगर नुकसान है तो उसकी ट्रीटमेंट करने की जरूरत है।
1: जी,
0: कई नए अल्ट्रासाउंड आए हैं जो अगेन लिवर को स्कैन करके बता देते हैं फैट है और डैमेज है कि नहीं। थोड़े एडवांस टेक्नोलॉजीज भी है हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हम काफी ट्रांसप्लांट्स करते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो एक MRI करके स्कैन आता है जिससे हम पता करते हैं कि लिवर में डैमेज है कि नहीं, और एक स्पेशल CT स्कैन भी अवेलेबल है। अब ये सारे जो टेस्ट है सिंपल टेस्ट है, हमको आराम से मिल जाते हैं सब जगह से। अगर आपको चाहिए कि कोई फाइनल टेस्ट हो जो बताए कि कितना लिवर खराब है, तो लिवर बायोप्सी करते हैं, लिवर का एक टुकड़ा लेते हैं। पर मुझे याद नहीं है लास्ट मैंने लिवर बायोप्सी फैटी लिवर के लिए कब की थी, क्योंकि हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने एडवांस हो चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर मैं पेशेंट को बता देता हूं कि आपको लिवर में खाली फैट है कि फैट के साथ नुकसान है। बट इसके लिए पेशेंट हैज टू बी एजुकेटेड, पेशेंट को पता होना चाहिए कि मुझे ये टेस्ट करने हैं। अगर हमारे पास वो टेस्ट लेके आओगे तो हम आगे आपको टेस्ट करके आंसर दे पाएंगे।
1: जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जरा भी तकलीफ होती है या यूं ही फैट बढ़ रहा है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अमूमन लोग डॉक्टर के पास जाने में ही परहेज करते हैं, अपने आप ही गूगल के जरिए कुछ कुछ दवाइयां ले लेते हैं, ये भी ठीक नहीं है। खासतौर से उन श्रोताओं के लिए ये बात हम कह रहे हैं जो ग्रामीण इलाकों में, कस्बों में बसते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए बड़ी कारगर बातें आपने बताई। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें, आपकी पसंद का गाना बताइए।
0: मेरा एक गाना जो बहुत मुझे पसंद है, जब मैं अमेरिका में था काफी साल, 14-15 साल मैंने वहां

0: अच्छा
1: तो यहाँ बॉम्बे का ही हूँ, यहाँ पढ़ा लिखा हूँ MBBS की, मगर बाहर जाके ट्रेनिंग की, एडवांस ट्रेनिंग की, प्रैक्टिस की काफी काफी साल। फिर 14 साल छोड़ के मैं वापस आ गया क्योंकि मेरे पेरेंट्स यहाँ थे। तो वहां मैंने एक सॉन्ग बहुत सुनता था, वो स्वदेश पिक्चर का एक सॉन्ग था शाहरुख खान का,
0: ये जो देश है मेरा।
1: ये सॉन्ग मुझे बहुत बहुत पसंद।
0: क्या बात है, सुनते हैं यही गाना स्वदेश फिल्म का।

0: डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि आप अमेरिका में रहे बहुत साल, तो किस तरह की पढ़ाई वहां पर थी आपकी?
1: तो बेसिक MBBS मैंने यहाँ से की, बॉम्बे से की। फिर वहाँ पे मेरे फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली वहाँ रहती थी, तो मैं वहाँ जाके पहले अपना बेसिक MD मेडिसिन की हमने वहाँ पे। तीन तीन
0: जी
1: साल का कोर्स होता है वहाँ पे, जो MD मेडिसिन MBBS के बाद करते हैं। फिर उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि वहाँ पे लिवर के लिए पढ़ाई करूँ एक्स्ट्रा, जो स्पेशल फेलोशिप होती है हेपेटोलॉजी
0: जी
1: की, जब हम लिवर और लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में सीखते हैं हाउ टू डू इट। तो मैंने एक साल का कोर्स किया। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि क्यों मैंने ये फील्ड चूज की थी, मैं बताऊंगा आपको आगे। और सब्सिक्वेंटली पूरी ट्रेनिंग खत्म करने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी करते हैं हम,
0: जी
1: एंडोस्कोपी वो की, एंड फाइनली मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जाके एडवांस एंडोस्कोपी सीखी, जो स्पेशलाइज एंडोस्कोपीज होती है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड,
0: जी
1: ERCP करके टेस्ट होते हैं जो हम हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स
0: जी
1: पे भी करते हैं, वो सीखी। तो ओवरऑल 8 से 9 साल लगे वहाँ पे पढ़ने
0: जी
1: को।
0: जी
1: फिर
0: जी
1: 4-5 साल उधर काम किया। फिर 14 साल बाद आई डिसाइडेड कि वापस आना चाहिए अपने देश। तो जैसे मेरी माँ कहती है ना, वनवास करके आ गया
0: अरे
1: वापस।
0: क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई, और हमारे बहुत सारे युवा श्रोता सुनते हैं प्रोग्राम, तो कितनी अच्छी बात है कि अपने देश की प्रतिभा को वापस अपने देश में आपने दिया। और अपने श्रोताओं को ये बताते हुए हमें अच्छा लग रहा है कि हम निजी तौर पर भी डॉक्टर साहब को जानते हैं, और बड़े अनुभव का खजाना है हमें पता था, लेकिन इतनी

0: सारी नॉलेज का भी खजाना है, ये हमें आज पता चला। डॉक्टर साहब, आज फैटी लिवर पे हम पहले बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बहुत सारी पेट की बीमारियों पर भी चर्चा करेंगे। हमें बताइए कि दवाइयों से क्या फैटी लिवर का इलाज संभव हो सकता है, या कोई ऑपरेशन या परहेज कुछ करना पड़ता है?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यू नो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है, वो पेशेंट के एक्सपेक्टेशन देती है कि हम एक दवाई लिख के दें
0: जी।
1: तो फैटी लिवर ऐसी बीमारी है जो अगर जल्दी पकड़े जाए तो इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने बॉडी का 5-10% भी वजन कम कर पाए किस तरह भी, चाहे आप डाइट करो, एक्सरसाइज करो, अगर 5-10% आपने वेट कम कर लिया तो बीमारी पूरी तरह से मिट जाती है मोस्ट पेशेंट्स में। पर ये करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है। तो मोस्ट पेशेंट्स को कोई ना कोई दवाई की जरूरत पड़ती है। पहले हम विटामिन ई देते थे, एक गोली आती थी वो देते थे उसके लिए। उसके बाद और नई दवाइयां, एक इंडियन दवाई आई है जो हम देते हैं, जिससे फैटी लिवर भी कम होता है और लिवर का डैमेज भी थोड़ा थोड़ा कम होता है। अमेरिका में दो और दवाइयां अभी अप्रूव हुई हैं, एक साल पहले हुई थी, अभी 6 महीने पहले हुई है। आजकल जो सबसे ज्यादा दवाई हम यूज करते हैं इसके लिए वो है सेमाग्लूटाइड, एक तरह का इंजेक्शन होता है जिससे वेट लॉस होता है, जो आजकल काफी फेमस हो चुका है फॉर गुड एंड बैड रीजंस। तो देर आर मेडिसिन अवेलेबल है दवाइयां, मगर ये डॉक्टर के देख के डॉक्टर है डिसाइड कि कौन सी दवाई आपके लिए सही है। मेरा मानना होता है कि पेशेंट्स खुद, जैसे आपने कहा, गूगल करके दवाई ले लेते हैं। स्पेशली ये जो हर्बल मेडिसिन होते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं, उस पर थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कभी भस्म होता है, उसमें लिवर को डैमेज करने का और चांस होता है। तो ये दवाइयां थोड़ा ध्यान से लेनी चाहिए। अगेन, बिना दवाई के हो सकता है। मेरे हर एक पेशेंट को पहले मैं 3-6 हफ्ते का चांस देता हूं कि वेट लॉस करो। अगर वजन नहीं कम कर पा रहे और नहीं हो रहा है आपका फैटी लिवर रिवर्स, फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। तो डॉक्टर साहब, आजकल ये समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है, उसका कारण स्ट्रेस है, पढ़ाई का बोझ है, और अगर वो कंपनीज में काम कर रहे हैं तो उसका बोझ है, तो क्या तनाव भी एक कारण है? एक बात ये बताइए, और साथ में हमें ये भी बताइए कि लिवर के, इस फैटी लिवर के कारण और कौन कौन सी बीमारियां पैदा हो जाती हैं?
1: हाँ, बहुत सही कहा आपने, फैटी लिवर स्ट्रेस वो हैंड इन हैंड। आजकल मैं देखता हूँ मेरे जो पेशेंट्स आते हैं और फैमिली मेंबर्स भी, उन्होंने 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, स्पेशली पढ़ाई कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। मैं अपने लड़के के बारे में बोलूं, बैठे रहेंगे, वजन बढ़ेगा, एंड यू नो फिर उस टाइम पे कुछ सूझता नहीं है, जो हाथ में आया खा लिया, एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जंक फूड खा लिया, और डाइट इज बेसिकली नॉन एग्जिस्टेंट है अभी। तो आई थिंक स्ट्रेस ऑफ वर्क, स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, स्ट्रेस ऑफ जॉब, ट्रैवल, वो सबसे भी अपने बॉडी के हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, जिसमें वेट गेन होना बहुत रैपिडली होता है। फिर वो स्ट्रेस को कम करने के लिए हम खाना खाते हैं, जो बोलते हैं स्ट्रेस ईटिंग। हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे, प्रोटीन कम खाएंगे, यू नो प्रोसेस्ड फूड्स खाएंगे, स्विगी ऑर्डर कर लिया, इंस्टा ऑर्डर कर लिया, 5 मिनट में घर पे आ गया, खा लिया और काम खत्म। तो ऑल दीज कैन देन लीड टू फैटी लिवर, एंड देन वंस फैटी लिवर हो गया, देन फैटी लिवर अगेन इज नॉट द प्रॉब्लम। फैटी लिवर अगर आपको है तो कह रहा है कि आपको बॉडी में और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, ये सब वेट से रिलेटेड है, सब फैट से रिलेटेड है। तो लिवर तो बेचारा एक ऑर्गन है जो सब स्टोर कर रहा है, पर उसकी इफेक्ट सारे ऑर्गन्स पे हो सकती हैं।
0: जी जी, तो ये फैटी लिवर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, तो हमारे बहुत सारे श्रोता जो विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, उन्होंने कुछ सवाल भी भेजे हैं, तो फैटी लिवर के बारे में बताया है लेकिन सवाल उन्हें नहीं सूझा, तो मैं ही सब पूछ रही हूँ अपनी तरफ से, उन श्रोताओं की ओर से भी, कि फैटी लिवर पर अगर ध्यान नहीं दिया गया, थोड़ी बहुत लापरवाही या असावधानी की वजह से, तो क्या लिवर सोरायसिस या लिवर कैंसर जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं क्या?
1: बिल्कुल, अगर 100 पेशेंट्स को लें, 100 लोगों को लें जिनको फैटी लिवर है और उनको और कोई और बीमारी नहीं है, तो इनमें से 2-3% लोगों को आगे जाके लिवर सिरोसिस होगा। ये बहुत बड़ा नंबर है, हमें ये, मैं डायबिटीज वालों को नहीं बोल रहा, मैं रेगुलर पेशेंट्स को बोल रहा हूँ। अगर आप देखें हमारी इंडियन पॉपुलेशन इज क्लोज टू 250 करोड़, उसमें अगर आप 3% लोगों को भी लिवर सिरोसिस दे दे, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। बहुत लोगों को लिवर सिरोसिस होता है, एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए वो परमानेंट है, तो लिवर सिरोसिस पेशेंट को फिर लिवर कैंसर होने की संभावना 20-30 गुना ज्यादा होती है। तो लिवर फैटी लिवर से सिरोसिस होता है, सिरोसिस के साथ आगे कैंसर होने के चांसेस कई ज्यादा।
0: जी जी, डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को।

0: दूसरा गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं एक्सरसाइज के टाइम कभी कभी सुनता हूँ,
1: क्योंकि
0: लाइक थोड़ी बीट सोनी चाहिए, भाग मिल्खा भाग वाला गाना,
1: क्या बात है,
0: मुझे पसंद है।
1: सुनते हैं, फरहान अख्तर पर्दे पर हैं और अच्छी एक्टिंग करते हैं और भाग रहे हैं सचमुच, तो बेहतरीन गाना चुना है। सुनते हैं यही गाना, और ये भाग मिल्खा भाग फिल्म का गाना सुनते हुए अपने श्रोताओं से ये भी कहना जरूरी है कि बस भागना जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि अगर डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि बैठे बैठे आप बीमारियों के शिकार हो सकते हैं, तो कसरत कीजिए और भागिए।

0: है?
1: जब लिवर सिरोसिस होता है तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, उनको तकलीफें शुरू हो जाती हैं। सबसे बड़ा सिम्टम होता है फटीग, थकान रहना, पूरे दिन थका हुआ रहता है आदमी। कभी कभी फैमिली मेंबर नोटिस करता है कि आंखें पीली हो रही है, येलो हो रही है। कभी कभी पेट फूलना शुरू हो जाता है, वजन कम होता है मगर पेट फूल रहा है, पेट में पानी जमना शुरू हो जाता है। रेयरली कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है, उसमें कभी कभी खून की उल्टी भी हो सकती है क्योंकि सिरोसिस के कारण खाने के पाइप में कोई नसें फट जाती हैं। तो ये सारे लक्षण जब आते हैं तो वो कह रहा है आपको कि लिवर काफी हद तक खराब हो गया है, और तभी नॉर्मली पेशेंट डॉक्टर को मिलने आता है।
0: जी, तो इसका इलाज संभव है पूरी तरह या ये एक लाइलाज बीमारी है, हमेशा दवा खानी पड़ती है?
1: नहीं, दवाई तो हमेशा खानी पड़ती है, इट इज इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है अगर हमको कोई और कारण पकड़ में आ जाए। कभी कभी सिरोसिस के साथ हेपेटाइटिस होता है जो इंडिया में कॉमन है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, उसको हम अगर ट्रीट कर दें तो खराब लिवर को भी बचा सकते हैं और जिंदगी कट सकती है। फैटी लिवर मगर ऐसी बीमारी है जिसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अगर आपको सिरोसिस हो जाए तो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है। हम बेसिकली उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे खून की उल्टी होना, पेट में पानी बनना, थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना, उसको ठीक कर सकते हैं, पर एक बार सिरोसिस सेट हो गया है तो वो इरिवर्सिबल बीमारी, और फिर आगे जाके हमको मोस्ट पेशेंट्स का लिवर बदलना पड़ता है, लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं।
0: डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि फैटी लिवर से डायबिटीज का क्या संबंध है? क्या ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि मतलब फैटी लिवर हो गया तो डायबिटीज होना जरूरी है?
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखा जाए तो अगर आप देखें जिनको फैटी लिवर है उनका हम अगर डायबिटीज का चेकअप करें तो काफी लोगों को प्री डायबिटीज होता है, मतलब डायबिटीज शुरुआत होने की चांसेस है। HbA1c जो बोलते हैं वो 5.7-5.8 होता है। मोस्ट प्लेसेस में आप देखें अब्रॉड, अगर आपका HbA1c 5.6-5.7 है, आपको प्री डायबिटीज है, आपको 10 या 12 साल बाद डायबिटीज शुरू होनी होनी है। इंडिया में फॉर सम रीजन, ये हमारा जेनेटिक्स है या कुछ है, कि अगर हमको फैटी लिवर है और हमारा HbA1c प्री डायबिटिक रेंज में, 3 से 4 साल में या 5 साल में आपको डायबिटीज हो सकती है। तो अगर आपको फैटी लिवर है, ये कह रहा है कि आपको आगे जाके डायबिटीज हो सकती है। नाउ उल्टा सवाल, अगर आपको डायबिटीज है तो रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज वेरी हाई। नॉट ओनली रिस्क ऑफ फैटी लिवर इज हाई, रिस्क ऑफ फैटी लिवर विद कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो डैमेज फाइब्रोसिस बोलते हैं, वो काफी हाई होती है। तो अगर आप देखें आजकल के जो डायबिटीज की दवाई शुरू हुई है, जो न्यू दे रहे हैं, जो वेट लॉस ड्रग जो डायबिटीज के लिए एक्चुअली अप्रूव्ड है, वो फैटी लिवर को भी हेल्प करती है।
0: ओके,
1: सो इट वर्क्स बोथ वेज।
0: अच्छा, तो इसके लिए क्या अवेयरनेस क्या होनी चाहिए कि इन बीमारियों से मरीज मतलब उसके चपेट में ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए?
1: ना, अवेयरनेस यही है कि जैसे हमने कहा है खाने पे ध्यान दो। हमारा जो इंडियन डाइट है वो काफी पोअर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। तो अगर हम प्रोटीन बढ़ाएं डाइट में, कार्बोहाइड्रेट कम करें, तो अपने आप थोड़ा वेट लॉस होगा, मसल मास बढ़ेगा, रिस्क ऑफ डायबिटीज कम हो जाएगा। एक्सरसाइज करो, जो मैंने गाना थोड़ी देर पहले बजाया था, भाग मिल्खा भाग, उसका यही है कि भागो, एक्सरसाइज करो। बहुत से पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम सबको पूछता हूँ, मेरा पहला सवाल यही होता है कि एक्सरसाइज कर रहे हो? और सबका सवाल, आधे लोग बोलते हैं हाँ वॉक करते हैं। तो वॉक इज नॉट गुड। अगर आप जो भी डेटा देखें तो 150 से 200 मिनट की एक्सरसाइज हफ्ते की जरूरी है अगर आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है, जिसमें इट इंक्लूड्स कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज जिसमें आप वॉकिंग करते हैं, और आपकी सांस फूलनी चाहिए, पसीना आना चाहिए। आप खाली वॉक करो, काम पे जाओ, स्टेशन तक जाओ, वापस आ जाओ, दैट इज नॉट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में सांस फूलनी चाहिए, हार्ट रेट बढ़ना चाहिए एज अप्रोप्रिएट, और थोड़ी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए हफ्ते में 2 दिन, थोड़े वेट्स करने चाहिए जिससे आपका मसल बढ़े। अगर आपका मसल का साइज बढ़ेगा, आपका वेट लॉस जल्दी होगा, डायबिटीज नहीं होगी या कंट्रोल में आएगी, बॉडी का फैट निकलेगा क्योंकि मसल ज्यादा बर्न करेगा एनर्जी को। तो अगेन चेकअप कराते रहिए, बेसिक ब्लड टेस्टिंग का, एक्सरसाइज कर कीजिए 150 मिनट्स मिनिमम अ वीक, खाने में ध्यान दीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए अपने खाने में, और रेगुलर अपना हेल्थ चेकअप कराते रहिए।
0: जी, कई बार लोग, ये भी भ्रांति है, मतलब गलतफहमी है लोगों में कि प्रोटीन खाने से पाचन की समस्या बढ़ती है, एक उम्र के बाद प्रोटीन लोगों को कम कर देना चाहिए, तो दाल कम कर देते हैं लोग, चने खाना, तो इसके बारे में थोड़ा।
1: हाँ, ये अच्छा सवाल है बहुत, क्योंकि जब भी मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि आपको फैटी लिवर है, तो उनके 2 जवाब होते हैं सबके, कि हम तो अल्कोहल पीते नहीं है, क्योंकि सबके मन में भ्रम है कि अल्कोहल से फैटी लिवर होता है, और दूसरा होता है कि

0: हम तो शाकाहारी है, हम तो कांदा लहसुन भी नहीं खाते. मेरा मानना है कि इन इंडिया बीइंग अ वेजिटेरियन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर लिवर डिजीज, बिकॉज वेजिटेरियंस में हम ज्यादा कर कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. अगर हमारी डाइट देखे 70-80% कार्ब्स है, 10% फैट होगा, 10-15% प्रोटीन है. और ये वेस्टर्नाइज डाइट देखो तो 30% तक प्रोटीन होता है डाइट में. तो प्रोटीन डाइजेस्ट करना इजी है. इनफैक्ट हमारे जो दालें हैं वो ज्यादा इजी है डाइजेस्ट करना देन अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन, जैसे अपने एग्स हो गए, मीट्स हो गए. हम शाकाहारी तो हम नहीं खा सकते, तो ये भ्रम है कि आगे जाके नहीं खाते हम. इनफैक्ट बढ़ाना चाहिए थोड़ा, उससे आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, आपकी मसल स्ट्रांग रहेगी, बोन स्ट्रांग रहेंगे, फ्रैक्चर्स होने के चांस कम हो जाते हैं.
1: जी, तो अभी जो भी श्रोता सुन रहे हैं तो अपने डाइटिशियन से संपर्क करें या ये खोजें कि कहाँ कहाँ प्रोटीन ज्यादा मात्रा में है, और आज से प्रोटीन की डाइट शुरू करें. इसमें हम भी शामिल हैं, हम अपने को भी शामिल करते हैं इसमें. और अब एक गाना सुने डॉक्टर साहब.
0: बिल्कुल, तो एक और गाना जो मुझे बहुत पसंद है, स्कूल डेज में हमने सुना था जब मेरे 10th खत्म हुई थी, जो जीता वो सिकंदर का गाना, यहाँ के हम सिकंदर.
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गाना चुना है. और सभी हमारी बातचीत से मेल खा रहे हैं. अगर अपनी सेहत अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो जाहिर सी बात है हम अपने क्षेत्र में सिकंदर बने रहेंगे. सुनते हैं यही गाना.

0: डॉक्टर साहब, ये जो जीता वही सिकंदर फिल्म का गाना था, और इस गाने के साथ खुद को सिकंदर बनाए रखने के लिए अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत जरूरी है। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं फैटी लिवर और पेट से संबंधित अन्य बीमारियों के बारे में। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में है मुंबई के मशहूर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से कुछ सवाल आए हैं। ये कार्यक्रम विविध भारती के फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है, तो वहां से कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या होता है। मतलब कई श्रोताओं ने लिखा है, किसी ने लिखा है कि हमारी माँ को है, किसी ने लिखा है मुझे, किसी ने लिखा है मेरी बहन को है। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम क्या है, IBS, और कैसा होना चाहिए खान पान इसके लिए?
1: तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम प्रोबेबली फैटी लीवर के बाद सबसे कॉमन, अगर पेट की बीमारी देखें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, जिसमें पेशेंट को लगता है कि पेट फूल जाता है, कभी कभी पेट दर्द करता है, कभी लूज मोशन हो जाते हैं, कभी कब्जियत हो जाती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। और इन पेशेंट्स को हम सारी जांच पड़ताल कर ले, हमको कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ नॉर्मल मिलता है। तो लॉट ऑफ टाइम ये स्ट्रेस रिलेटेड रहता है या सिचुएशन रिलेटेड रहता है। जैसे बच्चे हों, उनको अगर एग्जाम देने जा रहा हूँ तो बोलते पेट दर्द कर रहा है, या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या लूज मोशन शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस में, तो इसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसमें इधर आपको डायरिया होता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट फूलता है, और अगर पेट साफ हो जाए तो अच्छा लगता है। तो इसकी ट्रीटमेंट बेसिकली होती है, यू नीड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस, ट्रीट द स्ट्रेसर, और डाइट के थोड़ा ध्यान दो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो डाइट में फाइबर ज्यादा लो, फल फ्रूट ज्यादा लो। अगर लूज मोशन हो रहे हैं तो कच्चा खाना मत खाओ, पका हुआ खाना खाओ, थोड़ा ब्रेड्स खाओ, राइस खाओ, जिससे पेट थोड़ा बन जाए।
0: ये है। और बाकी नॉर्मल किस तरह की तकलीफ होती है, वोमिटिंग और जो एसिडिटी की समस्या भी होती है इससे?
1: इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अलग बीमारी है, एसिडिटी अलग बीमारी है। एसिडिटी होता है जब हमको खाने के पाइप में या पेट में या छाती में जलन होनी थी है, वो खाने के बाद हो सकती है, खाली पेट हो सकती है, सोने के बाद होती है, खाना हम लेट खाएं और लेट जाएं और छाती में जलन होती, तो उसको एसिडिटी या गर्ड बोलते हैं। एक बात आपने सही की कि ये IBS गर्ड पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो सबकी एक हमको एसिडिटी हो गई है। तो एसिडिटी इज अ वेरी स्पेसिफिक टर्म। एसिडिटी मतलब जलना, पेट के ऊपर के हिस्से में जलना, छाती में जलना, कभी कभी उसे खांसी भी हो सकती है, कभी कभी खाना अटकता है गले में, ऐसे लग रहा है, तो उसको एसिडिटी बोलते हैं। IBS होता है पेट फूलना, छाती के नीचे का प्रॉब्लम है, वो पेट फूलना, लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना। तो ये जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए जब पेशेंट हमारे पास आते हैं हमको काफी सवाल पूछने पड़ते हैं कि एक्चुअली बीमारी क्या है, क्योंकि इंडिया में सॉर्ट ऑफ हो गया कि सब बीमारी इज एसिडिटी। हर एक बीमारी, अगर लूज मोशन को एसिडिटी बोल देते हैं, कॉन्स्टिपेशन को एसिडिटी बोल देते हैं, पर एसिडिटी इज अ सेपरेट प्रॉब्लम।
0: जी,

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हम जानना चाहते हैं कि दरअसल डॉक्टर साहब, कुछ मरीज को ये समस्या भी होती है कि उन्हें जलन नहीं महसूस होती है, एसिडिटी फील नहीं होता है, लेकिन फिर उनको ऐसे लगता है ऊपर ऊपर कुछ आ रहा है और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कई कई वोमिटिंग, तो ये क्या?
1: हाँ, तो ये भी इट्स अ पार्ट ऑफ एसिडिटी ओनली। इसमें बेसिकली खाना ऊपर चढ़ के आ रहा है
0: जी।
1: तो जो हमारे खाने का पाइप होती है, इसोफेगस जिसको बोलते हैं, और पेट होता है, उसके बीच में एक वाल्व होता है। किसी किसी का ये वाल्व लूज हो जाता है विद टाइम, उसके कई कारण होते हैं। उसके बाद अगर हम हेवी खाना खा लें तो वो खाना ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, वो शायद ना जले मगर ऊपर चढ़ चढ़ के आएगा, मुंह में आएगा, कभी कभी मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, कभी लेट खाना खाओ लेट जाओ तो रात को उठना पड़ता है क्योंकि खट्टा पानी ऊपर आ गया है और खांसी शुरू हो गई है। तो इसको रीगर्जिटेशन बोलते हैं, मतलब जो पेट का खाना है, जो पेट के नीचे जाना चाहिए, वो अभी वापस खाने के पाइप में आ गया है
0: जी। तो इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है?
1: तो इसका बेसिक ट्रीटमेंट तो हम वही करते हैं कि खाना टाइम पे खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लो, सबसे इम्पोर्टेंट है खाने में और सोने में 3 घंटे का गैप रखिए, खाने के बाद टहलिए थोड़ा 10-15 मिनट तक, खाना नीचे चले जाए। दूसरी चीज कहूंगा, जो चीज आपको लग रहा है आपको तकलीफ दे रही हो, तो किसी किसी को स्पाइसी फूड तकलीफ देता है, तला हुआ तकलीफ देता है, या ज्यादा पानी नहीं पीना खाने के साथ, जैसे बहुत लोग आजकल कोका कोला पीते हैं या एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं खाने के साथ, तो वो फिर गैस ऊपर चढ़ के आती है और खाना भी उसके साथ चढ़ के आता है। तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, लेट नाइट मील्स मत खाओ, जो चीज आपको तकलीफ देती है वो मत लो, दैट शुड हेल्प योर सिम्टम्स। अगर इसके बावजूद नहीं ठीक हुआ फिर हम दवाई शुरू करते हैं
0: जी। जी, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मैंने तो हर किसी को सुना है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो इसकी जांच की कोई व्यवस्था है कि कैसे पता चले कि एसिडिटी है, क्या वजह, कारण क्या है, असली कारण क्या है?
1: हाँ, तो ये भी बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोस्ट टाइम्स हम देखते हैं पेशेंट फार्मेसी के पास जाते हैं, केमिस्ट के पास जाते हैं, एक दवाई ले ली, वो लेते रहते हैं। बट ये दवाई भी लंबे देर तक लेना नहीं चाहिए। दूसरा, थोड़े सवाल हम पूछते हैं पेशेंट्स को, जैसे अगर खाना अटके, जब खाओ खाना अटके तो वो सही नहीं है, मतलब आपको एसिडिटी इतनी होगी कि खाने के पाइप छोटी होगी, तब हमको एंडोस्कोपी से देखना पड़ता है।
0: जी, जी।

0: अटकना लगे, वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाए, वजन कम हो, या आफ्टर द एज ऑफ 40-50 थोड़ा एज हो गई हो और फिर सडनली न्यू सिम्टम शुरू हो जाए, या खांसी हो रही हो रात भर, तब उस टाइम पे दीज आर व्हाट वी कॉल अलार्म सिम्टम्स। अलार्म सिम्टम्स मतलब ये जब पेशेंट हमको बोलना शुरू करता है तब हमारे सॉर्ट ऑफ एंटीना ऊपर चढ़ जाते हैं कि ये भी देखना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है, तब हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रहा, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस, एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन है जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती के

0: हम एक एंडोस्कोपी करके देखते हैं खाने के पाइप में और पेट में कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है।
1: और डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए कुछ मरीज को हमने ये भी सुना है कहते हुए कि एसिडिटी की प्रॉब्लम है, मैंने सारे टेस्ट करवा लिए और सारे ट्रीटमेंट कर लिए, सारी दवाएं खा ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और मैं तो अभी योगा एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मतलब ये अमूमन लोग कहते हैं, तो फिर क्या होता है? और कई लोगों ने तो ये भी कुछ एक वायरस एच पायलोरी नाम का वायरस होता, उसकी भी जांच नॉर्मल है, फिर क्या?
0: हाँ, तो एक्चुअली एच पायलोरी एक कॉमन इन्फेक्शन जो पेट के लाइनिंग में रहता है, पर एक्चुअली जिसको एच पायलोरी होता है उसको छाती की एसिडिटी कम होती है, क्योंकि ये जो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसिड बनने नहीं देता है। इनफैक्ट अगर हम एंडोस्कोपी एसिडिटी के लिए कर रहे हैं, गर्ड के लिए जिसको बोलते हैं रिफ्लक्स डिजीज, तब हम एच पायलोरी को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। अगर पेट में जलन हो रही है, मतलब छाती में नहीं बोल रहा, खाली पेट में दुख रहा है या पेट में जलन हो रही है, तब हम एंडोस्कोपी करके या कोई स्टूल टेस्ट करके या ब्रेड टेस्ट करके एच पायलोरी को ढूंढते हैं। अगर एच पायलोरी मिले उसको ट्रीट करें तो काफी लोगों के पेट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। बट जस्ट बिकॉज हमको एच पायलोरी मिला डज नॉट मीन के दैट इज द फाइनल प्रॉब्लम। बहुत बार पेशेंट को अगेन सिम्टम्स होते हैं, पेट में जलना, अच्छा नहीं लगना, दर्द करना, पर हमने एंडोस्कोपी कर ली, ब्लड टेस्ट कर लिए, सारा कुछ नॉर्मल है, तो ये बीमारी को हम डिस्पेप्सिया बोलते हैं। जैसे IBS बोला मैंने पहले, सब टेस्ट कर लिए कुछ नहीं मिला, ये ऊपर के पेट की बीमारी डिस्पेप्सिया, मतलब आपको दर्द हो रहा है, सिम्टम्स हो रहे हैं मगर सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, तो उसको हम सिम्टोमेटिकली मैनेज करते हैं, जो तकलीफ है उसकी दवाई दे दो।
1: जी, तो इसका कुछ मतलब इसका फिर इलाज संभव होता है, इसकी दवा दी?
0: ऑफ कोर्स इसकी दवा होती है, तो मोस्ट टाइम्स हम एसिडिटी की दवाइयों से शुरू करते हैं। अगर एसिडिटी की दवाई ना हो तो हम सॉर्ट ऑफ पेशेंट को पूछ के ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई फूड ट्रिगर होता है, कभी कभी फूड एलर्जीज होती है, जैसे एक तरह की गेहूं की एलर्जी इंडिया में अभी ज्यादा आ रही है, सीलैक डिजीज बोलते हैं, जो ग्लूटेन फ्री डाइट लेते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ये स्ट्रेस रिलेटेड भी रहती है, तो वन ऑफ द मेडिसिन वी गिव पेशेंट्स इज स्ट्रेस कम करने की, एंग्जाइटी कम करने की मेडिसिन देते हो, वो लॉन्ग टर्म ले सकते हो, उससे माइंड काम होता है तो पेट काम होता है। माइंड एंड स्टमक आर कनेक्टेड, उसको गट ब्रेन एक्सेस बोलते हैं। अगर पेट ठीक नहीं होगा तो मन ठीक नहीं होता, इसी तरह अगर मन ठीक नहीं हुआ तो पेट ठीक नहीं होगा,
1: दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
0: Correct.
1: और वो ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब बहुत सारे मन को ठीक करने के लिए कई बार हम संगीत का दामन थाम लेते हैं, तो एक गाना सुनते हैं और यहाँ पर अपने सारे श्रोताओं के मन को ठीक किया जाए।
0: तो एक गाना मुझे बहुत पसंद है, अगेन शाहरुख खान का ही गाना है, छैया छैया
1: चल छैया छैया, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, ये बात जो चल रही थी एसिडिटी की, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। मैंने देखा है कि महानगरों में ये समस्या ज्यादा होती है, छोटे शहरों में जब जाते हैं तो लोगों को हम कम सुनते हैं ऐसा कहते हुए। तो एक तो ये बात बताइए कि जो समस्या है एसिडिटी की, सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं, तो क्या इन बीमारियों के लिए जो दवाएं खाई जाती हैं एसिडिटी की, लोग गोली खा लिए, कुछ लोग तो ये भी ट्राई करते हैं कि 2 दिन के गैप के बाद खा लो ठीक रहेगा, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है, ठीक है या नहीं करना चाहिए?
1: हाँ, तो बेसिकली कभी भी हम ये दवाई दें ना, तो हमेशा एंड पॉइंट होना चाहिए कि कब ये दवाई बंद करें। तो मोस्ट टाइम्स हम पेशेंट्स को ये दवाई बंद करने की कोशिश करते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो केमिस्ट है वो रेगुलेटेड नहीं है। आप जाके दवाई मांगो, आपको दे देंगे दवाई। तो ये बाहर के मुल्कों में संभव नहीं है, बिकॉज ये दवाइयाँ के साइड इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एसिडिटी की दवाई अगर ज्यादा देर तक लेते रहो तो बोन लॉस होता है, किसी किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। पेट में थोड़ा एसिड तो चाहिए डाइजेशन के लिए, तो कभी कभी पेट के इन्फेक्शन होने के रिस्क भी ज्यादा रहते हैं। विटामिन न्यूट्रिएंट्स जो पेट से अब्सॉर्ब होते हैं पेट के आगे

0: से वो नहीं होंगे, जैसे B12 डेफिशिएंसी हो जाए, कभी कभी आयरन भी कम हो जाता है दवाई लंबे देर तक लेने के लिए, तो रेयरली ये किडनी को भी इफेक्ट करता है। तो ये दवाइयाँ जरूरी हैं, है हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट जो सालों साल लेते हैं, मगर वी हैव टू फाइंड अ वैलिड रीजन कि इनको क्यों चाहिए ये दवाई। जितना हो सके हमको दवाई बंद करनी चाहिए। काफी लोग ऐसे भी करते हैं जैसे अपने का दवाई दूसरे दिन तीसरे दिन ले लेते हैं, उसको ऑन डिमांड मेडिसिन बोलते हैं, विच इज अ प्रॉब्ली अ गुड वे टू डू, कि अगर आपको हमेशा जरूरत नहीं तो क्यों लोगे। मैं कई पेशेंट्स को कहता हूं कि एक बार आपका कोर्स खत्म हो जाए, सपोज आपने रात को खाना खाने जाना है, शादी पे जाना है, खाना लेट होने वाला, आपको पता है आपको रात को तकलीफ होगी, तो शादी के जाने के पहले एक गोली लेते हो जाओ।
1: जी जी,
0: सो दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड मेडिसिन, विच इज प्रॉब्ली बेटर देन टेकिंग अ मेडिसिन रोज।
1: जी, लेकिन वो आदत न डाल ले, ये गड़बड़ है। और ये एक जो समस्या उल्टी के बारे में, उल्टियां होती हैं कुछ मरीज को, फिर रुकती नहीं है उल्टियां, तो क्या वो भी इसी वजह से होती हैं? ये किस तरह की बीमारी का द्योतक है?
0: अगर कंटिन्यूसली पेशेंट्स को उल्टी होते रहे तो दैट इज अ इंडिकेशन कि हमको एक बार एंडोस्कोपी करके देखना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। इसके कई कारण हो सकते हैं, अगेन माइंड से लेके पेट से लेके। आजकल हम ज़्यादा देखते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स को, जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर डायबिटीज़ बहुत देर तक हो जाए तो जो मेन नसें होती हैं जो पेट को स्टिमुलेट करती हैं, जब हम खाना खाते हैं तो पेट हिलना शुरू करता है, तो डायबिटीज़ पेशेंट को पेट हिलता नहीं है इतना, तो उसको गैस्ट्रोपरीसिस बोलते हैं कि पेट जो खाना खाया है वो पेट में ही रहता है, तो थोड़ी देर के बाद वॉमिट हो जाती है। अगेन स्ट्रेस से भी हो सकती है, एंग्जाइटी से वॉमिटिंग, किसी किसी को पेट में अल्सर हो सकता है जिसके कारण पेट की जो एंड पॉइंट है जहाँ से खाना इंटेस्टाइन में जाता है वो छोटा हो जाता है, तो खाना उधर अटक के वॉमिट हो जाता है। एंड रेयरली अगर वॉमिटिंग जारी रहे तो वी हैव टू थिंक अबाउट अदर प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर्स ऑफ द इंटेस्टाइन आल्सो।
1: तो मतलब किसी भी बीमारी को, मतलब पेट से संबंधित ये जो एसिडिटी की समस्या है, छोटी समस्या लगती है लेकिन इग्नोर न करें, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर क्या कहते हैं वैसा करें।
2: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ऐसी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो डरना क्या कि सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या कि एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
1: सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। अच्छा लगता है जब कोई अपना पुकारता है नाम लेकर, अपना ही नाम खास हो जाता है हमारे लिए। इंतजार करना पड़ता है उस मासूम लम्हे के लिए, पर वो लम्हा जब आता है जिंदगी में तो बीतता नहीं, वो ठहर जाता है, वो लम्हा बर्फ हो जाता है हमेशा के लिए। उस लम्हे की खुशबू महका देती है जिंदगी को। अभी तक हम उस लम्हे में जी रहे हैं जब पहली बार तुमने हमें नाम लेकर पुकारा था।

चंद लम्हों में सारी जिंदगी जी लेते हैं हम, जैसे खिड़की से बारिश देखते हैं जब, और बूंदों को महसूस करते हैं अपने चेहरे पर, जैसे समंदर के किनारे बैठकर जब बतियाते हैं लहरों से, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर होता है एहसास कि कितना विराट है ये संसार और कितने छोटे हैं हम इन चंद लम्हों में, जैसे हम जी लेते हैं सारा जीवन चंद लम्हों वाला ये जीवन।

तस्वीरों के रंग धुंधले पड़ जाते हैं, पर लम्हों के रंग कायम रहते हैं। काली सफेद तस्वीरों के रंग भले भूरे या धूसर पड़ जाएं, पर ये तस्वीरें जब आती हैं सामने तो छपाक से हम डुबकी लगा लेते हैं बीते हुए वक्त में। पुराने एल्बमों से इसीलिए तो प्यार होता है हम सबको। किसी फुर्सत के दिन जब खोलते हैं पुराना कोई एल्बम, तो बीते वक्त के गलियारों में खूब टहलना होता है। यूं आती है बीते हुए दिनों की याद, जैसे अभी कल ही तो जिया था हमने ये सब।

जो काम पुरानी तस्वीरें करती हैं वही काम करते हैं पुरानी गाने। कोई एक गीत, कोई एक सुर, कोई एक पंक्ति हमें ले जाती है कई बरस पीछे। अंताक्षरी वाला वो दिन, वो तुमसे चुपके से नजरें मिलाना, वो फिल्मी गानों के बहाने सबके सामने अपनी बातें कहना। कितने शरारती थे ना हम हमेशा से, अब देखो ना ये बजा पुराना गाना और ये चल पड़े हम बीते वक्त की यादों के रास्ते पर।

लोग जमा करते हैं जाने कौन कौन सी महंगी चीजें, जेवर। लोग परदेश जाते हैं खूबसूरत जगहों पर। दुनिया चीजों के प्यार में मुब्तिला हो जाती है। जिंदगी वो है जिसमें चीजें नहीं जज्बात जमा किए जाएं। जिंदगी वो है जिसमें हो प्यार की रोशनी। जिंदगी वो है जिसमें दो दिल एक ही लय और ताल पर धड़कते हों, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जीते हों।

तुम्हारी देख भर लेने से दुनिया खूबसूरत लगने लगती है हमें। जरा सोचो, एक निगाह, एक मुस्कान भी बदल सकती है किसी की दुनिया। प्यार हो जाना दुनिया की सबसे खूबसूरत घटना है, और प्यार में जीना सबसे खूबसूरत बना देता है जिंदगी को। आओ हम इस संदिल दुनिया में प्यार के नर्म फूल खिलाएं।

0: छाया गीत में आज थे कुछ कम चर्चित संगीतकारों के नगमे, फिल्मों के नाम।
1: पुकारो मुझे नाम लेकर, पुकारो मुझे तुमसे अपनी खबर मिल।
0: फिल्म भूल न जाना, संगीतकार दान सिंह।
2: एक चमेली के मंडवे तले, एक चमेली के मंडवे।
0: फिल्म चा चा चा, संगीतकार इकबाल कुरैशी।
3: फिर आने लगा याद वही प्यार का आलम।
0: फिल्म ये दिल किसको दूं, संगीतकार इकबाल।

0: फिल्म माय लव, संगीतकार दान सिंह।
1: हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम, हम तेरे बिन जी ना सकेंगे सनम।
0: फिल्म ठाकुर जरनैल सिंह, संगीतकार गणेश।
2: तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार।
0: फिल्म सखी रॉबिन, संगीतकार रॉबिन बनर्जी। आज का छाया गीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी दोस्तों को हमारा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शुभ संध्या साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं सवानंद किरकिरे, संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा और फिल्म का नाम है प्रेनीता।

0: साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में। गीतकार थे स्वानंद किरकिरे, संगीतकार थे शांतनु मोइत्रा और फिल्म का नाम था परिणीता।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। गुलजार के लिखे गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने और फिल्म का नाम है गोलमाल।

0: ऐसी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: समीर का लिखा गीत सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाजों में। संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है तुम सा नहीं देखा।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है बड़े दिलवाला।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण अग्निकांड में 14 छात्रों की मौत हो गई। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिससे छात्रों में दहशत फैल गई। कुछ लोग घायल हो गए हैं और उन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इमारत में स्थित एनिमेशन सेंटर में मौजूद 16 से 18 वर्ष की आयु के 14 छात्रों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि दमकल कर्मी इमारत के कोनों, शौचालयों और अन्य क्षेत्रों में छात्रों की तलाश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव अभियान जारी है और अधिकारी हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज उलान बतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सतेग पटनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी, मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई है। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1 लाख खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हुआ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97,706 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक मांगे पेश की। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने नवनिर्वाचित सदस्यों सुनीत्रा पवार और अक्षय कर्डिले को पद की शपथ दिलाई। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राज्य के कई हिस्सों में जल संकट का मुद्दा उठाया। तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। एआईएडीएमके, पीएमके और सीपीएम सहित विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में विख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत में कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 16वीं बैठक से इतर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गदीर निजामी पुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया के राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत इथियोपिया रणनीतिक भागीदारी बढ़ाने और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले आज खेले गए मुकाबले में मिस ने

0: ठंडी शुद्ध नमक देना शुद्ध नहीं समझते? वैक्यूम इवेपोरेटेड नमक ही सबसे शुद्ध सफेद होता है।
1: तो ऐसा बोलो ना,
0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक जिसका दाना दाना एक समान। ये हुई ना बात।
2: क्यों छोटे साहब, वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक इतना शुद्ध कि बच्चे भी जानते हैं इसके सारे गुण।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नागपुर महानगर पालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट। 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट। वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं। घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगर पालिका की वेबसाइट पर विजिट करें। जनहित में जारी।
4: भारत सरकार द्वारा खनिज क्षेत्र में किए गए दूरदर्शी सुधार आज भारत की मजबूत नींव बन रहे हैं।
5: इन्हीं प्रयासों को नई गति दे रहा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और सामरिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक क्रिटिकल एवं रणनीतिक खनिजों की खोज को मिल रही है नई दिशा।
4: MECL देश की खनिज आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाने हेतु खनिज संसाधनों की खोज एवं मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, MECL
7: रहा है राष्ट्र निर्माण। श्रोते हो आपण ऐकत कार्यक्रम सांसधारा आणि या कार्यक्रमामध्ये आपण आज स्मरण करीत आहोत अभिनय सम्राट अरुण सरनाईक यांचं। अरुण यांनी भटाला दिली ओसरी या नाटकात काम केले, त्याचवेळी त्यांच्याकडे एक उत्कृष्ट संधी चालून आली। शाहीर प्रभाकर हा चित्रपट करण्याचे विख्यात दिग्दर्शक व्ही शांताराम यांच्या मनात घोळत होते। अरुण यांनी त्यातील शीर्षक व्यक्तिरेखा

जय माला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जिगरी दोस्त।

गम के डगमग डगमग नैया डोले रिम झिम बादल बरसे रामा हो गुन गुन गुन गुन भौरे झूमे झर झर झर झर झरने झूमे छम

मन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग है मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: सेना।
1: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर,
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अनुरोध, इस फिल्म का गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

धर्मवीर इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में सुनिए। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, तर्ज है कल्याण जी आनंद जी की और फिल्म का नाम है गीत।

साथियों, जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्रांति इस फिल्म का नगमा आपको सुनवाते हैं नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत रचना संतोष आनंद की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

की सुरीली धड़कन। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज सुनिए एक ही फिल्म से, और आज की फिल्म है खिलौना। पहला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत है लता मंगेशकर की आवाज में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला और अंतिम गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना।

0: हम सबका साथ निभाते टीबी रोगी व परिजन को पोषण जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नागपुर महानगर पालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट। 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट। वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं। घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं।
0: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगर पालिका की वेबसाइट पर विजिट करें। जनहित में जारी।
4: तो किसी शुमार कतार में आऊं। सच तो ये है कि आपके आलस ने मुझे आलसी बना दिया है।
5: ओ जी छोड़ो सौभाग्यवती, क्या सुबह सुबह सफाई और सुस्ती की बातें ले बैठी हो। जरा इस सोफे पर सुस्ता कर देखो, क्या आनंद आता है। जरा इस आराम कुर्सी पर बैठकर ये नॉवेल तो पढ़ो, देखो क्या मजा आता है। जरा मेरी तरह बेफिक्री से टांगें पसार कर आराम करके देखो, फिर देखो घर की सफाई जरूरी मालूम होती है देह का सुख। ये सफाई, ये बनावट, ये सजावट तो बाहर के लिए है रानी, दूसरों को दिखाने के लिए, यानी अपने आप से धोखा।
4: धोखा?
5: भला आदमी हर वक्त घर की सफाई संभाल में लगा रहे तो आराम किस वक्त करे है। मैं पूछता हूँ घर आखिर होता किस लिए है, घर का सुख कहते किसे। बोलो बोलो बोलो। हाँ अब जाओ और 2 कप चाय बना कर लाओ, एक मैं पीऊंगा और एक तुम पीना है।
4: अच्छा अच्छा। मगर मैं कहने जा रही थी, और नहीं तो अपने नौजवान बेटे की तो फिक्र कीजिए, तालीम खत्म करके आवारा फिर रहा है, इसके लिए कोई नौकरी कोई लड़की आखिर कब तक उसे। अरे
5: भगवान क्यों चिंता करती हो, नौकरी आजकल मिलती नहीं और लड़की वो खुद मेरा मतलब ब्याह लाएगा।
4: क्या कह रही हो।
6: गुड मॉर्निंग डैडी।
5: ओ गुड मॉर्निंग प्रिंस ऑफ वेल्स।
6: डैडी आज बड़ा मजा आया शहर।
5: हाँ, मुझे भी।
6: मौसम बहुत अच्छा था।
5: हाँ, यहाँ भी।
6: हमने पार्क में खूब दौड़ लगाई डैडी।
5: हाँ, किसके साथ?
6: किसके साथ?
5: हाँ,
6: जी वो मेरा मतलब है।
5: हाँ, बोलो बोलो, डरो नहीं बेटे, बोलो
6: जी
5: ना।
6: वो
5: डैडी। कौन है वो?
6: डैडी बहुत अच्छी लड़की है, एक बड़े सरकारी अफसर की इकलौती बेटी है। अच्छा मकान है, नौकर है, चाकर है, और डैडी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और बहुत ही मिलनसार। आज की सोसाइटी की है, इसलिए घूमने फिरने मिलने जुलने में कोई बुराई नहीं समझती।
4: और
6: माँ धार्मिक विचारों की है।
4: अच्छा।
6: हाँ अभी कल ही की तो बात है, हमने एक दुकान से किताबें खरीदी, मैंने बहराम डाकू नॉवेल खरीदा और उसने जानती है क्या खरीदा?
4: क्या?
6: स्त्री सुबोधनी।
4: स्त्री सुबोधनी।
5: शाबाश बेटा शाबाश, मेरे बेटे की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती, देखा।
6: मगर डैडी हमारे घर और उनके घर में बड़ा फर्क है।
5: क्यों क्यों?
6: क्या बताऊं, हमारा घर तो बिल्कुल बेड़ा है, मगर उनका घर सफाई और सजावट का एक नमूना है, कहीं धूल का जर्रा तक नहीं। रख रखाव ऐसा कि बस वाह देखते रह जाओ, हर चीज हर वक्त करीने से सजी हुई, हर कोना टिप टॉप। लेकिन हमारा घर,
4: ये सब तुम्हारे डैडी का कसूर है, मुझे तो रसोई से ही फुर्सत नहीं मिलती इनकी वजह से।
6: मगर रसोई की हालत भी तो कहने देखने लायक नहीं है माँ, वहाँ भी रखरखाव नाम को नहीं है।
5: अरे हाँ रसोई से याद आया, मैंने कहा रमेश की माँ वो 1 कप चाय।
4: हे भगवान।
6: डैडी मैं कह रहा था कि अगर कहीं शोभा ने हमारा घर इस हालत में देख लिया तो गजब हो जाएगा डैडी, वो कभी इस घर में कदम भी ना रखेगी वो।
5: अरे देखना तो बेटा किसका फोन है।
6: देखता हूँ डैडी। हेलो, ओ शोभा। हेलो, हाँ मैं रमेश बोल रहा हूँ। हाँ क्या अभी 15 मिनट में? मगर मगर मगर शोभा सुनो तो, है बंद कर दिया। मम्मी डैडी
5: क्या हुआ?
6: शोभा शोभा डैडी।
4: अरे शोभा क्या हुआ शोभा को?
6: शोभा आ रही है हमारे घर डैडी, अभी सिर्फ 15 मिनट में।
4: तो अच्छा है, मैं अपनी होने वाली बहू को आज ही देख।
6: वो तो ठीक है माँ, सब ठीक है माँ, मगर जरा घर की हालत तो देखो, क्या यही नजारा दिखाओगे उसे?
4: अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, अजी सुनते हो अब उठिए भी।

0: सारा घर कबाड़ खाना बना हुआ है, अगर शोभा ने ऐसे देख लिया तो गजब हो जाएगा।
1: मगर वो चाल है
0: तो... दारी ये क्या कछुए की चाल दिखा रहे हैं, तेजी से उठिए ना प्लीज, भाग कर जाइए और शेव कीजिए। अच्छा, जी हाँ अच्छा, शेव हाँ। कीजिए और कपड़े पहनिए। हाँ, हाँ। क्या अपनी होने वाली बहू के सामने यूं ही बने रहेंगे?
1: अरे तो
0: अगर मगर कुछ नहीं डरी, ये हमारी इज्जत का सवाल है, हमारे खानदान की आन और शान दिखाने का मौका है, और आप हैं कि दाढ़ी बढ़ाए बनियान पहने जैसे बिल्कुल।
2: ओफो, मगर आज तो छुट्टी है, आराम का दिन है, भला अपने घर में भी दिन।
0: ओफो, बस हो गया ना भाषण डैडी, जल्दी चलिए बनिए संवरिए और मेकअप कीजिए। हाँ।, हाँ और मम्मी मम्मी तुम हमारे डायलॉग क्या सुन रही हो, चलो फुर्ती से कमरा साफ करो। हाँ रसोई संवारो और फिर अपने आप को भी दुरुस्त करो।
3: अरे हाँ हाँ मैं तो अभी जाती।
0: ऐसे कैसे काम होगा, मुझे भी तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। डैडी ये अपना शेविंग सेट तो लेते जाइए।
2: हाँ हाँ।
0: और मम्मी तुम चलकर रसोई संभालो, इस कमरे को मैं दुरुस्त करता हूँ, लेकिन जरा जल्दी। हाँ ये अखबार है। हाँ ये बर्तन, ये फूलदान, अरे जूते भी यही है। वाह वाह वाह, मैले कपड़े और ये सिगरेट के टुकड़े। हमारा घर है या किताबें, वाह सब किताबें भी यही है। चुराबे हैं ये और ये छतरी, दिया सिलाई को भी यहाँ हो रहा है। वाह वाह डैडी, वही काला सूट पहनेगा जो मुझे पिछले साल सिलवाया था। और मम्मी तुम?
4: हाँ बेटी।
0: अरे तुम तो तैयार भी हो गई। हाँ हाँ वाह वाह मम्मी कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ हाँ ये हुई ना बात।
4: अरे यार तुम मेरी तारीफ छोड़ो और अपनी तैयारी करो। सुनो अरे देखो तो कैसे लग रहे हो, चलो चलो चलो चलो चलो।
0: हाँ, मम्मी मैं भी तैयार हो लूं।
4: चलो।
0: मेरे बुशर्ट का बुशर्ट, हाँ मिल गई मिल गई मिल गई, लीजिए। अब कंघी गायब है, न जाने कहाँ चल। वो हो हाँ ये भी है, मिल गई मिल गई। ओफो ये घर है या ला ला ला। ये हुई ना बात दादी, बिल्कुल हीरो लग रहे हो।
5: हीरो के बेटे मुझे गर्मी लग रही है।
0: बस थोड़ी देर की तो बात है डैडी। हाँ बिल्कुल थोड़ी देर की। और मम्मी मम्मी भी कैसे जंच रही है, बिल्कुल रानी जैसी। मम्मी यहाँ यहाँ बैठो। हाँ इधर इधर इधर, हाँ इस सोफे पर। हाँ डैडी आप इनके साथ, बाएं तरफ नहीं बाएं तरफ नहीं दाएं तरफ। हाँ यहाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ कितनी सुंदर जोड़ी है।
5: मगर बेटा
0: बस डैडी बस बस बस बस बस बस हिलिए बोलिए नहीं। और ये लीजिए अखबार, ये पकड़िए, इसे यूं पकड़ के बैठिए। हाँ
5: ऐसे।
0: और मम्मी मम्मी आप यूं कीजिए कि ये स्वेटर बनिए।
4: ला मुझे दो।
0: हाँ ये लीजिए और बस इसी पोज में बिल्कुल
4: ठीक है।
0: हाँ हाँ बस अब थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा मुस्कुराइए।
4: बिल्कुल पतला है ये तो।
0: शाबाश वाह क्या शानदार तैयारी हुई है, घर भी नुमाइश की तरह बन समर गया है। डैडी शायद वो आ गई। आया अभी आया। हेलो शोभा, आओ आओ अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो?
6: नहीं रमेश मैं इस वक्त नहीं रुक सकती, एक सहेली के घर जा रही हूँ, बहुत जरूरी काम है। मैं दरअसल तुम्हारी ये किताब वापस करने आई थी।
0: नहीं नहीं नहीं शोभा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ी देर के लिए तो अंदर आना ही होगा।
6: आई एम सॉरी रमेश, इस वक्त मैं बिल्कुल नहीं आ सकती, फिर कभी सही। ओके बाय।
0: मगर मगर सुनो तो शोभा, शोभा गई। डैडी वो किताब देकर चली गई
5: और इसने अंदर झांका तक नहीं।
0: मगर मगर वो
5: चौबा, मैंने पाउडर सुर्खी तक लगाया, पसीना पसीना होते हुए भी सूट बूट पहना और उसने शक्ल तक नहीं दिखाई।
0: मगर मगर डैडी उसे बहुत जरूरी काम।
5: रमेश के मोह में बिल्कुल पागल हो जाऊंगा।
0: मगर डैडी इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हमारा हमारा बिगड़ा क्या है आखिर, कुछ ना कुछ संवरा ही तो है।
5: मुझे सबक देते हो, मैंने कभी जिंदगी में इतनी स्पीड से काम नहीं किया और जिस पोज में तुमने मुझे बिठाए रखा ना, मेरा तो अंगांगा कट गया।
4: अब छोड़िए भी, जो होना था सो हो गया है, अब फिर से आराम कर लीजिए।
5: हाँ जरूर करूंगा आराम, और पहले की तरह ही खुले बदन खुले मिजाज। हाँ टांगे पसार कर और सोफा लताड़ कर। हाँ इस तरह।
0: माफ करना मम्मी, मैंने आपको नाहक परेशान किया, अब तुम भी जाकर पहले की तरह कपड़े बदल लो और डैडी के लिए चाय बना दो।
4: अच्छा बेटा।
5: ये रहा तुम्हारा सूट, यही पड़ा रहा है सोफे पर। वो कहा है मेरा मेरा अखबार, उसे भी पहले की तरह ही बखेर के रखूंगा, ऐश्रे में पड़े सिगरेट के टुकड़ों को भी उसी तरह फैलाऊंगा।

0: मुझे बिल्कुल पहले जैसा माहौल चाहिए। और रसोई से वो झूठे बर्तन भी उठा लो। हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ जाओ। अब ठीक है, बिल्कुल पहली हालत घर की। और अब मैं इस सोफे पर टांगे पसार कर नॉवेल पढ़ूंगा। ये हुई ना बात अपने घर की। क्या बेफिक्री है, क्या सुख है, क्या आराम है, क्या मजा है। सच कहा है किसी ने, जो सुख चौबारे न बलख ना बुखारे।
1: ये लीजिए चाय।
0: लवेला, ये हुई ना बात। मैंने कहा तुम भी बिल्कुल पहले जैसी लग रही हो।
1: पहले जैसी ही लग रही हूँ।
0: अरे जरा देखना तो बेटा कौन है दरवाजे पर।
2: अच्छा दादी। शोभा
3: है, इतना घबरा क्यों गए?
2: कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है तुम।
3: हाँ मैं, क्यों कोई एतराज है?
2: एतराज नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, कोई एतराज नहीं है। मगर मगर तुम तो
3: भाई, मैं अपनी सहेली के यहाँ गई तो मालूम हुआ कि वो कहीं और गई हुई है, सो वापिस आकर तुम्हारे घर आ गई। ओहो, अब ये हाथ तो हटाओ ना, मुझे अंदर आने दोगे या नहीं?
2: सॉरी।
3: नमस्ते माता जी। नमस्ते पिताजी।
2: नमस्ते बेटी। नमस्ते।
3: नमस्ते। अरे ये बात क्या है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं?
2: कुछ नहीं शोभा, कोई बात भी तो नहीं। शोभा तुम्हें देर हो जाएगी, तुम फिर कभी।
3: जी नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ पर, बहुत थक गई हूँ।
4: हाँ हाँ बेटी यहाँ बैठो सोफे पर।
3: धन्यवाद। कितना आराम है यहाँ, कितना सुख
0: जी।
3: हाउ स्वीट, कितना प्यारा है ये घर, सचमुच बिल्कुल असली रूप का। अरे आप लोग बैठिए ना, खड़े क्यों हैं?
2: शोभा तुम्हें हमारा घर अच्छा लगा?
3: और रियली, घर हो तो ऐसा जहाँ बेफिक्री और आजादी ही आजादी हो। एक हमारा घर है रमेश, जहाँ हर वक्त हर चीज इस तरह बनी रखी रहती है जैसे वो घर ना हो, कोई अजायब घर हो। नौकर है कि सारा दिन सजावट में लगे रहते हैं, न मर्जी का बैठना न मर्जी का लेटना, कहीं बैठने लगो तो यहाँ ना बैठना बेटा अभी ठीक किया है, कहीं लेटने लगो तो यहाँ नहीं शोभा जी अभी सिलवटें दुरुस्त की हैं, अंदर जाने लगो तो अरे रा रा रा रा, इधर नहीं आना शोभा रानी अभी सफाई की है, कुछ उठाने लगो मैली हो जाएगी। उठते बैठते सोते जागते इंचों सेंटीमीटरों का हिसाब है हमारे घर।
2: लेकिन शोभा घर का रख रखाव सही पहनावा भी तो जरूरी है जिंदगी के लिए।
3: इस पोजीशन में नहीं बैठो साड़ी खराब हो जाएगी, टेढ़े ना लेटो कपड़ों की केरेस खराब हो जाएगी, ये करोगे तो मम्मी नाराज हो जाएंगी, वो करोगे तो डैडी बुरा मान जाएंगे। घर ना हो गया मिलिट्री ऑफिस हो गया। मगर इस घर में एक अपनापन है, एक आजादी है, सुख चैन और आराम की आजादी।
5: ये भी खूब रही, बहुत खूब, देखो तो है।

वो आए घर में हमारे, ये नाटिका अभी आपने सुनी। लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक सत्येंद्र शरद। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा हर दिल से जुड़ी, देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। लीजिए सुनिए आशा भोसले और साथियों को। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का और फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार
3: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
4: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
5: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
4: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: आइए सुने अगला गीत अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है धड़कन।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यह राष्ट्रीय सेवा विविध भारती। आइए सुने अगला गीत अभिजीत सपना मुखर्जी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का और फिल्म का नाम है जुदाई।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं जुबीन गर्ग की आवाज में। नगमा निगार हैं सईद कादरी, म्यूजिक है प्रीतम चक्रवर्ती का और फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल।

0: भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्रे ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर

0: इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
2: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
4: निभाया, देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
0: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
6: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादी, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनुपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और माल

0: रेलगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
2: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दासगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलानबतार में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NEFED के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonai

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रस लाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, इनमें कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन श्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं उषा खन्ना और फिल्म का नाम है एक सपेरा एक लुटेरा।

आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में उस गीत को जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है मन की आंखें।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जवां दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत है किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है अमित खन्ना ने, संगीत है राजेश रोशन का और फिल्म का नाम है स्वामी।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

ये विविध भारती है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है तकदीर।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म दो बदन से। गीत है शकील बदायूनी का, संगीत है रवि का।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं रवि और फिल्म का नाम है उस्तादों के उस्ताद।

कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। हमें दीजिए आज्ञा और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: ये है विविध भारती।
1: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: अमोल खजाना।
1: मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसी बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता अमरीश पुरी पर।

अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। वे अपने जमाने के जाने माने चरित्र अभिनेता मदन पुरी के छोटे भाई थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमरीश पुरी ने केंद्रीय श्रम मंत्रालय में नौकरी कर ली थी, लेकिन सन 1961 से उन्होंने शौकिया तौर पर रंगमंच शुरू किया था। यहां से शुरू हुआ अमरीश पुरी का अभिनय की दुनिया का सफर।

इसके बाद मंथन और भूमिका जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावशाली अभिनय के जरिए खूब नाम कमाया। सुनील दत्त की फिल्म रेशमा और शेरा ने व्यावसायिक फिल्म जगत में अमरीश पुरी को पहचान दी।

बीच अभिनय के अच्छे ऑफर्स उन्हें मिलने लगे और उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। फिरोज खान की फिल्म कुर्बानी में बाकायदा एक बड़ी भूमिका के साथ वे फिल्म संसार में आए। छोटी बड़ी भूमिकाएं करने के बाद अमरीश पुरी को सबसे ज्यादा नाम अगर किसी फिल्म से मिला तो वो थी मिस्टर इंडिया।

सन 1987 में आई इस फिल्म में अमरीश पुरी ने मोगैम्बो की भूमिका की थी। यहाँ से हिंदी फिल्म संसार को मिला एक प्रभावशाली खलनायक। मोगैम्बो की भूमिका को आज भी सभी याद करते हैं।

सन 1984 में अमरीश पुरी ने हॉलीवुड की एक फिल्म में काम किया। इस फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम। इस फिल्म के निर्देशक थे स्टीवन स्पीलबर्ग। इंडियाना जोन्स एंड टेंपल ऑफ डूम में अमरीश पुरी ने मोला राम की भूमिका निभाई थी।

0: बहुत बरस पहले अमरीश पुरी विविध भारती के स्टूडियोज में आए थे और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जय माला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने मन की बहुत सारी बातें हमें बताई थी।
1: मेरी आवाज तो कई बार आप रेडियो पर, टीवी पर और सिनेमा हॉल में सुनते ही होंगे। वो सब तो फिल्मी डायलॉग होते हैं, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता हूं। फिल्मों में मैं ज्यादातर एक खलनायक की, या यूं कहिए कि एक विलन की भूमिका निभाता हूं। किसी का मर्डर, कहीं डाका, किसी का रेप या ऐसी खराब हरकतें। लेकिन साहब, मैं भी एक इंसान हूं और आप सब की तरह सीने में दिल रखता हूं, जो कभी हंसता है, कभी रोता है। आप सब की तरह मेरा भी परिवार है, बच्चे हैं। मैं जानता हूं और महसूस करता हूं कि कितना मुश्किल होता है अपने प्यारों से दूर रहना।
2: मस्ताना, अल्लेना।

मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। बहुत तमन्ना थी बचपन से ऐसा करने की। मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी में अप्लाई किया, लेकिन भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

भाग्य में कुछ और ही था। इंटरव्यू की कॉल मुझे 3 रोज लेट मिली और उसके बाद फिर एज लिमिट होने के कारण मैं दोबारा अप्लाई नहीं कर सका, वरना आज मैं भी आपकी तरह अपने देश की रक्षा कर रहा होता। लेकिन आज मैं कर क्या रहा हूं ये तो आप बखूबी जानते हैं। जी चाहता है अपने देश की मोहब्बत और याद में दूर सरहदों पर बैठा हुआ मैं कुछ इस तरह से गुनगुना उठूं।

0: आप लोगों की तरह हम भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप देश की रक्षा करते हैं, हम देश का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब तक आप नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं और जिंदगी की खुशियां जाहिर नहीं करेंगे, जिंदगी फीकी फीकी सी रह जाती है। मुझे इस बात का फख्र है कि हमारे परिवार में इस चीज की कुछ परंपरा ही रही है। कुंदन लाल सहगल मेरे भुआ के लड़के थे, उन्होंने बहुत सालों तक हमारा मनोरंजन किया। अपने परिवार की परंपराओं को जारी रखते हुए मैं अपने बड़े भाइयों का नाम लेना चाहता हूं। मेरे सबसे बड़े भाई श्री चमनपुरी जी, जो फिल्मों में पार्टीशन से पहले लाहौर में काम करते थे, उसके बाद बंबई आए, यहां भी वो कुछ फिल्मों में काम करते रहे। उनसे छोटे थे मेरे मरहूम भाई साहब मदनपुरी जी। मदनपुरी जी ने आपका कितने तरीकों से मनोरंजन किया है, कितने भेसों में, कितने रूपों में, कितने ही किस्म किस्म के रोल अदा करके।
1: सन 1997 में आई फिल्म परदेश, सुभाष घई की इस फिल्म में अमरीश पुरी पर ये नगमा फिल्माया गया था।

सन 1995 में आई यश चोपड़ा की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म में अमरीश पुरी की भूमिका को आज भी लोग याद करते हैं।

कमल हासन की फिल्म चाची 420 सन 1998 में आई। इस फिल्म में भी अमरीश पुरी ने प्रभावशाली अभिनय किया था। गोविंद नेहलानी की फिल्म देव अमरीश पुरी की एक महत्वपूर्ण फिल्म है। सुभाष घई की कई फिल्मों में अमरीश पुरी नजर आए। सुभाष घई के साथ उन्होंने जो आखिरी फिल्म की वो थी किसना।

डेविड धवन की हास्य फिल्म मुझसे शादी करोगी में वे एक रिटायर्ड कर्नल बने थे। फिल्म शरारत में भी उन्होंने एक वरिष्ठ नागरिक की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के सितारे थे अभिषेक

0: बच्चन, रिशिता भट्ट, ओमपुरी और अमरीश पुरी।
1: आती जाती हैं मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं, जान जाओगे मान जाओगे तुम अभी हमें जानते नहीं, ये बताएंगे बेटा कल तुझे।

अमरीश पुरी हिंदी फिल्म संसार के एक निराले अभिनेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे फिल्में हों या रंगमंच, उनकी स्मृतियां हमेशा हमारे मन में ताजा बनी रहेंगी। मस्ताना, पल देना, सिर्फ एक तू है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता अमरीश पुरी पर।
1: शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

देखते हैं जिधर भी उधर तुम ही दिखाई देते हो ओ हमदम। ये दामन मोहब्बत का है, ये दुनिया हमारी, इसे छोड़कर कहां जाएं हम।

गुम हुए हैं नजारे, भला ये क्या है बात, तेरे काजल का असर देख, ये दिन अब हुआ है रात। नैनों का नैनों से मिलना, दिल का दिल को पुकारना, हाँ यही है वो मुलाकात।

0: जमाने के ताने जज्ब करते हैं रोज, रहते हैं कांटों के संग ये, इनकी हिमाकत को समझो। मासूम है और इसलिए बहक जाते हैं ये, इन फूलों की नजाकत को समझो।
1: कहा आपका ये बजा ही सही के हम बेकदर बेवफा ही सही, बड़े शौक से जाइए छोड़ कर मगर सहने गुलशन से।

पायल की छन छन, बिजली की चमकन, लोच कमरिया का संभाले न संभलता है, चुनरी की ढलकन, नजरों की अटकन, जरा सोच ये दिल बहलाए न बहलता है।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

शुरू तो इस गीत के साथ ही ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है। श्रोताओं, थोड़ी देर में ठीक 11 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
1: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं। इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से

0: स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
1: Every decision I've taken,
2: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: जर्मनी के सोहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक भी जीते। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: MHz पर आकाशवाणी नागपुर का ये विविध भारती केंद्र है। श्रोताओं, इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम बेला के फूल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर का गाया मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत RT बर्मन का है, फिल्म का नाम है फिर वही रात।

श्रोताओं, इस गीत के बाद सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया आशा भोसले का लिखा गीत। क्षमा कीजिए, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। संगीत आर टी बर्मन का है, फिल्म का नाम है कारवां।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बेला के फूल। आइए इस गीत के बाद सुनवाते हैं मुकेश और लता मंगेशकर का गाया मदारी फिल्म का गीत, जिसे लिखा है फारूक ने। इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

लता मंगेशकर का गाया, राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत सुनिए, संगीत सी रामचंद्र का है, फिल्म का नाम है बारिश।

श्रोताओं, बेला के फूल इस कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनी। लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हसरत जयपुरी का लिखा गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है। फिल्म का नाम है आस का पंछी।